सुप्रभात। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 35 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का गांधी विचार।
1: महात्मा गांधी किसी व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा का नाम है, और कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से नहीं बल्कि अपने विचारों से ही महान होता है। गांधी जी के विचारधाराओं ने उन संस्थानों और प्रथाओं के निर्माण को आकार दिया है जहां निरपेक्ष और निष्पक्ष रूप से हर किसी की आवाज और दृष्टिकोण को व्यक्त किया जा सकता है, परखा जा सकता है और रूपांतरित किया जा सकता है। गांधी जी सिद्धांतों को प्रतिपादित ही नहीं करते थे बल्कि स्वयं उसका अनुसरण भी करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एकादश व्रत का संकल्प लिया था जो उनके निरपेक्षता और निष्पक्षता के आधारशिला पर टिका था, और इनके दो मुख्य स्तंभ सत्य और अहिंसा है। आज वर्तमान युग में जब हर व्यक्ति अपने अहंकार, स्वार्थ और पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो रहा है और निरपेक्षता का अस्तित्व विलुप्त हो रहा है, ऐसे में गांधी जी की विचारधारा गहराते अंधियारे के बीच एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो हमें निरपेक्षता या निष्पक्षता का महत्व समझाती है। गांधी जी सत्य के दो रूप मानते हैं, एक सापेक्ष सत्य और दूसरा निरपेक्ष सत्य। गांधी जी के अनुसार समय या परिस्थिति विशेष में अंतरात्मा की आवाज ही सापेक्ष सत्य है, परंतु निरपेक्ष सत्य ईश्वर या परमात्मा है जिसे कोई मनुष्य पूरी तरह से समझ नहीं सकता, जबकि सापेक्ष सत्य वह है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव, तर्क और नैतिक विकास के आधार पर अनुभव करता है। महात्मा गांधी जी के विचार में ईश्वर और ईश्वर के नियम अलग अलग नहीं है बल्कि ईश्वर ही नियम है। उनके अनुसार निरपेक्ष सत्य का यह सिद्धांत कि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है सार्वभौमिक और निर्विवाद रूप से सर्वत्र मान्य है। उनके लिए निरपेक्षता का अर्थ था सत्य के प्रति संपूर्ण समर्पण। गांधी जी के अनुसार जिस प्रकार सत्य से बढ़कर कोई आदर्श नहीं हो सकता, उसी प्रकार अहिंसा से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं हो सकता। उनके अनुसार किसी भी व्यक्ति या जीव के प्रति निरपेक्ष रहना ही अहिंसा है, अर्थात मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना और सभी के प्रति प्रेम भाव रखना ही अहिंसा है। जब तक हम किसी के लिए द्वेष भाव रखते हैं तब तक हम निष्पक्ष नहीं रह सकते। उनके अनुसार निष्पक्षता के लिए परहित अर्थात दूसरों के कल्याण की भावना का होना आवश्यक है। गांधी जी ने निरपेक्षता के जिस अवधारणा का अनुसरण किया वह नैतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक अनुशासनों के अनुरूप है जिसका मूल तत्व प्रेम है, अर्थात हर व्यक्ति की भावना के साथ एक रूपता। इस दृष्टि से भौतिक वस्तुओं और संपत्ति के संबंध में उनका विचार इस बात का पक्षधर था कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों का बल्कि हर संपत्ति का न्यासी है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्तियों और संपत्तियों का स्वयं के लिए ही उपयोग करना नहीं है बल्कि निरपेक्ष और निस्वार्थ भाव से दूसरों के कल्याण के लिए भी होना चाहिए, अर्थात असंग्रह की भावना होनी चाहिए। व्यापक अर्थ में अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और अतिरिक्त धन का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए करना चाहिए। गांधी जी भौतिकता में भी निरपेक्षता के सिद्धांत को मानते थे। उनका मानना था जब सभी परमेश्वर की देन है अतः उनको प्रसाद के रूप में उपयोग करना चाहिए, निजी मिल्कियत समझकर नहीं, और शेष हमें भगवान और समाज की जरूरतमंदों को अर्पित करना चाहिए। गांधी जी का यह भी मानना था कि जब हम त्याग की प्रवृत्ति से भौतिक वस्तुओं का उपयोग करते हैं तभी हम निरपेक्ष हो सकते हैं। गांधी जी सभी धर्मों के प्रति समभाव रखते। गांधी जी के अनुसार मेरे लिए नैतिकता, सदाचार और धर्म पर्यायवाची है जिसके बिना जीवन बालू के रेत पर बनाए गए मकान के समान है। उनकी दृष्टि में मानवीयता का सबसे बड़ा धर्म था। गांधी जी का मानना था कि सत्य और अहिंसा का पालन करने पर ही मानवता को कायम रखा जा सकता है, और जिस व्यक्ति में यह दो

0: मानवीय गुण होते हैं वही सच्चे अर्थों में निरपेक्षता निरपेक्ष हो सकता है।
1: ये था गांधी विचार। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। विषय है पशुओं में टीकाकरण।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप हम सभी जानते हैं कि जाड़ा एवं गर्मी ऋतु को स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा माना गया है, पर जैसे ही वर्षा ऋतु आरंभ होती है चारों तरफ हरियाली तो आ जाती है लेकिन वर्षा कारण प्रायः पशु तनाव में आ जाते हैं जिससे उनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी हो जाती है। पशु विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं और उनमें बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पशुओं को वर्षा ऋतु से पहले जून जुलाई के महीने में पशुओं को गलाघोंटू, लंगड़ी ज्वर, मुंहपका, खुरपका, एंथ्रेक्स, रेबीज आदि रोगों के टीके लगवाने चाहिए। यदि उस समय टीके नहीं लग पाए हों तो शीघ्र से शीघ्र इन टीकों को लगवाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि दो टीकों के बीच में कम से कम 10 दिन का अंतर हो। वर्षा ऋतु में जो होने वाले महत्वपूर्ण रोग हैं उनमें गलाघोंटू रोग है। यह संक्रामक जीवाणु जनित रोग है। इस रोग से गाय, बैल, भैंस मुख्यतः प्रभावित होते हैं। इस रोग से ग्रसित पशु को तेज बुखार होता है एवं गले में सूजन आ जाती है जो अगली टांगों के बीच तक फैल जाती है। पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेते समय घर घर की आवाज होती है। पशु से लार चलता है। यह एक बहुत ही खतरनाक पशुओं की बीमारी है। पशुओं को बुखार भी 106 डिग्री फारेनहाइट तक हो जाता है। यदि प्रभावित पशु का समुचित उपचार नहीं किया जाए तो रोगी पशु की 24 से 48 घंटे में मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए आप टीकाकरण करवा सकते हैं। HS वैक्सीन कार्यक्रम भी समय समय पर चलते रहता है। आप इस वैक्सीन का वैक्सीन अपने पशुओं को दिला सकते हैं। इसके अलावा लंगड़ी रोग तीव्र संक्रामक जीवाणु रोग है। कम आयु के गोवंशीय पशुओं में यह होता है। इस रोग का विशिष्ट कारक जीवाणु है। 6 से 2 वर्ष की आयु के गोवंश के पशुओं में यह होता है। इस रोग में रोगी पशुओं में अचानक ज्वर हो जाता है तो उसके पश्चात पुट्ठों, गर्दन, जांघों आदि की मांसपेशियों में चरचराहट होती है। रोग के प्रमुख लक्षणों में लंगड़ापन, ज्वर, सुस्ती, भोजन के प्रति अरुचि और मांसपेशियों में सूजन आ जाना प्रमुख है। इसके लिए टीके उपलब्ध हैं। किसान भाइयों को, पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं को टीके लगवाने चाहिए। इस रोग के अलावा खुरपका, मुंहपका रोग भी प्रमुख है। जुगाली करने वाले पशुओं में यह पाया जाता है। इस रोग में पशु को तेज बुखार होता है। मुंह, खुर, अयन और थनों पर छाले पड़ जाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुकरों में यह रोग खूब फैलता है। हालांकि इस रोग से पशुओं की मृत्यु तो नहीं होती है परंतु रोग के ठीक हो जाने पर भी पशुओं की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। भारत में प्रायः AOC तथा ACR1 के द्वारा यह रोग फैलता है। इस रोग का भी टीका उपलब्ध है। इस रोग के टीके का नाम FMD वैक्सीन है। इसे पशुपालक भाई लगवा सकते हैं। पशु माता भी वायरस जनित एक रोग है। इस रोग से पशु अधिक संख्या में रोगग्रस्त होते हैं और मृत्यु भी होती है। इस रोग के जीवाणु आँख के आंसू, नाक से निकलने वाले स्राव, मुंह की लार तथा गोबर में पाए जाते हैं। इस रोग का कोई भी उपचार नहीं है। GTV वैक्सीन इसके लिए आता है। इसे आप अपने पशुओं को लगवाएं। एंथ्रेक्स बीमारी में प्रभावित पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाने के कारण बुखार होता है। खून में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण गहरे काले रंग का हो जाता है। उत्पन्न विष के कारण खून की नसों की दीवारों में बारीक दरारें पड़ जाती हैं और रक्त बाहर आ जाता है। इसके लिए प्रतिवर्ष टीका पशुओं को लगवाना चाहिए। इसके अलावा रेबीज रोग जो है वो प्रमुख है। कुत्तों का यह रोग है। हालांकि इस रोग के विषाणु जुगाली जंगली पशुओं जैसे गीदड़, लोमड़ी और सियार में भी पाए जाते हैं। कुत्तों में जब यह रोग लगता है तो कुत्ते पागल हो जाते हैं और जिस व्यक्ति को काटते हैं या जिस पशु को काटते हैं उसमें भी यह रोग हो जाता है। इसका भी टीका उपलब्ध है। बरसात के पहले पशुपालक भाइयों को इसका टीका जरूर लगवा लेना चाहिए।
1: पशुओं में टीकाकरण, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का।

0: इसे हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
2: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड की यात्रा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा उपचुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर कुवैत की यात्रा पूरी करने के बाद ओमान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर ओमान के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक शेख अहमद अल मस्करी ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान, न्यूयॉर्क और ब्रुसेल्स की 11 दिन की यात्रा पर हैं। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। और ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराया है। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना है। इसके

0: अभी ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ। मुख्य स्वर है सुरेश वाडेकर का।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आज और कल। इस विषय पर डॉक्टर चंदन से बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज होम्योपैथिक चिकित्सा दिवस भी

0: और कल इस विषय पर डॉक्टर चंदन से बातचीत कर रहे हैं हरेंद्र आजाद।
1: श्रोताओं नमस्कार, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। आज होम्योपैथिक चिकित्सा दिवस भी है और इस पद्धति के जो जन्मदाता हैं उनकी जयंती भी है। हम विस्तार से इस पर बात करेंगे और इसके लिए हम आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर चंदन को। डॉक्टर चंदन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद, बहुत आभार आज इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए।
1: सर, आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आज और कल। ऐसा है कि होम्योपैथी चिकित्सा अपने आप में एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और इसकी शुरुआत काफी पहले से हुई है और काफी लोग आज इस पद्धति से लाभान्वित हैं। तो हम बीइंग एक्सपर्ट आपके माध्यम जानना चाहेंगे कि क्या है इस पद्धति की भूत, भविष्य और वर्तमान, थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जैसा कि आप जान रहे हैं, होम्योपैथी ये नाम से ही बताया जा रहा है कि इसमें होमियो जो शब्द है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, मींस सिमिलर एंड पैथोस मींस डिजीज, मींस लाइक क्योर लाइक्स, यानी जैसा सिम्टम पैदा होगा उसको वो ठीक कर सकता है। और इसी का लॉ हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी जिन्हें क्रिश्चियन हेनमन साहब जी कहते हैं, उन्होंने इसे दिया था।
1: जी,
2: सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा जान लें हम लोग कि उनका पूरा नाम क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनमन था, जो जर्मनी में उनका बर्थ हुआ था।
1: जी।
2: और वो पुअर फैमिली में बर्थ हुआ था उनका, उनके फादर पेंटर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 10 अप्रैल 1755 और सर्वाइव किया उन्होंने 2 जुलाई 1843 तक, और 88 ईयर्स की एज में वो नहीं रहे।
1: जी,
2: वो अपने माता पिता के तीसरे बच्चे थे और फिर उन्होंने अपने मेडिकल्स की पढ़ाई की, उन्होंने अपना एलोपैथिक सिस्टम को उन्होंने अटेन किया और अटेन करने के बाद उन्होंने MD भी कंप्लीट की।
1: जी
2: उन्होंने अपने मेडिकल्स को 75 में शुरू किया और 79 में कंप्लीट कर लिया। ड्यूरिंग दैट पीरियड
1: जी
2: उन्होंने जब वो प्रैक्टिस शुरू किया अपना इनिशियली एलोपैथ सिस्टम के अंडर में, तो उन्होंने पाया कि यह सिस्टम बहुत क्रूएल है, बहुत हार्मफुल है और हर ट्रीटमेंट के बाद एक नया साइड इफेक्ट्स छोड़ जा रहा है।
1: जी
2: तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं इस क्वालिटी को फॉरवर्ड नहीं करूंगा और उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। बट ड्यू टू अर्निंग्स, कमाने के लिए उन्होंने ट्रांसलेशन का काम शुरू किया, क्योंकि वो 12 लैंग्वेजेस के जानकार थे, तो उन्होंने मेडिकल राइटिंग्स को ट्रांसलेट करने का शुरू कर दिया। उसी ट्रांसलेशन करने के दौरान उन्हें एक मटेरिया मेडिका की बुक लगी, क्यूलिंस मटेरिया मेडिका,
1: जी
2: जिसे ट्रांसलेट करते समय उन्होंने सिंकोना बार्क, जो हमारी भाषा में आमतौर पे नीम का छाल
1: जी
2: कहा जाता है, का वर्णन पढ़ रहे थे और उनके जो सिम्टम्स बताए गए ना, वो सारे सिम्टम्स मलेरिया डिजीज से कॉमन थे।
1: जी
2: फिर उन्होंने उस छाल का डाइल्यूशन बनाया और उन्होंने खुद पे ट्राई किया और उन्होंने पाया कि वो सारे सिम्टम्स जो मलेरिया में आ रहे थे वो उनमें आ रहे थे, और वही छाल पिलाने पर लोग को मलेरिया से रिलीफ भी हो रहा था।
1: क्या बात जी।
2: और वो समय था 1970। उसी दौरान इन्होंने एक लॉ तय कर दिया, लाइक क्योर्स लाइक, और इसी आधार पर होम्योपैथी का रचना हुआ और 1796 में ऑफिशियली इसे अनाउंस कर दिया गया।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, कितनी रोचक कहानी है होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का इजाद कैसे हुआ और कैसे हेनमन साहब स्वयं में जब एक एलोपैथिक डॉक्टर थे और उन्होंने इस पद्धति को अपनाया, उन्होंने इजाद किया। आज के दौर पे अगर हम बात करें सर, ये होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति किस तरीके से, कितना कारगर है, कितना एक्सेप्टेबल है और नेशनल इंटरनेशनल जो तमाम सोसाइटी है इस लेवल पे क्या एक्सेप्टेंस है?
2: सर, जैसे प्राइमरी बताया गया कि इन्होंने एलोपैथ सिस्टम से ही इसका ओरिजिन हुआ, जितने ओरिजिन थे जिन्होंने इनका शोध किया वो सारे एलोपैथ सिस्टम से थे, इसीलिए सबसे ज्यादा बायकॉट वहीं से हुआ इसका, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज ये है, उस समय इसको प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन नाउ आज के दिन में सर ये ग्लोबली मोर देन 200 मिलियन यूजर हैं इसके।
1: क्या बात।
2: और इंडिया सबसे आगे उभरता हुआ आ रहा है और इंडिया में लगभग 2 लाख चिकित्सक उपलब्ध हैं। अब इस अंदाज से दायरा लगाइए कितने यूजर्स होंगे। इसके बाद लीडिंग पोटेंसी अभी इसमें जो है, जो भी मेन स्ट्रीम को ऑक्यूपाई करने का कोशिश कर रहा है, पहले ये पैरेलल पैथी में नहीं आते थे, गरीब लोग जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज थे बस वही जाते थे, लेकिन चूंकि अब ये पता चल रहा है कि इट इज द प्योर फॉर्म, तो अब नए लोग आ रहे हैं, नए पढ़े लिखे लोग इसको मेन स्ट्रीम में अक्वायर कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स के जगह इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसका बायोस इफेक्ट नहीं मिल रहा है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, आज आपसे बात करके ये समझ में आ रहा है कि होम्योपैथी सिर्फ मीठी गोली या 2 बूंद ड्रॉप नहीं है, अपने आप में ये संपूर्ण इलाज का एक कारगर विधा है। और आज होम्योपैथी दिवस पर होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति आज और कल विषय पर आप

0: विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुमूल्य समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति आज और कल, इस विषय पर डॉक्टर चंदन से बातचीत कर रहे थे हरेंद्र आजाद। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे, यानी सुबह 7:05 पर प्रस्तुत करेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। सुबह 7:25 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन, इनसे आप सुनेंगे राग अहिर भैरव। सुबह 9:10 पर पेश करेंगे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम रसमंजरी का प्रसारण होगा सुबह 10:00। सुबह 10:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मोहम्मद असलम से कुछ गजल। दोपहर 12:00 का समय है कार्यक्रम बिहार के लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कुछ भोजपुरी लोकगीत भरत सिंह भारती की आवाज में। फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम में आज का विषय है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके कारण, लक्षण और बचाव। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर शशि प्रकाश। दोपहर 1:05 पराग कार्यक्रम में आप सुनेंगे मुकेश कुमार से वार्ता, विषय है राजर्षि टंडन और लोकमान्य का इतिहास।

सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। भोजपुरी कार्यक्रम आरती का प्रसारण होगा शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में शाम 7 बजे किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

0: रात्रि 8 बजे आनंद उठा सकते हैं आप फिल्म संगीत का, और रात्रि 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे मोहम्मद असलम से कुछ गजल। रात्रि 9:30 पर प्रस्तुत करेंगे हिंदी साप्ताहिक साहित्यिक कार्यक्रम शब्द शिल्प, और रात्रि 10 बजे से आप पुनः आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा। पहले सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर हिंदी समाचार का प्रसारण होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् एकविंशति शताब्द्याः भारतं विकसित भारतं भवितुं संकल्पबद्धं वर्तते। तेनोदीरितं यत् साम्प्रतं भारतं तादृशः देशः यः अधिक विकासे विश्वसिति। विगत द्वादश

0: वर्षेषु स्वस्य तृतीयम् आस्ट्रेलिया भ्रमणं हेट्रिक् इति विज्ञापयता तेन प्रतिपादितं यत् एषः प्रवासः भारत आस्ट्रेलिया सम्बद्धानां अपूर्वगमितां सूचयति। अत्रावसरे आस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्री एन्थनी एल्बनीस् अपि तत्र उपस्थितः आसीत्। तेन तत्रत्यं जनसमूहं वीक्ष्य एषा सहभागिता दृढतरा इत्युक्तम्। अस्मात् पुरा उभयोः देशयोर्नेतृभ्यां मेलबर्न् नगरे तृतीये भारत आस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा शिष्टमण्डलस्तरीया द्विपाक्षिकी वार्ता विहिता। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां च स्थापयितुं द्वाभ्यां नेतृभ्यां रक्षा सुरक्षा सहयोग संयुक्त घोषणापत्रे हस्ताक्षरं विहितम्।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: वार्ताहरान् सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री न्यगादीत् यत् भारत आस्ट्रेलिया देशाभ्यां परमाणु ऊर्जा क्षेत्रे ऐतिहासिकः सहयोगः साधितः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः प्रत्यपादयत् यत् एकः सुरक्षितः समृद्धश्च सीमाप्रान्तः अथ जाग्रतः समाजः सम्भूय एव देशं सुरक्षितं विधातुं शक्नुवन्ति। गृहमन्त्रिणा ह्यः नवदेहल्याम् आरक्षक अधीक्षकाणां सम्मेलने सम्भाषणं कुर्वता प्रतिपादितं यत् वैब्रेंट विलेजेस् इत्यस्य क्रान्तिकारी उपक्रमस्य अन्तर्गतं सीमाप्रान्तेभ्यः पलायनम् अपाकर्तुं प्रत्यग्रवृत्त्यवसराणां क्रियान्वयनं विधीयते। श्रीशाहः सविशेषं प्रावोचत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः कुशलनेतृत्वे केन्द्रप्रशासनेन सीमावर्ती अवसंरचनासु वैज्ञानिकरीत्या 40% यावत् अभूतपूर्वो विकासो विहितः। देशे द्रुतगत्या प्रवर्धमानस्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य विविधासु अनियमिततासु वर्धमानां चिन्तां वीक्ष्य राष्ट्रिय महिला आयोगेन एका उच्चस्तरीया विशेषज्ञ समितिः निर्मिता। अत्रावधेयं यत् इयं समितिः महिलानां प्रजननाधिकाराणां प्रतिष्ठायाः सुरक्षायाश्च संरक्षणं करोति। तत्रैव आईवीएफ चिकित्सालयानां एआईटी केन्द्राणाम् अथ युग्मकोशानां नियन्त्रकतन्त्राणां प्रासंगिकविधानां च व्यापकं पुनरीक्षणं विधास्यति। संयुक्तराज्यामेरिका बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पार्श्वे वैमानिक आक्रमणं कृतवानिति ईरानेन आरोपितम्। ईरानस्य प्रशासनिक वार्ता संस्थया संसूचितं यत् एतत् आक्रमणं अमेरिका देशस्य सेना द्वारा स्व आक्रमणानि समापनस्य होरानन्तरमेव जातम्। इतः प्राग् अमेरिका देशेन ईरान देशस्य उपरि नूतनानि वायु आक्रमणानि कृतानि। यदा तु तेहरान देशः पश्चिमेशियायाम् अमेरिका सम्बद्ध देशान् लक्ष्यीकृत्य प्रक्षेपास्त्र प्रहारैः प्रत्युत्तरं दत्तवान्। ईरान देशस्य स्वास्थ्य मन्त्रालयः अवोचत् यत् अमेरिका देशेन कृतेषु दिनद्वयाक्रमणेषु न्यूनातिन्यूनं 14 जनाः मृताः। पादकन्दुक क्रीडायाम् अमेरिका देशस्य बोस्टन् नगरे आयोजिते प्रथमे प्रागुपान्त्यचरणस्य द्वन्द्वे फ्रांस दलं मैरिको दलं पराभूय उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवत् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की।

0: श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने यूरेनियम आपूर्ति और महत्वपूर्ण खनिज गलियारे पर ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। यह एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। 12 वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की अपनी तीसरी यात्रा में प्रधानमंत्री ने 10 लाख से अधिक प्रवासी भारतीयों को द्विपक्षीय मित्रता का आधार स्तंभ बताया। श्री मोदी आज ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने तथा राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुरक्षित सीमा, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और जागरूक समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने कहा कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहनों के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी आशंकाओं को वो खारिज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में एक समान नागरिक संहिता UCC लागू करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की। प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव कानून की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति आज और कल गोवा में व्यापक विचार विमर्श करेगी। समिति अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत गोवा का दौरा कर रही है। फुटबॉल विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। ब्रिस्टल में चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत के 159 रन के लक्ष्य को इंग्लैंड ने 37 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज तेज वर्षा का अनुमान है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य महाराष्ट्र में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हालचाल। श्रोताओं, हालचाल कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं वंदना। कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सबसे पहले आज के दिन के इतिहास और महत्वपूर्ण दिवस की। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवसों की। तो भारत में आज राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। ये दिवस मछली पालन से जुड़े किसानों के योगदान को सम्मान देने और मत्स्य पालन

को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे यानी वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने के पीछे उद्देश्य है स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना। और अब आगे चर्चा करते हैं आज के इतिहास की। तो आज ही के दिन साल 1806 में तमिलनाडु के वेल्लोर किले में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहला संगठित और सशस्त्र विद्रोह किया था, जिसे हम वेल्लोर विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये विद्रोह 1857 की क्रांति से भी करीब 50 साल पहले हुआ था। 1800 ईस्वी में आज ही के दिन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, जिसने भारतीय भाषाओं और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्रोताओं, आज हम जिस वायरलेस टेक्नोलॉजी और बिजली यानी एसी करंट पर हमारी जिंदगी टिकी है, क्या आप जानते हैं उसे दुनिया के सामने लाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जी हाँ, पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। इनका जन्म आज ही के दिन 1856 में हुआ था। उन्होंने रिमोट कंट्रोल, रोबोटिक्स और राडार जैसे 300 से ज्यादा अनोखे आविष्कार किए, और अगर टेस्ला ना होते तो शायद आज हमारी दुनिया इतनी आधुनिक ना होती। साथ ही आपको बता दें, आज के दिन जन्म लेने वाले कुछ प्रमुख हस्तियों के बारे में, तो भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का जन्म आज ही के दिन 1949 में हुआ था। आपको बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 10,000 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्हीं के नाम से है। तो चलिए, बातचीत का सिलसिला तो जारी रहेगा, जानकारियां तो और भी हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत वाणी जयराम की आवाज में।

श्रोताओं, स्वस्थ और सुखी जीवन की कुंजी है योग और फिटनेस। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना अक्सर पीछे छूट जाता है। ऐसे में योग और नियमित व्यायाम हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्रोताओं, योग केवल शरीर को लचीला बनाता केवल लचीला नहीं बनाता, बल्कि यह हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। हर दिन कुछ समय योगासन, प्राणायाम और ध्यान के लिए निकालने से तनाव कम होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रोताओं, फिटनेस का मतलब केवल वजन कम करना नहीं होता है, बल्कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, सक्रिय रहे और ऊर्जावान रहे, तभी हम फिट माने जा सकते हैं। और इसके लिए आप योग के अलावा और भी कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जैसे कि आप नियमित रूप से टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या फिर किसी खेल में भाग ले सकते हैं, जिससे कि हमारे हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियां जो है वो मजबूत बनती हैं। याद रखिए श्रोताओं, स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय योग और फिटनेस के लिए निकालेंगे तो न सिर्फ हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और ऊर्जावान बना रहेगा। और अब समय है एक और प्यारा सा गीत सुनने का। लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में रजनीगंधा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना।

आशुतोष, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए जफर हुसैन कव्वाल और साथियों से बज्म कव्वाली।

खां के सिपाह लोगो, अरे खां के सिपाह लोगो, राजा की दर की मीटी, खां के सिपाह लोगो, राजा की दर की मीटी, राजा सिपाह लोगो, खां के सिपाह लोगो, खां के सिपाह लोगो, राजा के दर की मिट्टी, बीमार भी हुआ।

0: जफर हुसैन कव्वाल और साथियों से अभी आप सुन रहे थे कव्वाली।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट से मोहन वीणा वादन। इनसे हम सुनेंगे राग अहिर भैरव। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं अभिजीत बैनर्जी। तो लीजिए सुनिए राग अहिर भैरव पंडित विश्व मोहन भट्ट से।

पंडित विश्वमोहन भट्ट से अभी आप सुन रहे थे मोहन वीणा वादन राग अहिर भैरव। तबले पर इनका साथ दे रहे थे अभिजीत बैनर्जी। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

0: रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज।

0: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की दो दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। अमरीकी और इसराइली हमलों में उनकी मृत्यु के 4 महीने बाद हुआ अंतिम संस्कार। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया और पुरुष टी20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई है। ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ है। दोनों देशों ने स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ कल मेलबर्न में तीसरी ऑस्ट्रेलिया भारत वार्षिक शिखर वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और सशक्त बनाने पर चर्चा की। श्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1: पीएम सूर्यघर योजना को सपोर्ट करने के लिए हमने मिलकर गुजरात में रूफटॉप सोलर ट्रेनिंग एकेडमी बनाई है। ये एकेडमी अनेक महिलाओं और युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग में योगदान देगी। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी।
0: बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मेलबर्न मीट्स मोदी कार्यक्रम में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया गठबंधन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में चिप से लेकर जहाजों तक के विनिर्माण का तंत्र विकसित किया जा रहा है।
1: आज चिप से लेकर शिप तक मैन्युफैक्चरिंग का भारत में एक नया इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है। भारत के बड़े सपनों, बड़ी एस्पिरेशंस की नींव है। पीपल फर्स्ट यानी नागरिक देवो भव का मंत्र, ये आज के भारत की गवर्नेंस का मूल मंत्र बन गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ आज मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड का दौरा किया। दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा क्रिकेट सहयोग, खेल अवसंरचना, आईपीएल, बीबीएल साझेदारी और 2032 में ब्रिस्बेन ओलंपिक और भारत की 2036 में ओलंपिक के लिए बोली सहित प्रमुख वैश्विक खेल आयोजनों से पहले सहयोग पर केंद्रित थे। ऑस्ट्रेलिया यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के नेता प्रतिपक्ष एंगस टेलर से मुलाकात की। उन्होंने श्री टेलर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रगाढ़ होते संबंधों और भविष्य में आने वाले अवसरों पर सार्थक चर्चा की। एक रिपोर्ट। यह बैठक इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों का व्यापक और मजबूत समर्थन प्राप्त है। रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नेता प्रतिपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड का सच्चा मित्र बताया। दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिखर वार्ता के प्रमुख निष्कर्षों के अनुरूप श्री टेलर ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम के निर्यात का समर्थन किया। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: श्री मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड जाएंगे। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ऑकलैंड पूरी तरह तैयार है। यहाँ बसे भारतीय समुदाय के साथ साथ स्थानीय न्यूजीलैंड वासी भी पारंपरिक माओरी अभिवादन किया ओरा मोदी कहकर उनका स्वागत करने को उत्सुक हैं। महिलाएं, युवा, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के सदस्य इस यात्रा को भारत और न्यूजीलैंड के

0: बंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत मान रहे हैं। उनका विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा व्यापार, शिक्षा, निवेश, खेल और सांस्कृतिक सहयोग को नई गति देगी। प्रवासी भारतीयों का कहना है कि करीब चार दशकों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आगमन उनके लिए गर्व, सम्मान और भावनाओं से जुड़ा एक ऐतिहासिक पल है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड से।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित रहे।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ये ईंधन मानक E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। हालांकि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जिन्हें विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में श्री पुरी ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को नुकसान पहुंचने और वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने संबंधी शंकाओं को भी खारिज किया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता UCC का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल महाराष्ट्र विधानसभा में इसकी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
4: सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता वाली ये समिति अगले 6 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में नागपुर में विधानसभा और विधान परिषद में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। न्यायमूर्ति रंजना देसाई इससे पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं। उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना था। इसके बाद गुजरात ने अपना UCC कानून पारित किया जबकि असम इस वर्ष ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा

0: चुनाव के लिए सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिगबराइस को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन सीटों पर उपचुनाव इस महीने की 24 तारीख को होंगे। तीनों नेता कल तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद स्थित इमाम रजा दरगाह में अंतिम विदाई दी गई। हजारों समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए एकत्रित हुए। ईरानी मीडिया ने बताया कि उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफा खामनेई ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की। इस वर्ष 28 फरवरी को अमेरिका इसराइल के हमलों में आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी। और अब खेल खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अमेरिका के बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बापे ने 60वें मिनट और उस्मान डेम्बेले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। विंबलडन टेनिस में महिला सिंगल्स का फाइनल चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा और कैरोलिना मुचोवा के बीच खेला जाएगा। लिंडा नोस्कोवा ने सेमीफाइनल में यूक्रेन की मार्टा कोत्स्युक को हराकर पहली बार विंबलडन और ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। वहीं कैरोलिना मुचोवा ने अमेरिका की कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में प्रवेश किया।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, भारत को ऑस्ट्रेलिया करेगा यूरेनियम की आपूर्ति, गगनयान मिशन में भी देगा साथ। जनसत्ता के शब्द हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया में रक्षा करार, व्यापार सौदे पर तेजी से काम। अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला कमर्शियल परमाणु संचालित सैटेलाइट। सफल लॉन्चिंग, अंतरिक्ष में ऊर्जा के लिए सूरज पर नहीं रहेंगे निर्भर, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। आसमान बरसा, NCR थमा, 3 साल बाद दिल्ली में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश। नवभारत टाइम्स ने कल बारिश से बेहाल लोगों की अलग अलग तस्वीरें प्रकाशित की हैं। पत्र लिखता है, सड़कों और अंडरपास में भरा पानी, कई जगह लगा जाम। दैनिक भास्कर ने बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के खुलने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, पहली बार बीजापुर के जंगल में सफारी, 40 साल जिन नक्सलियों ने आने से रोका था वहीं पर्यटकों को घुमाएंगे, प्रशिक्षण देकर नक्सलियों को गाइड बनाने की है तैयारी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर पश्चिम एशिया पर फिर से अस्थिरता के बादल मंडराने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, आक्रामक ट्रंप से अस्थिर दुनिया। पत्र लिखता है, जब तक व्यापक बातचीत के जरिए हॉर्मुज जलमार्ग का विवाद नहीं सुलझाया जाएगा तब तक अमेरिका और ईरान दुनिया के अन्य देशों की परेशानी बढ़ाते रहेंगे।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौते को लागू करने पर सहमति जताई। ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की आपूर्ति के लिए भी समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड की 2 दिन की यात्रा पर ऑकलैंड पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सुरक्षित सीमाएं, समृद्ध सीमावर्ती क्षेत्र और सतर्क समाज मिलकर देश को सुरक्षित बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को मशहद में सुपुर्दे खाक किया गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। पुरुष T20 क्रिकेट में इंग्लैंड ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है और मर्दों के क्रिकेट में चौथे टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। अब खबरें तफसील से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। दोनों मुल्कों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके हम मनसब एंथनी एल्बनीज के दरमियान बातचीत के दौरान दिफाई और बहरी सिक्योरिटी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम का भी ऐलान किया है। कल मेलबर्न में तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह मीटिंग के अहम नतीजों में दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक के बारे में मुश्तरका ऐलानिया और बहरी सिक्योरिटी तावुन से मुतालिक खाका शामिल हैं। बातचीत के बाद एक मुश्तरका अखबारी बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल महज 2 समंदरों के संगम का मकाम नहीं, बल्कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी हम ख्याल जमहूरी मुल्कों की मुश्तरका उमंगों की अक्कासी होती है।
1: हमारे मैरिटाइम सिक्योरिटी कोलैबोरेशन रोडमैप से इंडो पैसिफिक में हमारे साझा प्रयासों को नई ताकत मिलेगी। हम शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर और मेंटेनेंस में भी मिलकर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड, आज हमने कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की।
0: बाद में मीडिया को जानकारी देते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि तरफेन ने भारत को ऑस्ट्रेलिया की तरफ से यूरेनियम की तवील मुद्दती सप्लाई के लिए इंतजामी समझौते को हतमी शक्ल दी है। उम्मीद है कि इस मुआहदे से माहौलियात के लिए साजगार भारत का तवानाई प्रोग्राम मुस्तहकम हो सकेगा और नेट जीरो के उसके मकासद को तकवीत मिलेगी।
2: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcome today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration Roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
0: बाद में मेलबर्न में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल्द से जल्द दुनिया की चोटी की 3 मईशतों में से एक बनने की भारत की ख्वाहिश ज्यादा तरक्की ज्यादा कामयाबी के मंत्र पर मबनी है।
1: 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। ये वो भारत है जो कहता है ग्रो मोर अचीव मोर। हम 140 करोड़ एस्पिरेशन से भरे राष्ट्र है। हम अधीर है, बेसब्र है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं।
0: ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस कार्रवाई से दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाई अंजाम देने के लिए भारत के अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई निजाम की सलाहियत और उसके मौसर होने का मुजाहिरा हुआ।
1: भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देख ही लिया होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गुंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
0: जनाब मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी नई बुलंदी पर पहुंच गई है और इसमें मुश्तरका अकदार अवाम से अवाम के मजबूत राबतों और मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक में वसत का अहम रोल है। वजीर आजम ने भारतीय बिरादरी के 10 लाख अफराद को बाहमी ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज ने भारतीय बिरादरी को दोनों मुल्कों के दरमियान एक जीते जागते पुल से ताबीर किया।
3: The energy that we feel in here tonight defines the Australia-India partnership. It is an enthusiasm and a dynamism that drives the positivity and promise of our two nations and peoples.
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेलबर्न में ऑपोजिशन के लीडर एंगस टेलर से मुलाकात की। नामनिगार ने बताया है कि दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात और सियासी इश्तराक पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
4: ये मीटिंग वाज़े इशारा करती है कि ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात को दोनों अहम पार्टियों की किस कदर तायीद हासिल है। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तआवुन पर इत्तेफाक करते हुए हिज़्ब

0: बाड़ी मराकज बंद कर दिए गए हैं। मशहद में इमाम रजा बारगाह में ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई की तदफीन हुई और इसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। उनके सबसे बड़े बेटे सैयद मुस्तफ़ा खामनाई ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। आयतुल्ला अली खामनाई इस साल 28 फरवरी को अमरीका इसराइल हमलों में हलाक हो गए थे, जिसके बाद मगरबी एशिया में बड़े पैमाने पर महाजाराई का सिलसिला शुरू हो गया। उनके बेटे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया का नया रहबर आला मुकर्रर किया गया था। फीफा आलमी कप में अमरीका के बॉस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें एक दूसरे पर गोल नहीं कर पाई थीं, लेकिन दूसरे हाफ में फ्रांस ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया और 60वें मिनट और 66वें मिनट में उसके दो खिलाड़ियों ने एक एक गोल किया। मर्दों के क्रिकेट में ब्रिस्टल में चौथे टी20 बैनुल अक्वामी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की सबकत हासिल कर ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए भारत ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 158 रन बनाए थे। भारतीय कप्तान सुरेश अय्यर ने 49 गेंदों में 80 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इंग्लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और जॉश टंग ने 2-2 विकेट हासिल किए। खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम लंदन के तारीखी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आज इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए तारीख रकम करेगी। ये लॉर्ड्स के मैदान पर खवातीन का पहला टेस्ट मैच होगा। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस तारीखी मुकाबले को यादगार बनाना चाहेगा। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं अब्दुल वाहिद।
1: शुक्रिया अर्जुमंत। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर पर शाया किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में तारीखी पेशरफ से दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, तवानाई और साइबर सिक्योरिटी समेत मुतअद्दिद अहम माहदे। मगरबी एशिया कशीदगी के ताल्लुक से भारत के मौकिफ को भी उर्दू अखबारात ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, भारत का तहम्मुल और सिफारतकारी पर जोर। दिल्ली में भारत रूस वर्किंग कमेटी की 14वीं मीटिंग से मुतल्लिक खबर को भी अखबारात ने नुमाया तौर पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई पर जोर। नायब सदर जमहूरिया की जानिब से माहिगीरी को फरोग देने से मुतल्लिक कौमी प्रोग्राम के आगाज की खबर को भी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल एटमी इश्तराक के अपने समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक कर लिया है, जिससे भारत को यूरेनियम बरामद करने की राह हमवार हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के 2 दिन के दौरे पर आज ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि महफूज सरहद, खुशहाल सरहदी खत्ते और चौकस सोसाइटी मिलकर मुल्क को महफूज बना सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत के लिए यकसां सिविल कोड तैयार करने की खातिर 7 अरकान की एक कमेटी बनाई है। ईरान के साबिक रहबरे आला आयतुल्ला अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो 4 महीने पहले अमरीका और इसराइल के हमलों में मारे गए थे। और फ्रांस मराकश को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई U23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स रिले का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में 1,423 करोड़ रुपये की राशि को DBT के माध्यम से भेजेंगे। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुक को 1,100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस सम्मेलन में बिहार, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस अधीक्षकों ने भाग लिया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत पलायन रोकने, रोजगार सृजित करने और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का 100% कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार देश को पूरी तरह से घुसपैठ मुक्त बनाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था का निर्माण कर रही है। भारत म्यांमार सीमा पर 31,000 करोड़ रुपए की लागत से बाड़ लगा रही है। सम्मेलन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति का आकलन करके प्रवर्तन में सुधार के उपायों की पहचान कर देश के सीमा सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना था। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में भारी पैमाने पर लंबित ट्रैफिक चालानों के मद्देनजर ये व्यवस्था की गई है। इसके तहत जिला परिवहन अधिकारी, यातायात पुलिस और संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोगों से फर्जी ट्रैफिक चालान से सावधान रहने की अपील की है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई के अनुसार SMS या WhatsApp के माध्यम से मिलने वाले ट्रैफिक चालान के लंबित रहने के संदेशों को आधिकारिक पोर्टल echalan.parivahan.gov.in पर सत्यापित करें। PIB ने कहा है कि फर्जी संदेशों के जरिए पहुंचे लिंक पर क्लिक करने

0: से साइबर ठगों द्वारा ओटीपी चोरी किया जा सकता है या बैंक खाते या यूपीआई से अनधिकृत लेन देन हो सकता है। पीआईबी ने लोगों को ऐसे लिंक नहीं खोलने की सलाह दी है। परिवहन विभाग राज्य भर के निजी स्कूली वाहनों का लेखा जोखा रखने के लिए इसी महीने एक पोर्टल लॉन्च करेगा। विभाग के सचिव राजकुमार ने बताया कि इस पोर्टल पर सभी स्कूल अपना पंजीयन कराएंगे। पोर्टल पर वाहन और उसके चालकों का पूरा विवरण भी दर्ज होगा। पोर्टल के माध्यम से वाहनों के फिटनेस और बीमा पर भी नजर रखी जाएगी। सचिव ने कहा कि स्कूली वाहनों को लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सभी यातायात पुलिस अधीक्षक और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार E85 ईंधन लाने की योजना बना रही है, जो मानक E20 पेट्रोल से लगभग 20 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि E85 केवल उन वाहनों के लिए उपलब्ध होगा जो विशेष रूप से इस ईंधन के उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कदम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत प्रदान करना और साथ ही सरकार के इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उन्होंने व्यापक जैव ईंधन नीति का बचाव करते हुए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से इंजन को होने वाले नुकसान और वाहन के प्रदर्शन से संबंधित चिंताओं को खारिज कर दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने IVF केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी ART क्षेत्र में अनियमितताओं के कारण किया गया। यह समिति IVF क्लिनिक, ART केंद्रों और गैमिट बैंकों को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे और संबंधित कानूनों की व्यापक समीक्षा करेगी। इसमें महिलाओं को प्रजनन अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशा मेनन इस विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता करेंगी। उपराष्ट्रपति डॉ CP राधाकृष्ण 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को गया जी में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा के प्राइड और बिपार्ड के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नदियों में कटाव निरोधक कार्य को एक सप्ताह के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में तटबंधों की नियमित और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने और वरीय अधिकारियों को लगातार स्थल निरीक्षण करने को भी कहा है। श्री चौधरी ने संवेदनशील स्थानों पर बाढ़ निरोधी कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यक सामग्री के भंडारण के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार बाढ़ से पूर्व सटीक, समयबद्ध और विश्वसनीय सूचना आम लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्तरों पर पहल कर रही है। इस संबंध में बिहार मौसम सेवा केंद्र, भारतीय मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें बाढ़ संबंधी पूर्व चेतावनी

0: चेतावनी प्रणाली को अधिक प्रभावी, समन्वित और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में बाढ़ से एक भी जान नहीं जाने देने के संकल्प के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित कार्य योजना तैयार की जाएगी। साथ ही राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र SEOC के माध्यम से एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर और खगड़िया समेत दक्षिण पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान राज्य के अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है।
1: राज्य के उत्तरी भाग के अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है। दक्षिणी भाग कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने चलने की संभावना है।
0: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान कटिहार के अहमदाबाद में सबसे अधिक 108.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी को आज मशहद शहर में इमाम रजा की दरगाह पर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। अंतिम यात्रा और जनाजे की नमाज में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार भारी भीड़ के कारण ताबूत को हवाई मार्ग से दरगाह तक पहुंचाया गया। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्घरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल के सभी 84 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आज से प्रत्येक महीने के आखिरी शनिवार को शक्ति संवाद आयोजित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे शारदा पाठशाला कहलगांव में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर अन्य विद्यालयों में महिला पदाधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर छात्राओं से सीधा संवाद करेंगी। इस दौरान वे छात्राओं को जीवन कौशल, अधिकारों और भविष्य निर्माण से जुड़े विषयों पर मार्गदर्शन देंगी। प्रदेश के सेतु मिश्रा ने चीन के ओरदोस में चल रही पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले का स्वर्ण पदक जीत लिया है। मोतिहारी के सेतु मिश्रा के अलावा आस्तिक प्रसाद और दो महिला धावक सांद्रमोल साबू तथा श्रावणी सचिन सांगले की चौकड़ी ने दौड़ 3:18 और 64 नैनो सेकंड में पूरी की। सेतु मिश्रा 400 मीटर पुरुष दौड़ में भी भाग लेंगे। इधर प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में प्रदेश के ही विभास्कर कुमार हीट में चौथे स्थान पर रहे। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने पर सेतु मिश्रा को बधाई दी है। ब्रिस्टल में मेजबान इंग्लैंड के साथ चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में कल रात भारत को 9 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बनाकर 5 मैचों की श्रृंखला पर कब्जा कर लिया है। T20 श्रृंखला में यह भारतीय टीम की लगातार दूसरी हार है। दोनों टीमें कल साउथहैम्पटन में श्रृंखला का 5वां और अंतिम मैच खेलेंगी। इसके बाद भारत 14 जुलाई से इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला खेलेगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ के मद्देनजर चलाई जा रही 11 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इनमें पुणे दानापुर स्पेशल ट्रेन, बरौनी नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दरभंगा नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दानापुर आनंद विहार स्पेशल समेत अन्य ट्रेनें शामिल हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है,

0: बिहार में 1 करोड़ नए राशन कार्ड बनेंगे, खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित होगा। दैनिक जागरण ने रेलवे बोर्ड से जुड़ी खबर पर लिखा है, रेलवे में अनुकंपा पर नियुक्त आश्रित भी ओपीएस के हकदार। दैनिक भास्कर ने ईओयू की कार्रवाई पर लिखा है, उत्पाद निरीक्षक ने 21 साल की नौकरी में 2 करोड़ 36 लाख की अवैध संपत्ति बनाई। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदेगा भारत, 1100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य। राष्ट्रीय सागर लिखता है, टेंडर घोटाला में ऋषि की याचिका खारिज। आज अखबार की सुर्खी है, पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट बनेगा विश्वविद्यालय। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। प्रदेश में आपसी समझौते के आधार पर सुलझने वाले ट्रैफिक चालानों का निपटारा स्थायी लोक अदालत में होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आईवीएफ केंद्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। और चीन में चल रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोतिहारी के सेतु मिश्रा ने 4x400 मीटर मिक्स रिले का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
1: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समीन, अभी आप जमील मेहंदी की आवाज में सुन रहे थे ये नात। चलिए अब करते हैं आज की थोड़ी बात। आज बात करते हैं इल्म उरूज और इल्म बलागत की। शायरी और अदब में हुस्न पैदा करने और जबान को कवायद के मुताबिक संवारने के लिए इल्म उरूज और इल्म बलागत को बुनियादी और अहम तरीन उलूम है। इल्म उरूज वो इल्म है जिससे में शायरी के आवाज़न, बहर और सोती आहंग को परखा जाता है। इसकी मदद से किसी भी शेर के वज़न की सेहत को जांचा जाता है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया वो वज़न के लिहाज से मौज़न है या ना मौज़न। ये एक मिसाल थी। इसकी बुनियादी अनासिर ये हैं, अनासिर हैं बहर, तख्ती और अरकान। इशार के मुकर्रर अनासिर हैं बहर, और जो इशार के मुकर्रर अरहाद आवाज़न बहर होते हैं, शेर के उस मुकर्रर अरकान में तकसीम करने के करके वज़न जांचने के अमल को तख्ती कहते हैं। और अरकान को वो मुकर्रर अल्फाज है जिसमें जिनसे बहरें बनती हैं। इल्म बलागत के लगवी मानी पहुंचा है, यानी बात को मुअस्सर अंदाज में पहचानना। वो फन है जिसमें जिसके जरिए कलाम को मौके और महल के मुनासबत से इस तरह अदा किया जाए कि सामा पर गहरा असर पड़े। सामा में सामीन पर गहरा असर हो। इल्म बलागत के तीन हिस्से हैं, इल्म बयान, इल्म मानी और इल्म बदी। इल्म बयान में एक बात को मुख्तलिफ और खूबसूरत तरीक़ों से अदा करना सिखाया जाता है। इल्म मानी में कलाम को कवायद और सामा की हालात के मुताबिक रखना सिखाया जाता है, जबकि इल्म बदी में कलाम की जाहिरी खूबसूरती और लफ्जी व मानवी सनाई को बढ़ावा दिया जाता है। मुख्तसर में ये कहें तो इल्म उरूज शेर के जिस्म को दुरुस्त करता है और इल्म बलागत शेर की रूह को निखारता है। तो ये थी आज की बात। चलिए अब सुनते हैं आज का मकाला, बातें जिनसे जिंदगी संवरती है। आज का मौजू है जिंदगी के आदाब उसूल, और मकाला निगार हैं सनाउल मुस्तफ़ा।
1: मोहतरम सामीन हजरात, हम सब इंसान हैं और इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, अक्लो शऊर से नवाजा है, अच्छे बुरे की तमीज़ दी है। लिहाजा हमें बहैसियत इंसान अपनी जिंदगी को उसूल आदाब के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते रहना

सामिन, अभी आप कुदसिया फातिमा से उनकी नात समात कर रहे थे। आइए अब प्रोग्राम के आखिर में चलते चलते चंद नात समात करते हैं।

सामिन, अभी आप आरिफ शाहबादी की लिखी ये नात सुन रहे थे, इरम फातमा जन्नत से की आवाज़ में। इसी के साथ हमारे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त यहीं ख़त्म होता है। ज़रीन फातमा को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्मी गानों का कार्यक्रम रसमंजरी। श्रोताओं, रसमंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाज़ में। इस गाने को हमने लिया है रांझना फिल्म से। इरशाद कामिल के बोल हैं और संगीत है ए आर रहमान का।

शिल्पा राव की आवाज में लीजिए सुनिए अगला गाना पा फिल्म से। स्वानंद किरकिरे के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है इलैया राजा ने।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं रसमंजरी। कार्यक्रम में लीजिए पेश है अगला गाना केदारनाथ फिल्म से, आवाजें हैं अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की। इस गाने के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है अमित त्रिवेदी का।

वेक अप सिड इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज़ में। जावेद अख्तर के बोल थे और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। आइए सुनते हैं अगला गाना सावरिया फिल्म से, शान की आवाज़ में, समीर के बोल और संगीत मोंटी का है।

और आइए अब सुनते हैं अगला गाना दिल्ली सिक्स फिल्म से ए आर रहमान, बेनी दयाल और तन्वी की आवाज़ में, प्रसून जोशी के बोल हैं और इसकी धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: यार रहमान की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। दिल्ली 6 फिल्म का ये गाना, इसके साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, लीजिए सुनिए सुगम संगीत। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद असलम की आवाज में चंद गजल। पहली गजल पेश है शकील बदायूनी की लिखी।

मोहम्मद असलम की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गज़ल। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45:25 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। आलिशा चुनाई की आवाज़ में आपको सुनवा रहे हैं ये गाना मर्डर फिल्म से। अनु मलिक ने इस गाने को संगीत से संवारा है और गाने के बोल हैं राहत इंदौरी के।

लीजिए सुनिए भूल भुलैया फिल्म का गाना के की आवाज में समीर के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: बर्फी फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे पापोन और सुनिधि चौहान की आवाज में। एक संदेश के बाद कार्यक्रम का शेष भाग सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए ओमकारा फिल्म का ये गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। विशाल भारद्वाज ने इस गाने की धुन बनाई है गुलजार के बोल पर।

आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में सुनते हैं अगला गाना, ज़माने को दिखाना है फिल्म से। इस गाने के बोल हैं मजरूह सुल्तानपुरी के और संगीत आर डी बर्मन का है।

फिल्म सागर में भी आपने एस पी बाला सुब्रमण्यम को सुना, जावेद अख्तर के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत, और अब हम सुन रहे हैं सुरेश वाडेकर और अनवर का गाया गीत फिल्म विधाता से। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

फिल्म विधाता में अभी आपने सुरेश वाडिकर और अनवर को सुना, और अब लता मंगेशकर और अमित कुमार को सुनिए। गीत लिया है फिल्म लव स्टोरी से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज सुनिए भोजपुरी लोकगीत। कलाकार हैं भरत सिंह भारती और साथी।

अरे हमारी अंगना हो, हमारी अंगना हो, हमारे अंगना हो, हमारी अंगना।

0: अभी आपने कजरी सुना, कलाकार भरत सिंह भारती के गाए कुछ और लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे एक संदेश के बाद।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

अभी आपने भरत सिंह भारती और साथियों को सुना। संगीत कलाकार हारमोनियम पर ओम प्रकाश चौबे, ढोलक पर रविंद्र कुमार, बांसुरी पर मोहम्मद सरफुद्दीन और कंसी पर थे राजन दास। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब इसी के साथ संपन्न हुआ।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकड़ बाग पटना।
4: कैंसर एक खतरनाक और तेजी से बढ़ती हुई बीमारी है। अगर समय रहते इसकी पहचान कर ली जाए तो इससे बचा जा सकता है। जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: एक छत के नीचे मेडिकल, सर्जिकल, रेडिएशन, हेमाटो ऑन्कोलॉजी तथा अंग विशिष्ट कैंसर विशेषज्ञों जैसे स्त्री कैंसर रोग, स्तन कैंसर, बाल कैंसर रोग के साथ साथ अत्याधुनिक रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और न्यूक्लियर मेडिसिन सुविधाएं।
4: अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0612-350-5050 पर। हार्ट अटैक, समय रहते इलाज न मिलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1068 पर। मेदांता पटना 24/7 हार्ट कमांड सेंटर
5: 1068, हर इमरजेंसी में आपके साथ।
4: स्ट्रोक यानी लकवा, समय रहते इलाज न मिलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। तुरंत अपने नजदीकी स्ट्रोक रेडी सेंटर पर प्राथमिक इलाज करवाएं या आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1068 पर। मेदांता पटना 24/7 स्ट्रोक रेडी सेंटर
5: 1068, हर इमरजेंसी में आपके साथ।
6: श्रोताओं नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे जो विषय है, महत्वपूर्ण विषय है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अगर अनदेखा करते हैं तो कहीं वो गंभीर परिणाम दे सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में है हमारे साथ डॉक्टर शशि प्रकाश। आप MBBS MCH यूरोलॉजिस्ट रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर साहब जैसा कि आज का विषय है यूटीआई, जो अक्सर यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारे श्रोताओं के लिए कि यूटीआई है क्या बेसिकली।
7: जी, यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसका शाब्दिक अर्थ है
6: जी।
7: और इसका मतलब है पूरे ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना, और ये ट्रैक्ट होता है किडनी, किडनी से निकलने वाली नली यानी कि यूरेटर, उसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। तो इन चारों जगहों में कहीं भी अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको हम लोग सामूहिक रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं।
6: तो इसके मुख्य इन्फेक्शन के लक्षण भी होते होंगे कुछ खास?
7: जी, इसके प्रमुख लक्षण है पेशाब में जलन होना
6: जी, जी।
7: पेशाब का बार बार लगना, ऐसा लगना कि जल्दी जाए नहीं तो कपड़े में हो जाएगा
6: जी, जी, जी।
7: पेट के निचले भाग में दर्द होना
6: जी, जी।
7: जलन होना, और जब ये काफी डिजीज एडवांस करता है तो बुखार के रूप में पेट में दर्द, उल्टी, ये सब भी हो सकता है।
6: जैसा कि आपने कहा कि जो पेशाब जब लगता है तो ऐसा लगता है कि मतलब रोक नहीं पाते हैं लोग, तो कई बार लोगों को जैसे खासकर बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें ये समस्या नॉर्मली पाया जाता है, तो ऐसा हम माने कि जैसे उन्हें इसे यूटीआई से वो इन्फेक्टेड हैं या इस समस्या से ग्रसित हैं।
7: देखिए, पेशाब नहीं रोक पाना बहुत सारी बीमारियों में आता है
6: जी, जी।
7: ये प्रोस्टेट रिलेटेड इशू भी हो सकता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर भी हो सकता है और यूटीआई भी हो सकता है
6: जी,
7: ये तीनों चीजों

0: समस्या मिलती है। तो
1: अगर इन्फेक्शन होता है तो लक्षण केवल हम अगर देखें और कारण की हम बात करें, लक्षण में तो जैसा कि आपने बताया कारण की अगर हम बात करें तो क्या कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके कारण बेसिकली ये होता है?
0: देखिए, ये समस्या जो है वो हाइजीन से भी रिलेटेड है।
1: जी
0: मूत्र मार्ग के समीप ही मल द्वार भी होता है,
1: जी
0: तो बहुत सारी बैक्टीरिया का कॉन्टेमिनेशन का
1: जी
0: चांस
1: जी
0: है। अगर हम लोग अपने पेशाब के रास्ते को और मल द्वार को साफ सफाई नहीं रखते हैं तो UTI एक कॉज हो सकता है।
1: जी
0: इसके अलावा कोई अगर आपके शरीर में बनावट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो
1: जी
0: आपको UTI हो सकता है। और अगर आपको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है।
1: एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब। हेलो
2: नमस्ते सर
1: जी, नमस्कार। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दे, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी, मैं डॉक्टर सितारे, बिहार वैशाली जिला है। जी
1: जी, सितारा जी, स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। आप अपना सवाल करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश, यूरोलॉजिस्ट।
2: पेशाब में रह गड़बड़ी हो जाता है, कभी धार फोड़ता है कभी नहीं फोड़ता है।
0: देखिए, पेशाब में अगर आपको धार में कमी हो रही है तो बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। आपका उम्र कितना है?
2: मेरी उम्र 65 बरस सर जी।
0: जी, 65 साल के उम्र में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि पेशाब में इन्फेक्शन या फिर प्रोस्टेट रिलेटेड आपको बीमारियां हो सकती हैं। इसके लिए आपको कुछ सामान्य जांच की जरूरत पड़ेगी।
2: सही सलाह के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सितारा जी आपका हेलो डॉक्टर के कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, हम लोग थे कि इसके और क्या कारण
0: जी,
1: हैं?
0: तो पहला बात हम लोगों ने किया हाइजीन का,
1: जी जी
0: दूसरा अगर शरीर में कोई बनावट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। जी हेलो, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दें।
2: शिमला से बात कर रहा हूँ राकेश। हाँ जी, शिमला से, हिमाचल प्रदेश।
1: अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर के आकाशवाणी पटना के इस कार्यक्रम में। जी राकेश जी, बताएं, अपना सवाल करें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश, यूरोलॉजिस्ट हैं।
2: जी, तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
2: तो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि जो ये जो हमारे जो जो यूज जो कैस की बार की प्रॉब्लम होती है, तो इसका जो है इसका संबंध जो है इलाज किया कैसे किया जाता है।
0: आप यूटीआई के बारे में जानना चाहते हैं?
2: हाँ, UTI की बारे में बोल रहा हूँ। जी
0: जी, इसका बहुत पहले तो इसको कंफर्म करना होगा कि आपको
2: अच्छा
0: यूटीआई ही है। इसके लिए
2: जी
0: आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा, आपको
2: अच्छा
0: यूरिन यूरिन का जांच करना होगा, और
2: अच्छा
0: उससे जब अगर स्पष्ट होता है आपके सिम्टम से आपको क्या विकार है और क्या जांच में आ रहा है, और अगर
2: अच्छा
0: आपको यूटीआई ये होता है कि आपको यूटीआई ही है, तो
2: अच्छा
0: बहुत सारे इसके इलाज हैं, जैसे
2: अच्छा
0: कि आपका साफ सफाई पे ध्यान रखना, कुछ दवाइयाँ जैसे कि एंटीबायोटिक और भी कुछ कुछ दवाइयों को हम लोग ऐड करते हैं जिससे कि
2: अच्छा
0: मरीज ठीक हो जाता है।
2: अच्छा खान पान का कैसे किस तरह से ध्यान रखना चाहिए हम हमार को, जिनको ये चीज होती है UTI भी।
0: देखिए, अगर आपको यूटीआई है तो इसमें ध्यान रखना होगा कि आप पानी की भरपूर मात्रा लें, एक
2: अच्छा
0: संतुलित मात्रा लें, पहली बात। दूसरी बात
2: अच्छा
0: कि ऐसे चीज़ जो पेशाब की एसिडिटी को बढ़ाए, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन खाना और
2: अच्छा
0: हाई हाई प्रोटीन डाइट, इसको कम से कम सेवन करें।
2: जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।
0: जी
1: बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद राकेश जी आपका इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, तो हम लोग कारण थे इस
0: जी,
1: संक्रमण के
0: तो
1: बाद।
0: इसका मुख्य कारण होता है एक तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट होना,
1: जी
0: हाइजीनिसिटी अगर पुअर है तो इसका रीजन होता है। इसके बाद अगर आपके शरीर में कोई बनावटी विकार है जैसे पेशाब के रास्ते में या
1: जी
0: ब्लैडर में तो आपको हो सकता है। इसके अलावा जो ऐसी महिलाएं हैं जो मेनोपॉजल में हैं, जहाँ की उनका महावारी रुकने की समय आ गया है, ऐसे में भी आपको UTI देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसी भी एक समय है जिसमें UTI बहुत आसानी से होता है। तो इसके अलावा अगर आपके शरीर में प्रोस्टेट बढ़ गया है, पेशाब की थैली में अगर पेशाब रुक रहा है, तो
1: जी
0: आपको यूटीआई
2: हेलो
0: हो सकता
1: जी,
0: है।
1: एक श्रोता हमारे साथ जुड़े।
2: प्रणाम सर।
1: जी नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय दें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि प्रकाश, यूरोलॉजिस्ट, पटना के जाने माने। जी आप अपना सवाल करें।
2: मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है।
1: जी राजेंद्र जी, यूरोलॉजिस्ट है, पेशाब और किडनी से रिलेटेड अगर कुछ समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।
2: हाँ, पेशाब के है इसीलिए तो फोन किए हैं
1: जी आप अपना सवाल कीजिए।
2: सर। पेशाब मुझे बहुत हाली हाली होता है, करीब पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट पर पेशाब होते रहता है।
0: जी आपका उम्र कितना है?
2: उम्र सर मेरा 65 साल है।
0: जी, तो आपको या तो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है या प्रोस्टेट रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं।
2: सुनिए ना सर, बहुत पहले हम
0: जी
2: बिहार शरीफ में दिखाए थे तो उस समय अच्छी बोले कि

0: लीवर में सूजन आ गया है और पेशाब के लिए रात में वो गोली लिख दिए थे कि 3 महीना खा के छोड़ दीजिएगा, तो 3 महीना खा के छोड़ दिए, लगभग 3 साल हो गया। फिर इधर 1 महीना से ऐसा हो रहा है, पेशाब ज्यादा हो रहा है
1: जी। तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, कुछ जांच पड़ताल की आपको जरूरत है और सामान्य दवाइयों के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है।
0: फिर वही डॉक्टर साहब के यहाँ जाना पड़ेगा
1: जी
0: ना?
1: जी जी जी अगर आप अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो काफी अच्छा होगा आपके लिए।
0: ठीक है सर,
2: जी
0: धन्यवाद।
2: आप किसी पेशाब या यूरोलॉजिस्ट जो विशेषज्ञ हो उस वहाँ पर या फिर कहीं अच्छे जगह जाकर आप अपना दिखवाएं, अच्छे से जांच करवाएं, निश्चित रूप से ये ठीक होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। तो डॉक्टर साहब हम लोग कारण पे थे, लगातार श्रोताओं का कॉल आ रहा है।
1: जी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होना, मेनोपॉजल पेशेंट होना, पेशाब में के रास्ते में कोई विकार जैसे कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना और जिनका हाइजीन ठीक नहीं है,
2: जी, जी, जी।
1: ये सब मुख्य कारण है यूटीआई के।
2: जैसा कि आपने महिलाओं का जिक्र भी किया, तो ऐसा देखा जाता है या फिर मतलब एक तरह से रिकॉर्ड भी है कि महिलाओं में यूटीआई की जो शिकायत है वो ज़्यादातर देखी जाती है, क्या
1: जी
2: ऐसा है या है तो
1: जी
2: क्या
1: जी नहीं
2: कारण
1: बिल्कुल
2: है?
1: ऐसा देखा गया है, ऐसे बहुत सारे स्टडी हैं जिसमें देखा गया कि 50-60% वुमेन को
2: जी
1: जिंदगी में एक बार यूटीआई होता है। तो ये संख्या पुरुषों से काफ़ी ज़्यादा है
2: जी जी
1: और इसका प्रमुख कारण ये है कि जो यूरेथ्रा जो पेशाब की नली है उसका लंबाई जो है
2: जी जी
1: वो स्त्रियों में वुमेन्स में कम होता है और पैखाना के रास्ते मल द्वार के रास्ते से इसकी नज़दीकी ज़्यादा होती है।
2: जी जी तो इस कारण से ये एक तरह से कारण है।
1: जी
2: तो ज्यादातर जैसा कि मैंने सवाल किया पुरुषों में हालांकि कंपेरेटिवली ये कम पाया जाता है।
1: जी
2: तो यूटीआई के अगर हम बात करें, लक्षण की आपने बात की, क्या कोई ऐसा शुरुआती लक्षण हो जैसे आम जनता के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक गांव सुदूर गांव क्षेत्र में सुविधाएं नहीं है, जानकारी कम है, किसान है, एक आम मजदूर है, तो वो कैसे जाने कि वो इस बीमारी
1: जी
2: से ग्रसित
1: अगर
2: है?
1: उनको पेशाब में तीव्रता हो रही है, पेशाब
2: जी
1: जल्दी जल्दी लग रहा है,
2: जी
1: पेशाब में जलन हो रहा है, पेशाब का रंग बदल गया है, गाढ़ा
2: जी
1: हो गया है, या पेशाब में दुर्गंध हो रही है, तो वो तुरंत समझ सकते हैं कि उनको यूटीआई है।
2: तो खतरे की अगर हम बात करें, जोखिम की बात करें, तो यूटीआई से कितना खतरा का लेवल, जैसे कितना खतरा है
1: जी
2: इसका?
1: यूटीआई सिंपल यूटीआई
2: जी जी
1: कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में बदल सकता है। अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में ये बदला तो आपको सेप्सिस में ले जा सकता है, यानी कि आप इन्फेक्शन में जा सकते हैं, आपकी पूरी शरीर स्थिल पड़ सकती है, आपकी किडनी पे असर पड़ सकता है। तो इस तरह से ये अगर सामान्य परहेज नहीं रखा जाए तो बहुत जल्दी ही ये बदल सकता है गंभीर परिणाम में।
2: जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी जी हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी आप कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दें। जी बताएं आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
3: मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, मेरा नाम बैद्यनाथ है।
2: जी बैद्यनाथ जी आप अपना सवाल करें। आज हमारे साथ है डॉक्टर शशि प्रकाश,
3: कौन
2: यूरोलॉजिस्ट
3: सा
2: है।
3: विषय है?
2: आज यूरोलॉजिस्ट है, किडनी या पेशाब से संबंधित अगर आपको कोई बीमारी है तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ हमारे स्टूडियो में आ जाएं।
3: तो उसमें होता है क्या, जो दिन में कम पेशाब होता है
2: जी जी जी
3: और रात में ज्यादा होता है?
1: जी रात में आपको अधिक बार जग के पेशाब जाने की समस्या है।
3: जी, रात
1: जी
3: में 2-3 बार
1: जी
3: और
1: दो तीन
3: दिन में
1: जी
3: भी दो
1: जी
3: तीन बार होता है, लेकिन दिन में यदि चलते फिरते या यात्रा में रहते हैं तो नहीं होता है।
1: जी जी आपको यूटीआई हो सकता है
3: इस
1: एक।
3: अवस्था में
1: जी
3: क्या वो बीमारी समझा जाएगा?
1: जी जी आपकी उम्र कितनी है?
3: उम्र हमारा है 86 है।
1: जी, इस उम्र में यूटीआई होना और प्रोस्टेट रिलेटेड समस्या होना काफ़ी ही सामान्य बात है। तो इन सब चीज़ों पे आप गौर करें और अगर आपको पेशाब, एक एहतियात के तौर पे रात में सोते समय पानी की मात्रा कम से कम लें। आप सोने से 1 घंटे पहले पानी का इस्तेमाल करें, सोते समय पानी का इस्तेमाल कम से कम करें और अगर पेशाब में जलन हो रही है, समस्या लगातार बनी हुई रहती है, तो अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से मिलिए।
3: कोई विशेष चिंता की बात नहीं ना?
2: आप एक बार अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से, चूंकि हैं, एक जांच कुछ देंगे, जांच के बारे में हम डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे।
3: बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, चलते फिरते हैं, ऐसी बात नहीं है।
2: जी जी तो डॉक्टर साहब के अनुसार आप जांच कराएंगे, निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैद्यनाथ जी कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब जैसा कि ये अभी चिंतित थे कि कोई ज़्यादा चिंता की बात है कि नहीं, कोई भी बीमारी हो, चाहे आप अगर उसको इग्नोर करेंगे तो निश्चित रूप से वह चिंता का विषय बनेगा, लेकिन अगर सही समय पर इलाज कराते हैं आप तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर साहब हम जांच की बात हम लोग अगर करें, तो अगर किसी पुष्टि होती है कि आपको यूटीआई है, आपको यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन है,

0: कौन से जांचें करवाने की जरूरत होती है?
1: देखिए, यूटीआई के अलावा मैं अवेयरनेस के तौर पे ये बताना चाहूंगा कि लोग बताते हैं कि मुझे ज्यादा बार पेशाब लग रही है,
0: जी
1: तो ये हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है कि सामान्य पेशाब क्या होता है। तो सामान्य अगर रात में एक बार और दिन में अगर 5 से 6 बार, ये सामान्य है। इससे ज्यादा बार अगर जाते हैं तो ये असामान्य
0: असामान्य
1: है।
0: हो जाएगा। जी
1: तो ये आपको जानना जरूरी है कि क्या आप जो पेशाब जा रहे हैं वो सामान्य है या असामान्य है। अगर असामान्य है तो उसको आपको समझना होगा। दूसरा, आपको ऐसा लगेगा कि हम जल्दी जाए नहीं तो कपड़े में हो जाएगा,
0: जी
1: इस तरह
0: जी
1: की समस्या आएगी, तो आपको समझना है कि आपको ये यूटीआई हो सकता है। दूसरा आपका सवाल रहा कि क्या ये गंभीर परिणाम में बदल सकता है, तो जी मैंने पहले भी बताया कि ये कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में चेंज हो सकता है। शुरू का पेशाब का इन्फेक्शन बाद में किडनी के इन्फेक्शन में, किडनी रीनल एब्सेस में, पाइलोनेफ्राइटिस में, इन्फेजमेटस पाइलोनेफ्राइटिस में, यानी किडनी की परेशानी में ये तब्दील हो सकता है, एब्सेसिस में जा सकते हैं, ये एक सिस्टेमिक मतलब पूरे शरीर का इन्फेक्शन में तब्दील हो
0: परिवर्तित हो
1: सकता
0: सकता
1: है।
0: है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति अगर अपने आप को है उसका मतलब हल्का फुल्का ऐसा है, तो क्या नियमित एक एक रूटीन बेसिस पे जांच भी कराया जा सकता है?
1: देखिए, रूटीन बेसिस पे केवल कुछ ही समय हम लोग देते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में रूटीन चेकअप किया जाता है।
0: जी।
1: इसके अलावा कोई प्रायर ऑपरेशन से पहले किया जाता है। ऐसे सामान्य मरीज को अगर कोई लक्षण नहीं है
0: नहीं है
1: तो समय समय पे यूरिनरी
0: जांच कराने की
1: जांच
0: आवश्यकता
1: कराने की आवश्यकता नहीं है।
0: आवश्यकता नहीं। अगर एक बार बार किसी व्यक्ति को यूटीआई हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है किसी कारणवश, तो क्या ये इसका कोई लक्षण है गंभीर बीमारी का?
1: देखिए, यूटीआई या तो आपको सिंपल हो सकता है या रिकरेंट यूटीआई हो सकता है।
0: जी।
1: रिकरेंट यूटीआई को हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक साल में अगर 3 और 3 बार से ज्यादा अगर आपको यूटीआई हो रहा है तो वो रिकरेंट यूटीआई है, या 6 महीने में 2 बार से ज्यादा हो रहा है तो आपको रिकरेंट यूटीआई है। निश्चित रूप से रिकरेंट यूटीआई के इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सामान्य यूटीआई से अलग होते
0: अलग
1: हैं।
0: होगा। जी।
1: उसमें जो है बीमारी की जड़ तक पहुंचना जरूरी होता है कि आखिर यूटीआई का रीजन क्या है और उस समस्या को दूर करना।
0: मतलब मेन रूट क्या है, मेन उसका कारण क्या है, उसको पकड़ना होगा
1: जी
0: और उसको दूर करना होगा।
1: जी
0: तो ये एक तरह से गंभीर बीमारी है, तो यूटीआई इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति को है, अगर वो जांच भी कर लेता है, तो किस स्थिति में कब? जैसे कुछ लोग होते हैं कि घर पे ही हल्का फुल्का अगर ऐसा दर्द है तो पानी ज़्यादा पीते हैं और कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन कब डॉक्टर से मिलना ही चाहिए या शुरुआत में ही मिलना चाहिए?
1: नहीं, अगर आपको यूटीआई के लक्षण हैं तो आपको शुरुआत में ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। काउंटर ड्रग यानी कि तुरंत गए और दवा की दुकान से कुछ दवा ले लिए, ये सही नहीं है।
0: जी
1: इससे एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ता है और बाद में यूरिन रूटीन कल्चर में स्टेराइल आता है, निगेटिव आता है और बाद में ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
0: जी जी तो ये ओवर द काउंटर दवा लेके इलाज तो बिल्कुल ही ना करें। अगर इस तरह के लक्षण अगर शिकायत आपको है, तो अपने नज़दीकी जो भी यूरोलॉजिस्ट हैं विशेषकर उनसे मिलिए और सलाह लीजिए, उनके सलाह को मानिए। डॉक्टर साहब, इलाज अगर किसी व्यक्ति को चल रहा है यूटीआई का, तो कुछ दिन दवा को वो अपने रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, लेकिन जब उनकी सुधार हो जाता है तो आमतौर पर वो लोग छोड़ देते हैं दवा, तो क्या स्थिति ये है या फिर पूरा कंप्लीट कोर्स इसमें करना ही चाहिए?
1: देखिए, अगर किसी को सिम्टोमेटिक यूटीआई है तो बहुत ज़्यादा दिन तक इसमें दवा की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यूटीआई में 5 दिन का एंटीबायोटिक काफ़ी है।
0: जी
1: लेकिन ये अगर कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई है यानी कि किसी वजह से हो रहा है, जैसे ओल्ड एज में, जो अभी जितने श्रोता आपसे सवाल पूछ रहे हैं, इसमें प्रोस्टेट एक मुख्य कारण होता है यूटीआई का, क्योंकि प्रोस्टेट के चलते ब्लैडर में पेशाब बचता है, वो कल्चर मीडिया का काम करता है और वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करती हैं,
0: ग्रोथ है।
1: तो उस समय प्रोस्टेट को रूल आउट करना, ये प्रोस्टेट की जो दवाइयाँ हैं ये रीजन बना यूटीआई का, और इसकी दवाई लगातार लंबे समय तक चलती है, ये श्रोताओं को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है।
0: तो ये जैसा कि कहें कि बाद में जो थोड़ा बचता है वो कहीं ना कहीं वो इसका कारण हो सकता है। कई लोग पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर रखते हैं, कम पानी पीते हैं, तो ये कुछ कारण में इसका हो सकता है
1: बिल्कुल
0: यूटीआई?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपको पेशाब को कभी भी होल्ड नहीं करना है ज़्यादा देर तक, और सामान्य मात्रा में पानी यानी कि इतना पानी जरूर पीना है कि 2.5 लीटर से ज़्यादा आपका यूरिन बने, यानी कि हमारे सामान्य जो टेम्परेचर है जिस परिवेश में हम लोग इंडिया में रह रहे हैं उसमें 3.5 लीटर तक पानी पीना बहुत ही जरूरी है।
0: जरूरी है। एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन 3 से 3.5 लीटर पानी
1: बिल्कुल
0: पीना चाहिए,
1: जी जी
0: इसे काफ़ी हद तक यूटीआई से बचने की
1: जी बिल्कुल,
0: संभावना
1: बहुत
0: रहती है।
1: सारी बीमारियों से,
0: जी, यौन संबंध बनाने में और ETI, इससे कुछ रिलेशन है
1: बिल्कुल
0: या ये कहीं ना कहीं ये भी कारण बनता है अगर
1: जी बिल्कुल। यौन संबंध, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एक UTI का कॉज हो सकता है। इवन

0: कुछ लोग कुछ स्पर्मिसाइडल यूज करते हैं, वो भी इसका कारण बनता है। एक्चुअली क्या होता है कि महिलाओं में यूटीआई के चांसेस ज़्यादा हैं, तो महिलाओं से पुरुषों में संक्रमण होने का खतरा हमेशा बना हुआ रहता है।
1: मतलब एक तरह से ये संक्रामक बीमारी भी है
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो इसे ध्यान देने ये वाली बात है कि एक संक्रमण बीमारी है और इससे हमें बचना चाहिए।
0: बचना चाहिए।
1: तो इसके इलाज में साधन की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, यूटीआई का इलाज किस प्रकार है, कितना सरल है या फिर कॉम्प्लिकेट?

0: में साधन की अगर हम बात करें वर्तमान समय में, यूटीआई का इलाज किस प्रकार है, कितना सरल है या फिर
1: देखिए
0: कॉम्प्लिकेटेड है?
1: काफ़ी सरल है। शुरू में यूरिन रूटीन कल्चर हर जगह हर लेवल पे आज के डेट में हॉस्पिटल्स में इवन पीएचसी लेवल पे अवेलेबल है। तो यूरिन रूटीन सामान्य कल्चर से आपको पता चल जाता है कि पेशाब में क्या इन्फेक्शन है और किस एंटीबायोटिक से वो ठीक होगा। तो उसके फुल कोर्स को लेने से आराम से मरीज ठीक हो
0: ठीक
1: सकता
0: हो
1: है।
0: जाए।
1: बस आपको बस ये है कि आप अपने सिम्टम को समझिए और जितनी जल्दी हो सके अपने चिकित्सक के पास पहुँचिए।
0: बच्चों की अगर बात करें, हम वयस्क लोग हैं, युवा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, ये तो लक्षण अपने आप से देखकर जान जाते हैं। अगर बच्चों में हम लक्षण की बात करें तो कैसे एक माँ बाप बच्चे को इससे बचाएं?
1: देखिए वो अगर किसी बच्चे को यूटीआई है तो कैसे पता चलेगा?
0: जी
1: वो पता चलेगा कि अपने वो योनि को पुल करेगा, खींचेगा,
0: अच्छा
1: या फिर पेशाब करते समय रोएगा, या पेशाब करते समय आपको लगेगा कि वो जोर लगा रहा है, उसके पेशाब का रंग बदल गया, पेशाब में लालीपन आ गया, उसका पेशाब दुर्गंध देने लगा, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि इस बच्चे को यूटीआई
0: अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो
1: है।
0: हमें ये मानना चाहिए और निकटतम अपने विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। बुजुर्गों में यूटीआई के कुछ खास लक्षण होते हैं या फिर समान ही लक्षण होते
1: नहीं,
0: हैं?
1: बुजुर्गों में कुछ ज़्यादा लक्षण देखने को मिलता है क्योंकि बुजुर्गों में जैसे मैंने बोला कि पेशाब के रास्ते में रुकावट और प्रोस्टेट एक बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है
0: जी
1: यूटीआई का, तो उसमें जो प्रोस्टेट रिलेटेड सारे लक्षण यूटीआई में उसको मिलेंगे, जैसे पेशाब की धार कम हो जाना, पेशाब में जोर लगाना, पेशाब को रुक रुक के आना, पेशाब होने के बाद भी लगना कि पेशाब खाली नहीं हुआ, ऐसा महसूस होना कि हम जल्दी जाएं नहीं तो कपड़े में हो जाएगा, कभी
0: जी
1: कभी
0: जी
1: कपड़े में भी हो जाना, यानी कि इनकंटिनेंस हो जाना, ये
0: जी
1: बुजुर्गों में सामान्य लक्षण यूटीआई में पाए जाते हैं।
0: क्योंकि अन्य जो युवा हैं उनमें संक्रमण अगर होता है तो चूंकि डेलिकेट भी हो जाते हैं तो इस स्थिति में ज़्यादा जोखिम या खतरा बना रहता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल ज़्यादा जोखिम है क्योंकि उनकी इम्यूनो कॉम्पिटेंसी जो है
0: जी
1: वो कम हो जाती है,
0: जी
1: तो उसमें बीमारी जल्दी से फ्लेयर अप होती है,
0: बिल्कुल।
1: जल्दी से बढ़ता है।
0: कुछ हम इससे रिलेटेड भ्रांतियां भी हर हमारे यहाँ पर जैसे देखने को मिलता है कि पानी आप पी रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप ठंडा पानी पी रहे हैं लगातार ज़्यादा, मतलब 3 साढ़े 3 लीटर पानी जो पीते हैं वो अगर ठंडा पानी पीते हैं तो कहीं ये कारण बनता है यूटीआई का,
1: जी
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कुछ है?
1: ये भ्रांति है, ठंडा और गर्म पानी पीने से यूटीआई का समस्या नहीं बढ़ता।
0: इससे इसका कोई लेना देना नहीं।
1: जी नहीं,
0: एक
1: बिल्कुल।
0: दैनिक जीवन में अगर हम बात करें, जीवन शैली की बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अपने जीवन शैली को किस प्रकार से रखे कि यूटीआई से अपने आप को बचाए रखे।
1: देखिए हम बच्चों से शुरू करते हैं,
0: जी
1: जब बच्चों को हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं
0: जी जी
1: तो उनको हमेशा ये सिखाना है कि वाइप से आप अपने पेशाब के रास्ते को साफ करने के बाद अपने मल द्वार को भी साफ कीजिए, और हर बार यूरिनेट करने के बाद अपने पेशाब के रास्ते और मल द्वार दोनों को क्लीन करें। तो ये टॉयलेट ट्रेनिंग का पार्ट होना चाहिए और स्कूल के एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, और मदर को अपने बच्चे को सिखाना है एज ए टॉयलेट ट्रेनिंग
0: जी
1: प्रोग्राम। ये बच्चों की बात हुई। युवाओं में जब आप ये ध्यान देना होगा कि सेक्स के बाद
0: जी
1: तुरंत यूरिनेट करने जाएं और पेशाब के रास्ते को साफ करें, और बुजुर्गों को यह ध्यान रखना होगा कि वो पानी की संतुलित मात्रा लें और रात में सोते समय पानी का इस्तेमाल कम करें। ये सब कुछ चीजें हैं जो सामान्य अगर जीवन शैली में आप लेते हैं तो यूटीआई के चांसेस कम होते हैं।
0: खान पान की अगर बात करें तो वो उसको किस प्रकार से संतुलित रखना वहाँ भी जरूरी है
1: देखिए
0: या
1: यूटी
0: प्रिकॉशन
1: कोई खाना स्पेसिफिकली यूटीआई को नहीं
0: इससे
1: बढ़ाता,
0: रिलेटेड नहीं है? जी
1: नहीं बढ़ाता। जी
0: एक आम जनता की तरफ से सवाल, आम लेमन की तरफ से सवाल कि रात में उनको पानी पीने की आदत ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा पानी पीकर सोते हैं तो वैसी स्थिति में पेशाब जाने की भी उनकी जो संख्या वो थोड़ी बढ़
1: ज्यादा
0: जाती है
1: होगी।
0: तो वो चिंता का विषय हो सकता है। नॉर्मल व्यक्ति अगर जाता है तो हम ये मानते हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति ज़्यादा पानी पीकर सोता है वैसी स्थिति
1: उस
0: में
1: स्थिति में जरूर ही उनको ज्यादा बार जगना
0: ज़्यादा बार
1: पड़ेगा,
0: जाना।
1: तो वो कोई बीमारी नहीं है, वो
0: बिल्कुल
1: आदत का एक पार्ट है।
0: जी, हमारा समय सीमित है। ये हम चलते चलते डॉक्टर साहब चाहेंगे कि जो भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनको यूटीआई से वो बचे रहे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि काफ़ी अगर इग्नोर करते हैं तो काफ़ी गंभीर परिणाम ये देते हैं, क्या सुझाव सलाह देना चाहेंगे आप?
1: अपनी दिनचर्या को बदलें,
0: जी
1: संतुलित मात्रा में पानी का इस्तेमाल करें, जो यंग जनरेशन है वो सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद यूरिनेट जरूर करें, अपनी फीमेल पार्टनर के से हमेशा पेशाब संबंधी अगर कोई समस्या है तो उसको समझें, उसको चिकित्सक से संपर्क करें। और वृद्ध जनों में प्रोस्टेट रिलेटेड सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनका ख्याल रखना जरूरी है। अगर वो प्रोस्टेट की कोई दवा लेते हैं तो उसको लगातार लें, क्योंकि 24 घंटे ही उसका

0: काम है, उसके बाद वो काम नहीं करेगा।
1: डॉक्टर शशि प्रकाश, MBBS, MS, MCH, यूरोलॉजिस्ट एवं रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन, समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को UTI से संबंधित जो भी हैं सुझाव और सलाह दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम में अपने संबंधित विषय से सवाल करना चाहते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग हम प्रत्येक बुधवार को 3:30 बजे से करते हैं, हमारा फ़ोन लाइन है 0612, फ़ोन नंबर है 0612 जो STD कोड है, और नंबर है 4541 6551, और एक और नंबर है 4×2500। इस नंबर पर कॉल करके आप अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम को हम शुक्रवार को ठीक 12:30 बजे प्रसारित करते हैं, आप इसे वहां सुन सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे जयप्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कंकड़बाग पटना।
2: कैंसर को प्रारंभिक निदान और सही इलाज से ठीक किया जा सकता है।
3: जय प्रभा मेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पाएं शीघ्र जांच, शीघ्र विशेषज्ञों द्वारा परामर्श, कम समय में उपचार योजना और तत्काल उपचार।
2: मेदांता है तो मुमकिन है। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 0612-350-5050 पर।
3: स्ट्रोक यानी लकवा, समय रहते इलाज न मिलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है। तुरंत अपने नजदीकी स्ट्रोक रेडी सेंटर पर प्राथमिक इलाज करवाएं या आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1068 पर। मेदांता पटना 24/7 स्ट्रोक रेडी सेंटर
2: 1068, हर इमरजेंसी में आपके साथ।
3: हार्ट अटैक, समय रहते इलाज न मिलने पर जान का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमेशा सतर्क रहें। किसी भी आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1068 पर। मेदांता पटना 24/7 हार्ट कमांड सेंटर
2: 1068, हर इमरजेंसी में आपके साथ।
4: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
8: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
7: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Sat. It has undergone 9 revisions. Cully, with 903 rating points, is 34 points behind Smith 900.
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भी भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। और अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर करने गई हमारी विशेष संवाददाता मंजू मीणा से। मंजू, प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर वहां के लोगों में कैसा उत्साह है और क्या तैयारियां की गई हैं?
3: जी हाँ कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां यहाँ पे काफी जोर शोर से चल रही है। प्रधानमंत्री जी बस कुछ ही समय में यहाँ पे पहुंचने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग ठंड में और अंधेरा हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि भारत और यहाँ के समय के बीच में 6.5 घंटों का फर्क है ऑकलैंड में। उसके बावजूद जो है लोग यहाँ पर, हमने देखा कि 4-5 घंटे पहले से ही जो है वो कतारबद्ध होने लग गए हैं। भारतीय समुदाय के अंदर यहाँ पे काफी उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। और साथ ही आज जो है न्यूजीलैंड में माओरी समुदाय अपना नववर्ष का जो पर्व होता है मातारी की, वो भी मना रहा है। और ऐसे में माओरी समुदाय के लोग भी पारंपरिक अंदाज में किया ओरा मोदी कहकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर भारतीय समुदाय और स्थानीय न्यूजीलैंड वासियों दोनों में ही प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जी कनक,
2: जानकारी के लिए धन्यवाद मंजू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर जोराम अनिया ने यूनिसेफ इंडिया की प्रतिनिधि सिंथिया मैक्रफी और उनके प्रतिनिधिमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। इसमें बच्चों के विकास, स्कूली शिक्षा और मानव विकास पर सहयोग मजबूत करने पर चर्चा हुई। नीति आयोग के अनुसार बैठक में विशेष रूप से आकांक्षी जिलों और खंडों में सुरक्षित और समावेशी शिक्षण, मूलभूत साक्षरता, अध्यापकों की शिक्षा, विद्यार्थियों के कल्याण, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा पर बातचीत हुई। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कहा कि लगातार दूसरी बार स्वच्छ ऊर्जा ने देश की 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि 6 जुलाई को नवीकरणीय स्रोतों से 50.2% बिजली आपूर्ति हुई। उन्होंने इसे भारत के स्वच्छ ऊर्जा इकोसिस्टम की बढ़ती मजबूती और विश्वसनीयता का प्रमाण बताया। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज 5 जिले कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिरमौर और सोलन जिलों के सभी शिक्षण संस्थान आज बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम

0: पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 747 अंक बढ़कर 77,488 पर, जबकि निफ्टी 223 अंक की बढ़त के साथ 24,186 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम पराग के अंतर्गत सुनिए वार्ता। राजश्री टंडन और लोकमान्य का साहित्य। वार्ताकार हैं मुकेश कुमार।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने को निहित करने वाले देशभक्तों में अदम्य साहस और निर्भीकता से संघर्ष के साथ साथ उत्सर्ग करने की भावनाएं प्रबल थीं। वे दृढ़ संकल्प होकर अपनी जान की बाजी लगा देने में भी कभी पीछे न हटे। उन सभी में केवल पराक्रम दिखाने की ही क्षमता नहीं थी, बल्कि उच्च कोटि के साहित्य सृजन करने की प्रतिभाएं भी थीं। लोकमान्य तिलक और राजर्षि टंडन उसके उदाहरण हैं। ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम के जितने महत्वपूर्ण अंग थे, उतना ही उन दोनों के द्वारा सृजित साहित्य भी महत्वपूर्ण है। तिलक के लेखन में अध्यात्म की यथार्थगत विवेचना है, वहीं टंडन का साहित्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें साहित्य एवं संस्कृति का संरक्षण और अभिवृद्धि करने की सचेष्टता दिखाई देती है। तिलक ने गीता रहस्य और वेदांग ज्योतिष जैसे प्रमुख ग्रंथों के माध्यम से अपना मंतव्य प्रकट किया। वहीं टंडन अभ्युदय, प्रताप और मर्यादा जैसे समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते रहे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिक्षा, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, अध्यात्म आदि ऐसे अनेक विषयों पर लेखनी चलाई। उनके अंतरिक्ष विज्ञान पर भी ओरायन, द आर्किटेक्ट, होम इन वेदास आदि ग्रंथ काफी चर्चित हुए। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब भारतीय तत्वज्ञान और जीवन पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत तरीके से समझा और देखा जा रहा था, तब तिलक ने भारतीय दर्शन और पौराणिक ग्रंथों के मूल्यों का विश्लेषण दुनिया के सामने लाकर सिद्ध कर दिया कि भारतीय ग्रंथों का आधार वैज्ञानिक है। उन्होंने गीता रहस्य के माध्यम से कर्मयोग का अर्थ समझाया। गीता रहस्य ग्रंथ की आवश्यकता क्यों हुई? इसके संबंध में तिलक ने बताया कि भागवत गीता की अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। उनमें भगवत गीता को कर्मयोग न बताते हुए उसके कर्मयोग के दृष्टिकोण को झूठा साबित करने के प्रयास किए गए हैं। केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि विदेशी लेखकों ने भी भगवत गीता को मोक्ष प्रधान या निवृत्ति प्रधान ग्रंथ बतलाया है। परंतु तिलक के नजरों में श्रीमद्भागवत गीता कर्म प्रधान है। गीता में योग शब्द ही कर्म योग के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। महाभारत, वेद, उपनिषद तथा अन्य हिंदू ग्रंथों का आधार लेकर गीता का संपूर्ण कर्म योग को बतलाने का सफलतम प्रयास लोकमान्य तिलक द्वारा गीता रहस्य के माध्यम से किया गया है। गीता रहस्य की प्रस्तावना में तिलक ने कहा है कि मैंने गीता के अनेक संस्कृत भाष्य, टीकाएं और अनेक विद्वानों के मराठी तथा अंग्रेजी में लिखे विवेचन पढ़े, किंतु मन की शंकाओं का समाधान नहीं हुआ। स्वजनों के साथ युद्ध को महान

कुकर्म मानकर दुखी हुए अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करने वाली गीता में ब्रह्म ज्ञान व मोक्ष मार्ग का विवेचन कैसे हो सकता है, यह समझ नहीं आ रहा था। किंतु जब समस्त टीकाओं और भाष्यों को लपेट कर रख दिया और स्वयं गीता का कई बार अध्ययन कर मनन किया, तब उसके आधार समझ में आए। तिलक ने स्वयं आदि शंकराचार्य जी से लेकर अनेक अलग अलग सिद्धांतों का आधार लिया है और मूलतः धर्म विचार को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। इस दूसरे सिद्धांत को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। सब कर्मों का संन्यास करके ज्ञान ही में निमग्न रहने के कारण इसे संन्यास निष्ठा अथवा ज्ञान निष्ठा कहते हैं। तिलक ने बताया कि शंकराचार्य के 250 वर्ष बाद श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत की स्थापना की। उनका मत था कि शंकराचार्य जी के माया मिथ्या तत्व और अद्वैत सिद्धांत दोनों गलत हैं। जीव जगत और ईश्वर जैसे तीनों तत्व यद्यपि भिन्न हैं, बावजूद चित्त और जगत यानी अचित्त ये दोनों एक ही ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर शरीर के सूक्ष्म चित्त अचित्त से ही स्थूल चित्त अर्थात अनेक जीव और स्थूल अचित्त अर्थात जगत की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने तत्व ज्ञान की दृष्टि से विशिष्टाद्वैत तथा आचरण की दृष्टि से मुख्यतः वासुदेव भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैत मत के बदले विशिष्टाद्वैत तथा संन्यास के स्थान पर भक्ति को प्रतिस्थापित करने का प्रयत्न किया। तिलक की दृष्टि से इन दोनों मतों में कोई अधिक अंतर नहीं है। रामानुजीय मत में भी कर्माचरण और से चित्त शुद्धि से ज्ञान प्राप्ति उपरांत प्रेम पूर्वक निश्चेम वासुदेव भक्ति का उपदेश एक प्रकार से निवृत्ति मार्ग ही है। कर्म करने की आवश्यकता और महत्व बतलाते समय तिलक ने कुछ आधार और उदाहरण दिए हैं। सबसे पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग की कुछ भिन्न परिभाषा दी है। उनका उपदेश है कि इंद्रियों और मन की वृत्तियों का नाश करने के स्थान पर उन्हें अपने अधीन रखना चाहिए। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषाकृष्यन्नवे तुमेव भूव एवाभिवर्धते। अर्थात सुखों का उपभोग से विषय वासना की तृप्ति तो नहीं होती, किंतु विषय वासना निरंतर उस प्रकार बढ़ती है जैसे अग्नि की ज्वाला घृत से बढ़ती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कुल 4 भाग और 15 प्रकरणों में विस्तृत रूप से हर एक संवाद या तत्व को सांख्य शास्त्र, न्याय शास्त्र, वैशेषिक शास्त्र, योग शास्त्र, मीमांसा शास्त्र, वेदांत शास्त्र, इन 6 शास्त्रों के आधार पर समग्र रूप से सबके सामने रखा है। कई जानकार ये कहते हैं कि तिलक द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ की भाषा समझने में कठिन है, पर इतनी आसान भाषा में इतने कम शब्दों में इतना सारा ज्ञान लिखना आसान नहीं। तिलक द्वारा लिखे हुए गीता रहस्य की महत्ता कम शब्दों में लिखना भी इतनी सरल बात नहीं है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन एक महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक थे जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टंडन जी का साहित्य में योगदान उनके जीवन भर के कार्यों में प्रतिबिंबित होता है। जो हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राजर्षि टंडन हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने हिंदी को

0: राष्ट्रभाषा और राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन से भी जुड़े रहे। उन्होंने आजीवन हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा की। हिंदी और हिंदुस्तानी के प्रश्न पर उन्होंने गांधी जी से भी अपनी असहमति व्यक्त की और हिंदी भाषा के साथ खड़े रहे। उनके बहुमूल्य साहित्यिक योगदान के बिना हिंदी साहित्य का अध्ययन सर्वदा अधूरा रहेगा। टंडन जी ने असंख्य लेख, विचारोत्तेजक निबंध और प्रभावशाली भाषणों के माध्यम से न केवल हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति लोगों को कर्तव्य परायण और जागरूक भी किया। उनके गहन विचारों और उत्कृष्ट रचनाओं में समाज के प्रति उनकी अटूट संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। टंडन जी के लेखों में उस समय के ज्वलंत सामाजिक और जटिल राजनीतिक मुद्दों की गहरी समझ और उनकी व्यवहारिक समाधान परक दूरदृष्टि स्पष्ट रूप से झलकती है। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन के अनेक विचारपूर्ण लेख और सारगर्भित निबंध हैं। ये लेख उनके गहन चिंतन और प्रगतिशील सामाजिक दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करते हैं। उनके कुछ प्रमुख साहित्यिक योगदान के संबंध में विचार करें तो यह दिखता है कि उन्होंने विभिन्न ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर विचार किए। अटूट राष्ट्रीय एकता और हिंदी भाषा की गरिमा व प्रतिष्ठा पर केंद्रित उनके उत्कृष्ट आलेख ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके प्रेरणादायक भाषण और विचारोत्तेजक निबंध पढ़कर यह सहजता से समझा जा सकता है कि समाज के समग्र उत्थान और राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति के लिए उनकी दूरदर्शिता कितनी स्पष्ट और भविष्योन्मुखी थी। टंडन जी ने दूरदर्शितापूर्ण हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना करके हिंदी भाषा और साहित्य के व्यापक प्रचार प्रसार में एक अमूल्य और अविस्मरणीय योगदान दिया। यह प्रतिष्ठित सम्मेलन हिंदी भाषा को निरंतर प्रोत्साहित करने और उसमें समयानुकूल नवाचार लाने का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय केंद्र बना। इस प्रतिष्ठित सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने अनेक प्रतिभाशाली साहित्यकारों को एक साझा मंच प्रदान किया, जिससे हिंदी साहित्य को एक नवीन और समृद्ध आयाम मिला। उन्होंने सम्मेलन के माध्यम से अनेक भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को भी सम्मानित किया और भाषाई सद्भाव को बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े ग्रंथों का अनुशीलन किया। उन्होंने उन ग्रंथों के विषय में उपजने वाली मिथ्या धारणाओं को अपनी विवेचना से निर्मूल किया। इस प्रकार उन्होंने शास्त्रीय परंपरा और लोक विचार को एकीकृत कर साहित्य को एक नई दिशा दी। दूसरी ओर राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने हिंदी भाषा के विकास को साहित्य का सूत्र समझा। हिंदी भाषा के विकास के बिना भारत के साहित्यिक अस्तित्व और सामाजिक संरचना को समझा नहीं जा सकता था। हिंदी साहित्य के विकास में बाल गंगाधर तिलक और पुरुषोत्तम दास टंडन का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।
1: राजर्षि टंडन और लोकमान्य का साहित्य विषय पर अभी आपने मुकेश कुमार की ये वार्ता सुनी कार्यक्रम पराग में। ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस गीत के बाद

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: हम से है इज्जत, वतन की हम से है इंसान के हम रखवाले। देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया की

Colleague with 903 rating points is 34 points behind Smith 900.

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और अब आइए सुनते हैं फिल्मी नगमे। फिल्म शोले का ये नगमा सुनिए आनंद बख्शी के बोल आड़ी बर्मन संगीत आवाजें किशोर कुमार मन्ना डे भूपेंद्र और आनंद बख्शी।

किशोर कुमार मन्ना डे, भूपेंद्र और आनंद बख्शी को आपने सुना। फिल्म शोले का यह नगमा, आनंद बख्शी के बोल, आड़ी बर्मन का संगीत और अब किशोर कुमार, अजीज, नाजा और हमनवा को सुनिए। फिल्म फकीरा में शब्दकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: फिल्म फकीरा में आपने किशोर कुमार, अजीज नाजा और साथियों को सुना। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अगला नगमा हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे लिया है फिल्म दो चेहरे से। भरत ब्यास के बोल हैं, सोनी कोमी का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी, मन्ना डे, मीनू पुरुषोत्तम।

0: पागल है।
1: मैं समझता हूँ मेरी बोतल है,
0: हाँ बोतल है।
1: इसी बोतल से जाम भरने दे, महकशों को भी नाम करने दे,
0: महकशों को।

0: जब सीने में आग लगती है,
1: आग लगती है,
0: आग पीने से आग बुझती है,
1: आग बुझती है।
0: ये जमाना तो क्या बुझाएगा।

0: दो चेहरे फिल्म के इस नगमे के साथ फिल्मी नगमों का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आज की रात पीने दे
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1,423 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। 6 योजनाओं के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाभुकों को समय पर पेंशन राशि भुगतान की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके जीवन यापन में मदद मिल सके। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में एनडीए के घटक दलों की बैठक चल रही है। बैठक में एनडीए के सभी 5 घटक दलों के वरिष्ठ नेता और जिलाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। बैठक में सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। साथ ही बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, विकास कार्यों की नियमित निगरानी और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उपराष्ट्रपति डॉ सीपी राधाकृष्णन 2 दिवसीय दौरे पर कल बिहार आ रहे हैं। वे विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले 11 और 12 जुलाई को कयाची में विधायकों के 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ प्रेम कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय, लोकसभा के प्राइड और बीपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में प्रशिक्षक विधानसभा सदस्यों को विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया और मधेपुरा जिले में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, सिवान, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश में 3000 से अधिक ऐसे नियोजित शिक्षक पाए गए हैं जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की थी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की प्रक्रिया निगरानी विभाग ने पूरी कर ली है और इसमें 3035 शिक्षक दोषी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। उन्होंने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। मुंगेर जिले के भीमबांध के जंगल में पुलिस ने 4 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से 510 लीटर शराब और लगभग 8 क्विंटल चावा महुआ भी बरामद किया गया। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत टोभी चेक पोस्ट के पास पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक ट्रक से 807 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।

कामत कांजी को ओडिशा से लाया जा रहा था। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

0: News All India Radio. The news read by Anuja Kumar. Namaskar. ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 6,715 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता है www.ibps.in। रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,565 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। ग्रेड 3 टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 29 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट जाएं, पता नोट करें www.indianraillways.gov.in। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के 150 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 20 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 9 अगस्त 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। पता है www.bpssc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। अपराह्न के समय हमारे स्टूडियो घड़ी में 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार प्रसारित होंगे। दोपहर समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच रहे हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ के नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की, इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से, और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंच रहे हैं। श्री मोदी वहां न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को लेकर ऑकलैंड में उत्साह का माहौल है। भारत और न्यूजीलैंड इस वर्ष अपने खेल संबंधों के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारे विशेष संवाददाता मंजू मीणा ने बताया है कि हॉकी से शुरू हुई यह यात्रा आज भी दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का मजबूत माध्यम बनी हुई है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के खेल संबंधों की शुरुआत वर्ष 1926 में हुई, जब भारतीय सेना की हॉकी टीम न्यूजीलैंड दौरे पर आई। इस ऐतिहासिक टीम का हिस्सा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी थे। यही दौरा उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत माना जाता है, और यहीं से उन्होंने दुनिया को अपनी अद्भुत हॉकी का परिचय कराया। एक सदी बाद दोनों देशों के खेल संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। इसी वर्ष ऑकलैंड में आयोजित FIH महिला नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। पूर्व हॉकी न्यूजीलैंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी और 1976 ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रमेश पटेल ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से दोनों देशों के बीच खेल सहयोग को नई गति मिलेगी। सौ वर्षों की इस खेल यात्रा ने यह साबित किया है कि हॉकी केवल एक खेल नहीं, बल्कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मित्रता, विश्वास और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों का एक सशक्त सेतु भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण राजकीय यात्रा आधिकारिक रूप से संपन्न हो गई है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे।
2: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने युद्ध के दौरान की जाने वाली यौन हिंसा CRSV की कड़ी निंदा करते हुए इसे युद्ध, आतंकवाद, यातना और राजनीतिक दमन का एक हथियार बताया है, जिसका प्रयोग समुदायों को अधीन करने, असहमति को दबाने और मानवीय पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पी हरीश ने युद्ध की अवधि में की जाने वाली यौन हिंसा पर कहा कि इस तरह के हिंसा में दंड न दिए जाने के कारण ये जारी है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे जघन्य कृत्यों की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हाल में हमलों के बाद इसराइल

0: के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को खाड़ी क्षेत्र में अमरीकी सेना की नई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी है। इसराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार दोनों नेताओं ने कल रात फोन पर बातचीत की और अमरीका तथा इसराइल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने कल दावा किया कि उसने उत्तरी जॉर्डन में अमरीका के अल अजराक सैन्य हवाई अड्डे पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उसने कहा कि हमला तेहरान पर हाल ही में हुए अमरीकी हमले के जवाब में किया गया था। उसने चेतावनी दी कि अमरीका की ओर से किसी भी सैन्य कार्रवाई किए जाने पर जवाब में क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर और हमले किए जाएंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब छूट प्रदान नहीं की जाएगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होने की उम्मीद है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज वर्चुअल माध्यम से शिमला स्थित भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान की प्रदर्शनी वंदे मातरम एक यात्रा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल का दृष्टिकोण एकीकरण एकता और संघवाद विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वंदे मातरम ने स्वतंत्रता सेनानियों की कई पीढ़ियों को साहस बलिदान और आशा से प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरदार पटेल ने एक राष्ट्र एक संविधान और साझा राष्ट्रीय भविष्य की मजबूत नींव रखी।
1: Today, Bharat is marching confidently towards the vision set by our Honorable Prime Minister, a Viksit Bharat by 2047. National integration, cooperative federalism and unity in diversity remain as relevant as ever. Sardar Vallabhbhai Patel ji believed for a rich, diverse country like India, a strong center was essential to maintain unity and security.
0: गुजरात में राज्य सरकार ने सूरत के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात सामान्य करने के लिए बड़े पैमाने पर राहत अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि अगले 48 से 72 घंटों के अंदर सामान्य जीवन और कारोबार पूरी तरह से बहाल किया जाए। गोवा सरकार ने प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि इस कदम से सरकारों को विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और बेहतर शासन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार विमर्श के लिए गोवा आई संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गोवा सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि एक साथ चुनाव होने से सरकारें विकास कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस संबंध में अपने सुझाव समिति को सौंप दिए हैं और विश्वास व्यक्त किया है कि यह प्रस्ताव सकारात्मक रूप से आगे बढ़ेगा। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि बैठक में शामिल मंत्रियों ने कहा कि विभिन्न राज्यों में बार बार होने वाले चुनावों का गोवा के पर्यटन क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बैठक में मंत्री सुदीन ढवळीकर, सुभाष पल देसाई, सुभाष शिरोडकर और दिगंबर कामत भी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से महेश सोपड़े।
0: पंजाब के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर 11 और 12 जुलाई को दो दिन का विशेष शिविर आयोजित किया है। इससे पात्र मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत जनगणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकेंगे। ये शिविर सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक जारी रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने 100% डिजिटल डेटा कलेक्शन के साथ जनगणना 2027 के पहले चरण यानी हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक महीने तक चले इस ऑपरेशन में केंद्र शासित प्रदेश के 24,000 से ज्यादा हाउस लिस्टिंग ब्लॉक शामिल किए गए। अब अगले चरण की तैयारी शुरू होगी। इसमें सितंबर में बर्फबारी वाले इलाकों में जनसंख्या की गिनती और इस साल अक्टूबर तक जिला जनगणना हैंडबुक तैयार करना शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले दो दिन तक हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी भारत के उत्तरी भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ जगह आज तड़के हल्की बारिश हुई। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर शशिकांत ने बताया कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज और कल बारिश की कोई चेतावनी नहीं है।
1: 1 जून से लेकर के 9 जुलाई तक भारत में -14% वर्षा कम दर्ज की गई है और आने वाले अगर हम दो दिन की बात तो वर्षा का मुख्य जोन जो रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं। कल भी जो है यही पॉकेट्स मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के राज्य जहां पर वर्षा का स्पेल हैवी टू वेरी हैवी के रूप में ऑरेंज कलर के लिए हमने चेतावनी जारी की है।
0: हिमाचल प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि वहां कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: शिमला, सोलन, बसरमौर जिलों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने व नदी नालों के आसपास न जाने की अपील की है। भारी बारिश के चलते सोलन और सिरमौर जिले में आज सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। लगातार वर्षा से प्रदेश में विभिन्न इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम के खराब बने रहने की संभावना जताई है। आज 5 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निस्वार्थ कर्म मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सेवा और समर्पण की इसी भावना से प्रेरित होकर देश प्रत्येक नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने दिल्ली सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण और दिल्ली रिज इकोसिस्टम के संरक्षण के माध्यम से दिल्ली को हरा भरा बनाने की पहल का स्वागत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लिखे पत्र में उन्होंने इस पहल को पर्यावरण संरक्षण और सतत शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वहीं नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। उधर फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अमेरिका के बॉस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ में किलियन एम्बाप्पे ने 60वें मिनट में और उस्मान डेम्बले ने 66वें मिनट में गोल कर फ्रांस को जीत दिलाई। एम्बाप्पे 30 साल की उम्र से पहले विश्व कप में 20 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फ्रांस लगातार तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लंदन के लॉर्ड्स मैदान में मेजबान इंग्लैंड के साथ ऐतिहासिक टेस्ट मैच खेलेगी। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। ये पहली बार है जब लॉर्ड्स मैदान में महिला टेस्ट मैच खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर में बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 755 अंक बढ़कर 77,497 पर, जबकि निफ्टी 232 अंक की बढ़त के साथ 24,195 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑकलैंड पहुंच गए हैं। वे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत करेंगे। सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा युक्त दवाओं को विनियमित करने के लिए मादक पदार्थ नियमों में संशोधन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध के दौरान यौन हिंसा की कड़ी निंदा की। इसे युद्ध और आतंकवाद का हथियार बताया। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से और महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत आज शाम लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 600

ब्रेकफास्ट क्लर्ट्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। 2:30 हुए हैं और अब सुनते हैं फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मुकेश को सुनिए फिल्म चुपके चुपके में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस टी बर्मन।

मुकेश और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म चुपके चुपके में, आनंद बख्शी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत, और अब लता मंगेशकर और मुकेश को सुनवा रहे हैं फिल्म गोरा और काला में। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

लता मंगेशकर और मुकेश को आपने सुना फिल्म गोरा और काला में, और अब मुकेश और कंचन की जुगल स्वर में फिल्म धर्मात्मा का ये गीत सुनवा रहे हैं, जिसके बोल इंदीवर के हैं, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मुकेश और लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म छैला बाबू में। हसरत जयपुरी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मुकेश का गाया ये गीत। फिल्म है तुम्हारी कसम, आनंद बख्शी की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

मुकेश और आशा भोसले को आप सुन रहे थे। फिल्म तुम्हारी कसम में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मी राजेश रोशन का संगीत, और अब अगला गीत मान जाइए फिल्म से सुनवा रहे हैं। बोल नक्शलालपुरी के हैं, जयदेव का संगीत है और स्वर दिया है मुकेश और वाणी जयराम ने।

छलिया फिल्म में भी आपने मुकेश और वाणी जयराम को सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ है।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम ठीक 5 बजे आरंभ होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।
2: आहा!

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज होंगी कुछ बारिश से जुड़ी बातें, यादें और किस्से, क्योंकि बारिश का मौसम सबको लुभाता है। बारिश में भीगने का मन और नाचने का मन किसी न किसी का तो होता ही होगा। बारिश में बचपन बहुत याद आ जाता है, जब बचपन में शरारतें मस्ती क्या करते थे और बारिश के पानी के संग खेला करते थे, तो वो कुछ यादें भी आज ताज़ा होंगी। तो आज हम इसी पे करेंगे चर्चा, जिसमें नहीं लगेगा कोई खर्चा, है ना। तो मुझे सुनाई दे रही है फ़ोन की घंटी और देखते हैं कि कौन है हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: बड़ौदा से बोल रही हूँ, सोनिया।
0: सोनिया जी, आप बड़ौदा से बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, मैं आज आपने फोन लगाया, तो आपको कैसा लग रहा है?
1: अच्छा लग रहा है मेरे को
0: जी। और क्या करती हैं आप?
1: हमारे लॉन्ड्री है, बेंगाली में है, हमारे लॉन्ड्री खुद की है
0: जी।
1: और यहाँ पे कोयली गांव में हमारा मकान है
0: जी जी जी
1: अभी हमारे छोटा बाबू आया है, अभी 1.25 महीने का हुआ है।
0: अच्छा, अरे बात, अब तो बहुत आप बिजी रहती होंगी इसमें।
1: हाँ, 7 साल बाद में आया अभी।
0: अच्छा, चलिए, आपको अपने छोटे से बच्चे के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये बताइए सोनिया जी, कि बारिश आपको कैसी लगती है? बारिश में आप क्या क्या और चीज़ें ध्यान रखती हैं, उस पर भी हमें कुछ बताइए।
1: बारिश अच्छी भी लगती है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है
0: जी। किस तरह का आप ध्यान रखती हैं बारिश में?
1: ये कि बच्चे गीले ना हो जाए, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सर्दी जुकाम का, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। अब बच्चा आ गया छोटा, इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ज्यादा।
0: जी। और बारिश की कोई जुड़ी यादें बचपन में हो आपकी?
1: जी, बचपन में तो बहुत नहाते थे हम लोग, बारिश जैसे बारिश होती थी वैसे बहुत नहाते थे बाहर जाके।
0: अच्छा, सुनिए जी, आपको जो गाना पसंद है उसके बोल बताइए।
1: पापा में पापा बन गए, बाबू का नाम राघव है, राघव रखा है।
0: अच्छा जी, राघव जी को तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: पापा!

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं समा दीवान बोल रही हूँ, नर्मदापुरम जिला तहसील सोहागपुर से।
0: जी, आप क्षमा दीवान।
1: जी
0: जी क्षमा दीवान जी, आप बताइए कि आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है।
0: बारिश में क्या खास करती हैं आप?
1: मैं वृक्षारोपण वगैरह करती हूँ, बम बीज बनाती हूँ,
0: जी
1: उनको बिखेरती हूँ जंगलों में जाके, नहरों पे जाके।
0: अच्छा
1: हमारी एक संस्था है महिलाओं की,
0: जी
1: तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर वहाँ पे ये बनाते हैं और जाते हैं ग्रुप में और सभी दूर उनको बिखेरते हैं।
0: अच्छा
1: हम लोग इसमें करते हैं, जैसे स्कूलों में जाके गरीब बच्चों की फीस वगैरह भरते हैं,
0: जी
1: उनको कॉपी पुस्तक दिलाते हैं।
0: जी तो ये तो आप बहुत अच्छा काम करती हैं। क्या है
1: हमारी संस्था ने एक स्कूल को गोद लिया है, तो
0: जी
1: उसके बच्चों को हम लोग हर साल 15 अगस्त गिफ्ट वगैरह देते हैं
0: जी
1: और कार्यक्रम करवाते हैं हम लोगों से।
0: तो बच्चे तो बहुत खुश हो जाते होंगे कि जब
1: बहुत
0: उनको गिफ्ट मिलता है। और
1: बहुत खुशी होती है बच्चों की।
0: जी और बताइए और अपने बारे में कुछ।
1: जैसे महिलाओं के लिए सिलाई मशीन दिलवाते हैं, जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं
0: तो जिनको मान लीजिए सिलाई नहीं आती है तो उनको भी आप देती
1: उनको
0: हैं?
1: नहीं, उनको हम जैसे हमारे ग्रुप में जो महिलाएं को आती है सिलाई, उनसे प्रशिक्षण दिलवाते हैं पहले, फिर
0: जी जी जी
1: उसके बाद उनको सिलाई मशीन दिलवाते हैं
0: जी तो
1: जैसे
0: फिर
1: नहीं आता है।
0: हाँ जी
1: एक खूब गरीब परिवार की बेटी थी,
0: जी
1: उसका माँ बाप नहीं थे, तो उसका विवाह हम लोग की संस्था ने करवाया।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है ये तो। और बताइए क्या आज आप सुनना चाहेंगी?
1: अब मैं सुनना चाहती हूँ, मेरा फेवरेट गाना है, आँखियों के झरो पे से जो देखा एक बार।
0: क्या बात है, ये गाना ही बहुत अपने आप में बहुत सुंदर सा प्यारा सा गीत है। तो
1: जी
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बस इसी

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत करते हैं। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं अनीता राजपूत दिल्ली से बोल रही हूँ।
0: अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और

0: अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए कि...
1: हमारे परिवार, हमारे पति को बहुत शौक है संगीत का,
0: जी
1: बहुत ज्यादा शौक है। और मेरे बेटे, बहू है और बेटी भी है, हम लोग 5 जन हैं
0: क्या
1: अभी।
0: बात है।
1: जी
0: आपको बारिश का मौसम कितना पसंद है?
1: अच्छा लगता है, पानी गिरता है जब टिमटिमा
0: जी
1: पानी गिरता है तो अच्छा लगता है।
0: क्या मन करता है कि बारिश में भीग ले, नहा ले? क्या
1: जी घूमने कहीं चले जाएं और क्या।
0: बात है, हरी हरी वादियों के बीच में घूमने जाए हैं।
1: जी,
0: बचपन की कोई आपकी कुछ यादें, दोस्तों के संग हो, सहेलियों के संग हो, कुछ यादें यादें तो साझा कीजिए।
1: मैं 4 भाइयों में एक बहन हूँ,
0: जी
1: तो साथ में खेले हैं हम लोग
0: जी
1: पानी में, बारिश में वहां पर। जी
0: जी
1: तो अच्छा लगता था, पहले बचपन की बहुत यादें आती हैं हम लोगों को। जी
0: अब ये
1: जी
0: बताइए कि आपको कौन सा गाना आज सुनवाया जाए, आपकी पसंद का?
1: हमारे लिए विवाह फिल्म का कोई सी भी गाना अच्छा लगता है।
0: जी बिल्कुल, अनीता जी आपको
1: जी
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का
1: जी
0: विवाह फिल्म का कोई भी गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं स्मिता बेन राजेंद्र कुमार शाह अहमदाबाद साबरमती से बोल रही हूँ।
0: स्मिता जी बोल रही हैं। तो स्मिता
1: हाँ,
0: जी, बारिश का जो मौसम होता है, तो जब आप बच्ची थी तो आपको कैसा लगता था? क्या क्या आप खेल
1: मेरे
0: करती
1: को तो
0: थी?
1: बारिश में भीगना और पानी में छप छप करना बहुत अच्छा लगता था पहले।
0: तो और बताइए अपने बारे में, आपको क्या शौक है, अपने दिन को कैसे बिताती हैं, ये इस बारे में कुछ बताइए
1: मेरे को सबकी मदद करना अच्छा लगता है।
0: जी।
1: मैं रिटायर्ड पोस्ट वुमेन हूँ, गुजरात
0: जी,
1: की फर्स्ट लेडी पोस्ट वुमेन हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बड़े गर्व की
1: और
0: बात है
1: अभी रिटायर्ड हो गए, 8 साल हो गए, 68 की हो गई। मैं
0: जी। तो
1: सबको हेल्प करना अच्छा लगता है मेरे को। कोई
0: जैसे कि आप किस तरह की हेल्प करती हैं लोगों की?
1: बीमार हो गया तो मैं दवा बहुत सत्कार करती हूँ उनकी।
0: तो ये बहुत नेक काम है, बहुत कम लोग इस बारे में सोचते हैं। जो सोचते हैं, हम तो कहते हैं बहुत पुण्य का काम करते हैं वो। तो और स्मिता जी, ये बताइए कि आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं दिल अपना और पीत पाई का गाना है, दिल अपना बनाई।
0: जी, बहुत सुंदर सा गीत आपने चुना है, दिल अपना और प्रीत पराई। तो चलिए स्मिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रही है और कहाँ से बोल रही है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सरिता पांडे बोरीवली से बोल रही हूँ।
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप क्या करती हैं, घर में क्या क्या शौक हैं आपके।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ।
0: जी,
1: मैं सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ करती हूँ थोड़ा बहुत।
0: और सरिता जी, हम आज बात करने वाले हैं बारिश के विषय में कि बारिश आपको कितनी अच्छी लगती है और बारिश में आप क्या क्या सावधानियां रखती हैं।
1: बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में घर गंदा ना हो, ये सब साफ सुथरा रखता है।
0: जी बिल्कुल। और बारिश में आपने कभी बचपन में अपनी दोस्तों के साथ मस्ती करी।
1: हाँ, हम लोग बारिश में गांव में रहते थे। मेरा गांव सुल्तानपुर है।
0: जी
1: हम लोग गांव में बारिश में खेलते थे, खो
0: अच्छा,
1: खो खेलते थे।
0: ये बताइए कि जब कभी घर में कुछ खत्म हो जाता है रसोई में, तो फिर अचानक आप क्या सोचती हैं कि मेहमान के लिए हम क्या बना दें फटाफट।
1: जो कुछ रहता है उसको मिक्स करके हम लोग उसका कुछ ना कुछ अच्छा डिश बना के मेहमान को देते हैं।
0: क्या बात है, यानी कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है ना गृहिणी
1: बन
0: की।
1: ही जाता है।
0: जी,
1: हाँ
0: जैसे पकौड़ी बना ली, सूजी का हलवा बना लिया,
1: हाँ
0: है ना।
1: कुछ भी बना। हाँ,
0: और मान लीजिए सूजी कम है तब।
1: इसमें थोड़ा बेसन या बेसन मिक्स कर देते हैं, वो भी अच्छा बनता है हलवा।
0: बिल्कुल सही बात आपने बताई, ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सूजी कम है तो उसमें बेसन मिला दिया। और आपके परिवार में और कौन कौन है।
1: मेरी फैमिली बड़ी है, जेठ जेठानी
0: जी
1: बहू पोते
0: जी
1: पोती
0: क्या बात है, भरा
1: बच्चे।
0: पूरा परिवार है, यानी कि बहुत
1: हाँ
0: अच्छा लगता है आपको, है ना। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सरिता जी। तो आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी।
1: हम आशीर्वाद फिल्म का बारिश का गाना।
0: ठीक है सरिता जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल हुआ यूं पल में ख़त्म और आपकी दोस्त मंजरी वर्मा फिर आपसे बातें करने आ गई है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली,
0: जी स्वागत है।
1: नमस्ते मंजरी जी।
0: अरे वाह, आपको तो मेरा नाम याद है।
1: अरे आपकी आवाज से पहचान गए मंजरी जी।
0: और बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए हमें।
1: एक हाउसवाइफ हूँ, साधारण सी गृहिणी।
0: प्रतिमा जी, आप हाउसवाइफ हैं, साधारण सी गृहिणी आपने कहा है, तो हम ये कहेंगे कि आप साधारण सी नहीं हैं, आप बहुत खास हैं। और हर गृहिणी जो होती है वो पूरे परिवार की एक धुरी होती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए सेवा करती है, सबका ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और सुबह उठती है और रात में ही वो पूरे घर के काम निपटा के सोती है। तो ये बहुत पुण्य का काम है, सेवा भाव है। मेरे दिल में बहुत सम्मान है गृहिणियों के लिए, जो भी गृहिणियाँ हैं उनके लिए बहुत सम्मान है। और बताइए कि ये मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे बारिश का मौसम होता है ना, तो वो जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो आपको कैसा लगता है?
1: मेरे को बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इतना सुंदर हरियाली चारों तरफ हो जाती है,
0: जी
1: ऐसा लगता है जैसे पेड़ पूरे नहा लिए पानी से,
0: हाँ।
1: हरी भरी हो जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम।
0: जी, और
1: और उसके तो गाने भी इतने अच्छे अच्छे आते हैं उस समय रेडियो में कि वो सुन के भी मन खुश हो जाता है।
0: क्या बात है। और बारिश में बचपन में कोई शरारतें आपने सखियों के साथ या भाई बहनों के साथ करी हो या मस्ती करी हो, कुछ ऐसे किस्से याद है आपको?
1: बारिश में देखिए, पहले की तो बात बताएं तो हम लोग को जैसे ही बारिश देखते थे तो स्कूल जाने में छुट्टी मिल जाएगी, इस बात की बड़ी खुशी होती
0: हाँ।
1: थी। और अब की जो बारिशें हैं उसमें ये खुशी होती है कि चलो अब ये लोग ऑफिस नहीं जाएंगे।
0: सही बात है। और वो अगर
1: घर में पकौड़े और सब्जी ये सब बनेंगे।
0: क्या बात है, यानी कि आप गृहिणी बिल्कुल अच्छी वाली गृहिणी है कि सबका इंतजार कर रही है कि पानी हो और ये लोग नहीं जाए तो हम पकौड़े वगैरह बनाए। बढ़िया बढ़िया है ना। तो बड़ा अच्छा लगा सुन करके। प्रतिमा जी ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ, तो बस रास्ता।
0: क्या बात है। तो सबसे अच्छे प्रोग्राम आपको विविध भारती के क्या लगते हैं?
1: सबसे अच्छे प्रोग्राम वंदनवार,
0: जी जी
1: उसमें
0: जी
1: जो चिंतन आता है वो बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात
1: है। रामचंद्र चरित मानस में जो पहले उसकी समीक्षा करते हैं ना, बताते हैं
0: जी,
1: स्टोरी,
0: जी
1: वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
0: क्या बात
1: क्योंकि
0: है,
1: वो सुनो तो उसके बाद वो रामायण सुनने में बड़ा समझ में आ जाता है।
0: सही बात है। उसकी विस्तार
1: ना,
0: व्याख्या सुन के बहुत अच्छा लगता है ना।
1: बहुत अच्छा लगता है। हाँ,
0: तो
1: और बाकी प्रोग्राम सभी अच्छे हैं विविध भारती के,
0: जी,
1: तो
0: और
1: मैं सब सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। प्रतिमा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: एक्चुअली ये पसंद मेरी मम्मी की है।
0: जी
1: स्वप्न झरे फूल से, नीत चुभे शूल से,
0: जी
1: वो है ना, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे।
0: ठीक ठीक ठीक तो प्रतिमा जी, आपको आज हम सुनवाते हैं आपकी मम्मी की पसंद का ये प्यारा सा गीत।
2: स्वप्न झरे फूल से।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अंजू श्रीवास्तव बोल रही हूँ भोपाल से। बहुत
0: अंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है
1: दिनों से कोशिश कर रहे थे, अभी
0: जी।
1: जाके लगा है आपका कॉल।
0: देखिए, कोशिश रंग लाई ना, आपने कॉल लगाने
1: हाँ
0: की
1: जी,
0: कोशिश करी
1: हाँ
0: और
1: जी।
0: कॉल आपकी लग गई। ये बताइए अंजू जी कि भोपाल का कैसा मौसम है इस समय?
1: भोपाल का मौसम बहुत ही सुहाना है, चारों
0: जी
1: तरफ हरियाली, पानी और मतलब आंखों को बिल्कुल सुकून देने वाला मौसम है।
0: क्या बात है, यानी कि बारिश वहां पर भी खूब हो रही है।
1: बहुत हो रही है। हम जी,
0: तो बारिश से जुड़ी हुई कुछ यादें हो तो आप
1: हाँ
0: साझा
1: जी,
0: कीजिए।
1: बहुत बहुत यादें हैं बारिश से जुड़ी हुई। स्कूल टाइम थी, कॉलेज टाइम थी, हम लोग वहाँ पास में, हम एक्चुअली मेरा मायका होशंगाबाद में है, तो
0: जी
1: मैं वहाँ पे, हम लोग स्कूल के बाद वहाँ से चले जाते थे, पहाड़िया एक पास में जगह थी,
0: जी
1: तो वहाँ पे अपनी अपनी गाड़ी से हम लोग जाते थे फ्रेंड सर्किल पूरा,
0: जी
1: और वहाँ जाके पिकनिक जैसा बहुत बार मनाए हम लोग। बहुत अच्छा मौसम वहाँ का भी रहता था, पूरी हरियाली और पहाड़ियाँ।
0: दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाना एक अपना ही अलग आनंद का समय होता है, तो कुछ शरारतें भी होती होंगी आपस में दोस्तों में।
1: हाँ जी, हाँ, बहुत बातें होती रहती।
0: और ये बताइए कि बारिश के समय में क्या-क्या आप सावधानियां रखती हैं, जैसे बाहर जा रही हैं, घर से निकल रही हैं, तो क्या खास बातें ध्यान रखती हैं?
1: बस ये साफ सफाई का और अच्छी जगह खाना, मेन तो साफ सफाई का है, बहुत ध्यान रखने का।
0: इस समय आप क्या शौक रखती हैं?
1: मतलब मुझे फ्रेंडशिप बहुत पसंद है, और अभी आज भी वो शो बरकरार है। नहीं मतलब बचपन की फ्रेंड, अभी तक हम लोग सब ग्रुप है, तो
0: जी
1: हर बार मिलते हैं, 3-4 साल में मिलते हैं, पर मिलते हैं, और
0: क्या
1: कभी
0: बात
1: कभी
0: है,
1: कुछ लोगों से 1 साल में मिलना हो जाता है
0: बहुत अच्छा
1: ऐसा।
0: लगा सुनकर कि आज भी आप अपनी दोस्तों के साथ जुड़ी हुई हैं।
1: मेरा एक तो म्यूजिक का मुझे थोड़ा सा शौक है, तो
0: जी
1: ये म्यूजिक वाले प्रोग्राम में बहुत देखती हूँ,
0: जी
1: मतलब पूरी फैमिली को ये हमारे म्यूजिक का शौक है। मेरा गेम्स था पहला
0: जी
1: स्कूल टाइम में, कॉलेज तक मैंने मतलब 5th क्लास से मैंने जो बास्केटबॉल खेला है, तो स्टेट लेवल तक खेला हुआ है मेरा, नेशनल में तक पहुंच गई थी मैं, तो
0: जी जी जी
1: बहुत खेला है। मतलब मेरा पैशन था, वो पैशन था कि मुझे बास्केटबॉल ही खेलना है, और वो ही मैंने एक ही गेम चुना और उसको लास्ट तक स्कूल
0: जी
1: पूरा, कॉलेज पूरा वो खेला।
0: क्या बात है, यानी गेम्स के प्रति, वो भी बास्केटबॉल खेलने में तो बड़ा मजा आता है, और कभी जब बारिश होती तो ये गेम तो और भी अच्छा लगता होगा खेलने
1: और
0: में।
1: भी अच्छा लगता जी।
0: तो अंजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज मैं टिप टिप बरसा पानी सुनना पसंद करूंगी
0: तो अंजू जी, आज आपको
1: आपसे।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं सरिता बोल रही हूँ पुणे से। मैडम
0: सरिता जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बचपन से आज तक रेडियो ही सुने हैं
0: क्या
1: बहुत
0: बात है।
1: ज्यादा।
0: तो रेडियो आप सुबह से लेकर रात तक सुनती हैं, तो आपको कौन से प्रोग्राम रेडियो के अच्छे लगते हैं?
1: सारे प्रोग्राम हमको बहुत पसंद है,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: दीपमाला हुआ, फिर छाया गीत, हेलो फरमाए, हेलो सहेली।
0: जी, तो ये
1: हाँ
0: बताइए कि और

0: आपको क्या पसंद है?
1: हमको जितना कला है सब पसंद है, चाहे ड्राइंग हो, गीत संगीत, नृत्य, सिनेमा
0: जी,
1: देखना, ये सब चीज, रेडियो सुनना, सब चीज पसंद है।
0: तो आप ड्राइंग भी
1: कला
0: कर,
1: के
0: कला
1: फैन
0: के फैन हैं, क्या बात है
1: है।
0: जी। कला तो बहुत अनंत होती है,
1: हाँ
0: उसकी कोई सीमा
1: वो
0: नहीं, हर चीज में कला आपको नजर आती होगी, है ना
1: हाँ, ये
0: जी।
1: बात है।
0: तो ये बताइए,
1: हाँ
0: बारिश जब होती है तो उसमें आपको कैसा लगता है?
1: अरे बारिश का तो पूछो मत। हम तो मैंने बचपन में बारिश जब होती थी तो उसका बैठ के और फोटो बनाते थे अपने से, बिना
0: अच्छा
1: सीखे ही बहुत बनाते थे, और बहुत हमको बारिश में भीगना, नहाना सब बहुत पसंद,
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: बारिश देखना भी बहुत पसंद है। ऐसे अभी बालकोनी में बैठ के बारिश देखना, अभी तो पुणे में बहुत बारिश हो रही है,
0: जी जी
1: तो
0: जी
1: मेरे बालकोनी से दिखता है।
0: और बताइए, और क्या शौक हैं आपके?
1: और बस सबको खिलाना, सबसे बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना,
0: जी,
1: यही सब मेरा शौक है।
0: क्या चीज़ खिलाना पसंद करती हैं? आपको क्या
1: सब
0: पसंद है,
1: चीज
0: क्या
1: सब,
0: बनाएं?
1: नहीं, खाना हम अच्छा बनाते हैं, और तरह तरह जो भी बनाते हैं वो किसी को बुला के खिलाना,
0: क्या बात है,
1: ये सब मेरा शौक है कि भाई आए मेरे यहाँ, खाए, बैठे, गप्पे मारे।
0: जी। आज बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: तिलक मंदिर फिल्म का,
0: जी
1: हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे।
0: ठीक है, तो हम आपको सुनवाते हैं दिलिक मंदिर का ये
1: हाँ
0: प्यारा
1: ठीक है,
0: संगीत।
1: प्यार में सारा आलम हम खो बैठे।
0: क्या बात है, और यही सारा प्यार हमारा भी है आप सभी के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं रतिका तिवारी हूँ, सूरत गुजरात से।
0: रसिका जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आपको क्या क्या अच्छा लगता है?
1: मुझे फिल्मों के गीत सुनना बहुत पसंद है और सखी सहेली
0: जी,
1: और रेडियो सुनना, और उसमें खास तौर पे सखी सहेली मैं रोज सुनती हूँ
0: क्या बात है। तो
1: जी।
0: अच्छा, ये बताइए रसिका जी कि बारिश का मौसम कैसा लगता है?
1: हाँ, बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
0: अच्छा, क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
1: हाँ, बस

0: हाँ बारिश का मौसम अच्छा लगता है और आजकल तो बहुत बारिश हो ही रही है।
1: अच्छा, क्या सावधानियां रखती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है तो परिवार में बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सबके लिए क्या आप खास ध्यान रखती हैं कि कैसे वो ठीक रहें, स्वस्थ रहें?
0: हाँ बस ये है कि बारिश में ज्यादा बाहर जब तक जरूरी नहीं हो तो बाहर ना निकलें,
1: जी
0: घर पे रहें। हाँ
1: जी और बारिश में क्या क्या चीजें बनाती हैं?
0: बारिश में हम लोग पकौड़े खाना पसंद करते हैं।
1: क्या बात है, बारिश आते ही सबको पकोड़े याद आ जाते हैं ना।
0: हाँ
1: मान लीजिए रसिका जी मेहमान आ गए और रसोई में आप गई और कुछ चीजें कम पड़ गई, तो फिर क्या आप जुगाड़ लगाती हैं कि क्या चीज हम डाल दें और मिला दें जिससे अच्छी चीज बन जाए?
0: वैसे तो मैं ज्यादातर बेसन की बनाती हूँ पकौड़े,
1: जी
0: लेकिन अगर बेसन मान लीजिए कम है तो आटा मिला दिया, उसमें सूजी मिला दी
1: अच्छा,
0: इस
1: तो
0: तरह, और आलू प्याज ये सब कुछ सब्जी और डाल ली।
1: बहुत अच्छा लगा। और परिवार में आपके कौन कौन हैं?
0: परिवार में मेरी सास
1: जी
0: नंदी
1: जी
0: और मेरे पति, एक बेटा।
1: भरा पूरा परिवार है, बहुत अच्छा लगा सुन करके।
0: हाँ
1: और बारिश का मौसम है तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आज?
0: बारिश के मौसम में मुझे आज बरखा बहार आई।
1: परख मूवी का आपको ये गीत सुनना है तो
0: हाँ
1: बहुत,
0: ये गीत
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो हम आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी हिंदी में 4002462, एसटीडी है 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, 2867-0288, एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022। अगले मंगलवार हेलो सहेली में कीजिएगा फ़ोन, नई सहेली से दिलों की बातें कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। प्रत्येक शुक्रवार हेलो सहेली दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। अपने फोन में लगा लीजिए टाइमर अलार्म, जिसे याद रहेगा। जिन सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई, वो मन मायूस ना करें, वो अगली बार कॉल जरूर लगाएं। जिनकी कॉल आज लगी है, वो 2 महीने तक कॉल नहीं करें। सखा भाइयों से विनती है, वे कॉल नहीं लगाएं, क्योंकि व्यस्त होंगी टेलीफोन्स की लाइनें। अपनी बातों को देते हैं विराम, हेलो सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा। आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के साथ, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नायक और भावना सिंदल ने, और संपादन सहयोग दिया नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

आज हेलो सहेली में सखियों ने की अपने मन की दिल की बातें, और बातों के साथ साथ उन्होंने अपने पसंद के गाने भी बताए जो सबने सुने और सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और अब इस कार्यक्रम से विदा लेने की घड़ी करीब आ गई है, तो जाने से पहले ये आपको जानकारी नोट करा दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक। कॉल करने के लिए नंबर्स जो है वो आप नोट कीजिए, फ़ोन नंबर है 4002466

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को

देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहां बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहाँ बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है।

इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई, उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म की चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हूँ भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया, आओ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के

मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ। संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली। क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली। लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा। मेरी बात सुनकर गुरु जी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरु जी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी बार उत्तर दिया, संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा, नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई। और वो गाने लगा।

तभी उनके साथी भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने के बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नज़र अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी, और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था, तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं, बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए, तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं। वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया। उसने एक साधारण सपोर्ट बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी। कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता। कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था। उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता। फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया। उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वो वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चल।

देखते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ न कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मुस्कुराइए, खुश हो जाइए और अपनी रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा सफर जिसमें होंगी ढेर सारी बातें, नई जानकारी, प्रेरणा और भरपूर एंटरटेनमेंट। नमस्कार सभी श्रोताओं को, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त स्मृति और आप सुन रहे हैं आप युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। तो जरा चाय की गरम गरम कप को लेकर किसी ठंडी ठंडी जगह आराम से बैठ जाइए, क्योंकि अगले आधे घंटे तक मैं आपके लिए हाजिर हूँ ये शानदार प्रोग्राम के साथ। मगर बिना मजेदार गानों के मजा नहीं आएगा, है ना? तो पेश है ये पहला गाना खास आपके लिए।

श्रोताओं, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करने वाली हूँ और आपको कुछ जानकारियां भी दूंगी। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष इवेंट्स पर, जैसे नेशनल फिश फार्मर्स डे, ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे, और दोस्तों आज कई महान हस्तियों का जन्मदिन भी है, जैसे सुनील गावस्कर, गोपीनाथ बोर्दोलोई, बेगम परवीन सुल्ताना। और फिर हम याद करेंगे भिखारी ठाकुर जी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। साथ ही साथ सुनाते रहेंगे आपको और भी दिलचस्प गाने, तो कहीं मत जाइए। और हाँ, चैनल तो बिल्कुल मत चेंज कीजिए, क्योंकि पेश है आपके लिए एक और बेहतरीन गाना।

तो श्रोताओं, गाने तो हम आपको और सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे यानी राष्ट्रीय मत्स्य पालक दिवस के बारे में। ये दिवस भारत में मत्स्य पालन और ब्लू रिवॉल्यूशन के योगदान को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस हमें फिशरीज सेक्टर के महत्व की और लाखों लोगों की आजीविका में इसके योगदान की याद दिलाता है। और अब हम जानेंगे ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे के बारे में। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि भविष्य की ऊर्जा केवल पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर नहीं कर सकती। आज पूरी दुनिया सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी यानी वायु ऊर्जा, हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत ऊर्जा और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस यानी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बढ़ रही है। ये दिन हमें एनर्जी कंजर्वेशन के महत्व को समझने का संदेश देता है तथा बिजली की बचत से हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हैं इसका भी संदेश देता है। तो दोस्तों, ये तो हमने दी आपको जानकारी और बातें बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले सुनाते हैं आपको एक और ये प्यारा सा गाना।

दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन महान और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की जिनका आज जन्मदिवस है। इन सभी हस्तियों ने अपने अपने क्षेत्र में असाधारण योगदान देकर देश का गौरव बढ़ाया है। जिंदगी जीने का कोई शॉर्टकट तो नहीं होता दोस्तों, मगर आज आपको बड़े ही संक्षेप में बताऊंगी इनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ उनके बारे में जिनका नाम भारत के बड़े बल्लेबाजों में लिया जाता है। सुनील गावस्कर ये टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले बल्लेबाज थे और आज भी धैर्य एवं अनुशासन के प्रतीक माने जाते हैं। सुनील गावस्कर ने अपने शानदार क्रिकेट करियर में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। और आपको बताते चले दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली प्रतिष्ठित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी उनके सम्मान में नामित है, जो उनके क्रिकेट जगत में अमूल्य योगदान का प्रतीक है। तो ये तो हमने बताई आपको गावस्कर जी के बारे में। अब हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गोपीनाथ बोरदोलोई जी की, जो असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक विकास और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा दी तथा उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण असम भारतीय संघ का मजबूत हिस्सा भी बना रहा। तो दोस्तों, अब समय हो चला है एक और प्यारे गाने का, तो कहीं मत जाइए, ये गाना सुनते जाइए।

तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हिंदी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका बेगम परवीन सुल्ताना जी के बारे में, जिनकी मधुर आवाज के लोग आज भी कायल हैं। उनकी संगीत साधना और संगीत के प्रति प्रेम एवं समर्पण ने उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान दिलाए। और सही बात है दोस्तों, उनके गाने आज भी हम अक्सर गुनगुनाने लगते हैं, है ना। और अब हम बात करने वाले हैं भिखारी ठाकुर जी के बारे में। भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि 10 जुलाई को मनाई जाती है। उन्हें भोजपुरी साहित्य और लोक नाटिका शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जैसे विदेशिया और बेटी बेचवा आज भी समाज को जागरूक करती हैं। हम सभी की ओर से भिखारी ठाकुर जी को श्रद्धापूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ, और वो ये है कि इन सभी महान दिग्गजों के जीवन में से हमें यही सीखने को मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और लगन यदि हम अपने हर काम में शामिल कर लें, फिर चाहे वो पढ़ाई हो, कोई स्पोर्ट हो, कोई कला हो या जॉब हो, कुछ भी हो, तो हम भी ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं। अपने साथ साथ अपने अपनों का और हमारे देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय हो चुका है एक प्यारे से गाने का, तो कहीं मत जाइए, ये गाना जरूर सुनिए।

इस गाने के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने कुछ युवा साथियों की जो अपने करियर को लेकर काफ़ी परेशान हैं। कोई ये सोच रहा है कि मैं MBBS करूँ या फैशन डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग करूँ या कॉमर्स की पढ़ाई।

और कई तो अपने जॉब प्रोफाइल्स को लेकर एकदम क्लियर हैं, लेकिन फिर भी सोच में हैं कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स लें कि आगे का रास्ता आसान हो जाए, है ना? खुद के लिए सपने कौन नहीं देखता दोस्तों, मगर उन्हें पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है। तभी हम अपने सपनों को पंख दे पाएंगे और खुद को खुले आसमान में उड़ते देख पाएंगे। उड़ान से याद आया कि हमारे कुछ युवा श्रोता पायलट बनने की सोच रहे हैं। भाई ये तो बहुत बढ़िया विकल्प है, मगर पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल तो मेरे भाई। अरे वाई फियर व्हेन आई एम हियर, हम हैं तो क्या गम है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, लेकिन पहले आपको ये गाना सुनना पड़ेगा दोस्तों। ये आप गाना सुनिए।

हमारे युवा श्रोता पेन पेपर के साथ बैठे हैं या नहीं। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं, हाँ हाँ एरोप्लेन उड़ाने वाला पायलट, तो उन्हें 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM विषयों का चयन करना चाहिए। इसके बाद ग्रेजुएशन करना कोई ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन बैचलर्स डिग्री होने से आगे के करियर में बहुत फ़ायदा होता है। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो DGCA द्वारा निर्धारित मेडिकल टेस्ट पास करना होता है और फिर DGCA से ही मान्यता प्राप्त फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO में प्रवेश लेकर ग्राउंड ट्रेनिंग और फ्लाइट ट्रेनिंग पूरी की जाती है। दोस्तों, प्रशिक्षण के दौरान DGCA की कुछ ज़रूरी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होती हैं और निर्धारित फ्लाइंग आवर्स पूरे करने होते हैं। उसमें आपको प्लेन उड़ाने की तकनीक और ट्रेनिंग दोनों दी जाती है। बस फिर क्या, सभी चैलेंजेस पूरे करने के बाद कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL प्राप्त होता है। और इसके बाद दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने पसंद के एयरलाइंस चुन सकते हैं। एयरलाइंस की खुद की भी चयन प्रक्रिया होती है, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद आप एक फुल फ्लेज्ड कमर्शियल पायलट के रूप में अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको दी पायलट बनने की पूरी जानकारी। और अब दोस्तों, समय हो चला है एक और प्यारे गाने का, तो पेश है आपके लिए ये एक और प्यारा सा गाना।

तो हमारे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का समय हो गया है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और इन महान व्यक्तित्वों एवं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी कुछ नया जानने का मौका मिला होगा। मैं आपकी रेडियो दोस्त स्मृति आपसे अनुमति चाहती हूँ। सुनते रहिए आकाशवाणी पटना। धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे वह श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं भोजपुरी कार्यक्रम आरती।

आरती सुने वाला हमार सबन सुनिहार लोगिन की राउर विनीता के प्रेम भरल नमस्कार एक बार फिर से आज मैंने शुक्रवार के बेरा में सांझ के हम आयल बनी राउर सुभन के आपन मन पसंद कार्यक्रम आरती के लेके आ एक कार्यक्रम में निमन निमन बातचीत चर्चा के विषय के साथ ही हम हमेशा सुनवाई ला रुआ सभी के मन मन सावन करे खातिर आज के विशेष प्रस्तुति में फिल्म संगीत आ साथ ही सुनल जाए एगो काव्य पाठ यशोदा देवी जी से। तो देखी हम बात करम जोना विषय पाज उप हमने इनके समाज में बेसी ऐसा लोग भेटा जालन जिनका हिचकिचाहट होला यह बात के बतियावे में।

बाकी रही हमने इनके घर परिवार के खुशहाली से जुड़ल बा, आ बात है परिवार नियोजन माने छोट परिवार सुखी परिवार के बारे में। पहले के जमाना में लोग इनके सोचे के नजरिया तनिका हट के रहे, आ ऊ का तो लोग कहत रहन कि जितना लड़का उतना हाथ कमावे खातिर, जबकि आज के जमाना में महंगाई के हाल देखते बनी रउआ सभे, लड़का पैदा करे से बेसी मेहनत के काम बा ओकरा के नीमन खियावल पियावल बढ़िया स्कूल में पढ़ावल आ ओकर भविष्य संवारल सबसे बड़ जिम्मेदारी बा। आ इहे के साथे एगो बात इहो कहल चाहम कि हमने इनके दीदी चाची सखी बहिन माने हर घर के मेहरारू लोग इनके सेहत सबसे बड़ धन बा। बार बार गर्भधारण कैला से माई के शरीर एकदम खोखला हो जाए, आ सोची कि जब माइये बहिन तंदुरुस्त ना रही हैं तो लइकन कैसे तंदुरुस्त हुई हैं सब। आ ऐसे भी हमने इनके डॉक्टर चाहे विज्ञान ये बात कहेला कि पहिलका आ दूसरका बच्चा के जन्म के बीच में कम से कम 3 बरिस के अंतर जरूर होके के चाहिए, ताकि माई के जो शरीर बा वो फिर उसे मजबूत हो सके आ पहिलका लड़का के भी कम से कम 3 बरिस माई के पूरा दुलार प्यार आ दूध मिल सके। आ ए खातिर जरूरी बा कि कुछ प्रयास अपना तरफ से कर जाओ। सरकार ए खातिर बहुत सारा उपाय मंगनिये में मुहैया करा रहल भर, आ ओ में कॉपर टी चाहे मालडी गोली बा उहे तरह अंतरा इंजेक्शन बा जेकि हर 3 महीना पर लेवे पड़ेला। आ इहे के साथे बिना 1 रुपया खर्चा कैले रो अपन गांव के आशा दीदी एएनएम दीदी से भेंट क के बतियाई चाहे पास के सरकारी अस्पताल में जाई, वहाँ सभी सुविधा सलाह एकदम मुफ्त आ गुप्त रखल जाला। त देर कौन बात के, समझदारी देखाई आ अपन परिवार के सुखी बनाई आशा दीदी से सलाह लेके, कहे कि छोट परिवार सुखी संसार इहे बा तरक्की के आधार। त अब हमू आगे बढ़ाई अपन कार्यक्रम के रोआ सभी के फिल्म संगीत सुनवा के, ओके बाद फिर उसे हमने ए विषय से जुड़ल बात जरूर बतियाएं, तो सुनी सभी ए फिल्म संगीत के।

0: अरे रामा, बरखा बीती जाए, सजन मोरा अब हूँ आए ना। बहुत निमन ये फिल्म संगीत लागल है। बरखा के मौसम बा, पानी रिमझिम पड़ता रुकता, और इस समय बहुत जरूरी बा कि साजन साथ हो खस। तो ऐसने नीक संगीत हम आगे भी रुआ सभी के सुनवाएं। आ ई रहे फिल्म हिंदुस्तानी से राधा रानी जी की आवाज़ में। तो देखी ए संगीत के साथे साथे हम रुआ सभी की एगो औरी बात कह दी कि काल माने 11 जुलाई के विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनावल जाला। आ ई दिवस के मनावे की जरूरत जानत हैं काहे पड़ल? काहे कि हमने इनके भारत देश आबादी के मामला में नंबर 1 पे बा, यानी एकदम एक नंबर पर। अब सोची जरा कि जमीन ओतने, पानी ओतने बा, आ पेड़ पौधा भी ओतने बा, बाकी खाए वाला मुंह लगातार बढ़ल जा रहा बा। आ इस तरह आबादी अगर बढ़त चल जाई तो आवे वाला पीढ़ी के का भेंट आई? ना नीमन पानी मिली, ना शुद्ध हवा, ना नौकरी आ ना नीमन अस्पताल। ऐसे हमने सभी के ये सोचे के पड़ी कि कैसे अपन परिवार और देश के खुशहाल बनावल जाओ। मतलब साफ बा, हमने के देश के जो युवा बारन, लड़का लड़की बारी, उनका लोग इनके पढ़ाई कमाई या नीमन जिंदगी के मौका मिले के चाहे। आ ई तबे होई जब परिवार छोट होई, माता पिता के ऊपर आर्थिक बोझ कम होई, आ ऊ लोग अपन लड़का के बढ़िया भविष्य दे पाए। हमने इनके बिहार सरकार भी 11 जुलाई से 31 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मना रहा बा। आ एह दौरान गांव के सरकारी अस्पताल हो गए, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो गए, आंगनबाड़ी में परिवार नियोजन के सभी साधन बिल्कुल मंगनिये में मिल जाए। ऐसे समझदार बनी सभे आ सभी के वो मिल के क्रिया खाई कि आपन परिवार के नियोजित करब आ देश के तरक्की में हाथ बटाए। काहे से कि तबे होई देश के नाम ऊंच विचार जब हर घर में होई छोटा आ सुखी परिवार। तो चलिए अब एह के बाद हम सुनवाई रुआ सभे के यशोदा देवी जी से काव्य पाठ।
1: कविता के शीर्षक बा देश बाटे सुंदर सलोना हमार। देश बाटे सुंदर सलोना हमार, मनमा के मोहे यहाँ के संस्कार। सभे धर्म के सेना करेला बॉर्डर पे रखवाली, सभे धर्म के सेना करेला बॉर्डर पे रखवाली। अनेकता में एकता बा यहाँ के निराली। भूल जाला सब केहू अपना, भूल जाला सब केहू अपना जाति धर्म के, आ देश के रक्षा में सब रहेला तैयार। देश बाटे सुंदर सलोना हमार, आ मनमा के मोहे यहाँ के संस्कार। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभे ला न्याय कानून एके बनाई। एके न्याय कानून से हुई देश में विकास, एके न्याय कानून से हुई देश में विकास। तब कटी देश द्रोही के साजिश के तार। देश बाटे सुंदर सलोना हमार, मनमा के मोहे यहाँ के संस्कार। शिक्षा में भी न्याय कानून एक के बनाई, शिक्षा में भी न्याय कानून एक के बनाई। अमीर गरीब के शिक्षा एके स्कूल में कराई। एके शिक्षा एके पाठ कर्म एके ही हो भाषा। शिक्षा में अमीर गरीब के मिटाई दरार, शिक्षा में अमीर गरीब के मिटाई दरार। आ देश बाटे सुंदर सलोना हमार, आ मनमा के मोहे यहाँ के संस्कार। हर धर्म के नारी के एके कानून बनाई, हर धर्म के नारी के एके कानून बनाई। सभे के मान सम्मान बराबर दिलाई। नया सिस्टम लाई होई देश में सुधार, नया सिस्टम लाई होई देश में सुधार। आ देश बाटे सुंदर सलोना हमार, आ मनमा के मोहे यहाँ के संस्कार। दोसर कविता के शीर्षक बा कि पहनाइब हरियाली के हार।

हार, पहनाइब हरियाली के हार। बन के करे के बारखवाली, फैलल रहे सदा हरियाली। बन के करे के बारखवाली, फैलल रहे सदा हरियाली। लुप्त हो रहल बा पंछी जनावर, लुप्त हो रहल बा पंछी जनावर, जंगल के

हार। वृक्ष हम सबके रक्षा करेले, दूषित हवा से खुद लड़ेले। वृक्ष हम सबके रक्षा करेले, दूषित हवा से खुद लड़ेले। स्वच्छ हवा हम तक पहुँचा के, स्वच्छ हवा हम तक पहुँचा।

के हाथ। बंजर में हम पेड़ लगाइब, फल फूलन से एक सजाइब। बंजर में हम पेड़ लगाइब, फल फूलन से एक सजाइब। चहकी हैं जब चिड़ियाँ।

सिंगार करब हम धरती के सिंगार पहनाइब हरियाली के हार। खाना से कपड़ा तक देला बदले में ये कछु न लेला। खाना से कपड़ा तक देला बदले में ये कछु न लेला। गंद भर

कहे यशोदा सुना है भाई बहना, पर्यावरण से बाजल झरना, सींचब हम सब खून जिगर से, सींचब हम सब खून जिगर से, बनब हम एके पहरेदार, अब हम धरती के सिंगार, पहनाइब हरियाली के हार। तीसरा कविता बा गाँव पर कि बदलल बदलल गाँव हमार, बदलल बदलल बा ना नारी अब घूंघट लेला, ना पायल पन घट छन केला, ना नारी अब घूंघट लेला ना

पर सब बात करेला, ना अब चिट्ठी गांव में आवेला, मोबाइल पर सब बात करेला, लड़का लड़की के हो जाला, मोबाइल पर प्यार बदलल।

हले पढ़ लिख के सब शिक्षित भइले, पहले नारी अनपढ़ रहले, पढ़ लिख के सब शिक्षित भइले, नकल करेला सिनेमा के सब कैसन बहले बयार। बदलल बदलल गाँव हमार, बदलल बदलल बा, पहले उबड़ खुबड़ रहे रहिया, अब रहिया हो गइले पकिया। पहले उबड़ खुबड़ रहे रहिया, अब रहिया हो गइले पकिया। डोली कहार के गइल जमाना, घर तक जा।

के पदभार संभार ले। गाँव से नारी संसद में गईले, मुखिया के पद भार संभार ले।

वाह, बहुत निमन इनकर कविता संग्रह रहल हा। आ ए सभन कविता खातिर यशोदा देवी जी के बहुत धन्यवाद बा। अब देखी आवत एगो बहुत ही निक महीना, याद बा नु रउआ सबे के? हाँ, हम जाने तनी अभी तनी का समय बा, आज 11 जुलाई ह आ 30 जुलाई के बाद चढ़े वाला बा महीना बाबा भोलेनाथ के, और पावन महीना सावन के बात हम करत नहीं, जोना में हर गली हर घर हर मोहल्ला हर मंदिर से एक के आवाज सुने के भेटाई रुआ सभे के, हर हर महादेव। जी हाँ, इस महीना में सभी लोग शिवमय शिव भक्ति में एकदम डूब जालन। बाबा के नगरिया जात घरी श्रद्धा के साथ साथ सभी लोग बहुत लोग सुने में आई कि कांवड़ यात्रा करेला, कांवड़ लेके बाबा के धाम पर जाला। लाखन भक्त सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा जी से जल भरल है आ बाबा वैद्यनाथ के नगरी देवघर तक 105 किलोमीटर के ओह कठिन पथरीला रेतीला रास्ता पर सबन कांवरिया लोग जब बोल बम के जयकारा लगावत पैदल निकले रहनु, तो पैर के छाला भी ओघरी शर्मा जाला। आ इहे तो हा हमने इनके भोले दानी के महिमा। लेकिन हाँ, कांवर यात्रा में जरूरी बा कि कुछ स्वास्थ्य के भी ध्यान रखल जाओ। रास्ता लंबा बा, यही से नीमन और शुद्ध खाना खाई, पानी खूब पियत रही ताकि शरीर में पानी की कमी ना होके। आप बाबा के डगरिया साफ सुथरा रखल जाओ, उसे हमने इनकी जिम्मेदारी बा कि कचरा इन्हें उन्हें मत फेंकल जाओ। जगह जगह पे प्रशासन भी जौन बा उस शिविर दवाई या सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कैले रहल।

तो कौनो परेशानी होके तो तुरंत सेवा शिविर में जाएं सभी। आ कांवर यात्रा जो हन हो एगो खाली धार्मिक यात्रा नहीं है, ये हमने इनकी भोजपुरी समाज के वो एकता बा जहाँ अमीर गरीब जात पात के भेद मिट जाला, सभी के एक ही रंग में रंग जाला भोले बाबा के रंग में। केहू राजा बाबू होकस आ चाहे केहू आम आदमी, बाकी ओकर रास्ता में सभी के एके नाम से पुकारेला, एक दूसरा के बम कह के ही बुलावल जाला। त आवे वाला पावन महीना में कांवर यात्रा के धूम जब मची

एक दूसरा के बम कह के ही बुलावल जाला। त आवे वाला पावन महीना में कांवर यात्रा के धूम जब मची त हर जगह इतना भीड़ दिखाई दी गेरुआ वस्त्र में, आ एक से एक निमन निमन एकदम घंटी उंटी लागल जान फानुस लागल कांवर रुआ सबन के देखे के बेटाई। तो हो कांवर यात्रा के कुछ दिन और बाकी रह गई बा, इंतजार करी सभी। अब सुनी पहले मन मन सावन करे खातिर ए फिल्म संगीत के, तो फिर आगे भी बतियावल जाए।

वाह, बहुत निमन रहल ई फिल्म संगीत। गंगा मैया भरदे अचरवा फिल्म से रहे आ गायिका रही हेमलता जी। तो सबसे पहले तो ये दोनों बढ़िया बढ़िया फिल्म संगीत हम सुनौनी है खाति गायक लोग के भी धन्यवाद बा। साथ ही साथ हम बात करब आवे वाला महीना सावन के। तो देखिए भाई, सावन के सबसे निमन चीज़ का होला? सावन के सबसे नीक चीज़ हमने सखी बहन लोग इन खातिर बा ओकर श्रृंगार। कलाई में हरा हरा चूड़ी खनक जला, हथेली पर सुनहरा रचे वाला मेहंदी रहेला। सावन में हरियर रंग के बहुते बड़ महत्व रहेला। आ विज्ञान भी कहेला कि सावन में चारों तरफ हरियाली देख के मन खुश हो जाला। आ परंपरा कहेला कि हरियर रंग सुख समृद्धि आ सुहाग के प्रतीक। तो सावन के श्रृंगार जोन बा वो बहुते खास महत्व रखेला। सावन चढ़ते सब सुहागिन मेहरारू लोगिन जोन होली वो हर हर चूड़ी हरी हरी चूड़ी से अपन जोन बा पति के लंबा उम्र खातिर घर में खुशहाली आई वो खातिर अपन कलाई भर ले वाली। मेहंदी के बिना तो सावन के श्रृंगार एकदम अधूरा बा। ऐसे एकर जितना गाढ़ा रचेला लोग कहला कि पिया के प्यार उतने गहरा होला। तो आवे वाला इस सावन महीना के रउआ सभी भी जोर शोर से तैयारी करी आ सभी कुछ मंगा के घर में रख ली जितना साज श्रृंगार के सामान बा। आ खूब एक महीना बढ़िया से हरियाली भरल रही। तो चलिए अब यही के साथे हमरो जाए के बेरा भ गई। तेह मंगल कामना के जोरे कि रउआ सभन अपन अपन परिवार में मस्त आ दुरुस्त रहें। हमार मनीरा और विनीता के निहोरा बा कि अब हमरा के जाए देवल जाओ। प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी कार्यक्रम आरती। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा, वर्षा जल का संरक्षण, सुनेंगे भेंट वार्ता, मधुमेह एवं इसमें खान पान संबंधी सावधानियां। भेंट वार्ताकार होंगे अंगद कुमार और इनसे बातचीत करेंगे दिव्या भारती। साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का। कलाकार होंगे शंभु राम और साथी। श्रोताओं, 7 बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृषि चर्चा, आम के उन्नत प्रभेद, सुनेंगे वार्ता, आम अमृत के बाग की देखभाल। वार्ताकार होंगे डॉक्टर रंजू कुमारी और सुनेंगे लोकगीत।

शंभुराम और साथी के स्वर में। सात बजकर 52 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत, कलाकार होंगे तान्या सौम्यदीप चक्रवर्ती। आठ बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गजल मोहम्मद असलम की आवाज में। श्रोताओं, 9 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संपादकीय जरा सोचिए, सुनेंगे 9 गीत अश्विनी कुमार के स्वर में, सुनेंगे कहानी गिल्लू इज बैक, कहानीकार होंगी रूबी भूषण, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुति होगी रजत कुमार। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। 10 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोता, ये थी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब वक्त हो चला है अगले कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।
1: प्रणाम, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय भोजपुरी में समाचार सुनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 97,84,000 से बेसी लाभार्थियों के खातन में डीबीटी के माध्यम से पेंशन के पैसा ट्रांसफर कैले। श्री चौधरी पटना में आयोजित एगो कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपया के राशि जारी कैले। योजना के 6 गो श्रेणी की हर एक लाभुक के 11,1100 रुपया के भुगतान कैल गेल। एह मौका पर मुख्यमंत्री कहले कि सरकार सब योग्य लाभार्थियों के समय पर पेंशन राशि उपलब्ध करावे के व्यवस्था पक्का कैले बिया, ताकि ओखनी के जीवन यापन में मदद मिल सके। वो अधिकारी लोगन के निर्देश देले कि योग्य लोगन के तुरंत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जोड़ल जाओ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय प्रसाद यादव और दूसर वरिष्ठ अधिकारी लोगन भी मौजूद रहलन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन काल 2 दिना के बिहार दौरा पे आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार बतौले कि उपराष्ट्रपति गया जी में 11 और 12 जुलाई के आयोजित विधायक लोगन के प्रबोधन कार्यक्रम के उद्घाटन करी हैं। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दूसर गणमान्य लोगन भी शामिल हुई हैं। डॉक्टर कुमार बतौले कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान और विपाड के साझा प्रयास से आयोजित यह कार्यक्रम में विधायक लोगन के संसदीय और विधायी काम के अलग अलग पहलुओं की ट्रेनिंग दिल जायी। राज्य में 3,035 ऐसा नियोजित शिक्षक मिलल बाड़े जे फर्जी शैक्षणिक और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी पैले रहलन। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी जांच ब्यूरो शिक्षक लोगन के सर्टिफिकेट के जांच के काम पूरा कर ले बा। यह सब शिक्षक लोगन के बहाली साल 2006 से लेके 2015 के बीच भइल रहे। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी करे के मामला में अब तक 1,830 FIR दर्ज हो चुकल बा। ए बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी बतौले

0: कि दोषी शिक्षक लोगन के सेवा समाप्त करे के प्रक्रिया शुरू कइल जा रहल बा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहले बाड़े कि शिक्षक लोगन के ट्रांसफर के विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गइल बिया। पटना में पत्रकार लोगन से बातचीत में वो कहले कि पहले विभागीय अधिकारी लोगन खातिर काल ट्रेनिंग हुई और ओकरा बाद शिक्षक लोगन के तबादला खातिर आवेदन के तारीख जारी कल जाई। राज्य के सरकारी स्कूलन में मॉनसून के दौरान मध्याह्न भोजन योजना के मेनू में बदलाव कल गई बा। शिक्षा विभाग लइकन के सेहत के ध्यान में रखत बरसात के मौसम में बैगन, भिंडी, पत्ता गोभी और इस साग के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगा दिले बा। विभाग सब जिला के जारी निर्देश में कहले बा कि इन्फेक्शन के खतरा के देखत यह सब सब्जियन के ताजा स्थानीय और मौसमी सब्जियन के इस्तेमाल कर जाओ। साथ ही मिड डे मील की क्वालिटी पक्का करे के खातिर जिला और ब्लॉक लेवल के अधिकारी लोगन के लगातार जांच करे के आदेश दिया गया बा। भाजपा के वरिष्ठ नेतन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अध्यक्षता में एनडीए के घटक दलन के बैठक भइल। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेतन, मंत्रियन, सांसदन, विधायकन, विधायक सांसदन आ और वरिष्ठ नेता लोगन भी शामिल भइलन। बैठक में सरकार के कार्यक्रम के समीक्षा, घटक दलन के बीच तालमेल तथा विकास योजनान पर मुख्य रूप से चर्चा कल गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के खातिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार अपन नामांकन वापस ले लिहले बाड़न। पटना पार्टी कार्यालय में संवाददाता ले बातचीत में कहले कि पारिवारिक कारण ले उपचुनाव ना लड़े के फैसला कैले बानी। गौरतलब बा कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा बा। नामांकन की अंतिम तारीख 13 जुलाई तक निर्धारित बा। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहले बाड़े कि अब की बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण के नया रोस्टर लागू हुई। नालंदा में पत्रकार लोगन से बातचीत में वो कहले कि 10 साल पूरा होके के कारण चुनाव में आरक्षण के नया रोस्टर प्रभावी हुई। श्री प्रकाश कहले कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव पुरान व्यवस्था के मुताबिक अप्रत्यक्ष रूप से ही कैल जाए। आज भोजपुरी लोक संस्कृति आलोक भाका के अमर पुरोधा, जनकवि, लोक नाटककार, गीतकार और समाज सुधारक भिखारी ठाकुर के पुण्यतिथि श्रद्धा और सम्मान के साथ मनावल जा रहा बा। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाए वाला भिखारी ठाकुर अपन कालजयी रचनन, विदेशिया, बेटी बेचवा, गोबर घिचोर जैसन नाटकन के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीति, नारी पीड़ा और सामाजिक असमानता के मंच पे ले अलन। उनका रचनन आज वो समाज के आईना मानल जा रहा बा। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक यही जे समाप्त भइल।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं वार फिल्म का ये गीत। अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाज़ में कुमार के लिखे इस रचना को दर्ज दिया है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं वनडे जस्टिस डेलीवर्ड फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और विक्रांत की आवाज में। गीत लिखा है स्मिता काबरा और वीनू सांगवान ने, और इसे संगीतबद्ध किया है विक्रांत और परिषद ने।

0: श्रोताओं, सुनिधि चौहान और विक्रांत की आवाज़ में गायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी न्यूजीलैंड देशस्य समकक्षीयेण सह वार्तालापं विधातुं द्विदिवसीय यात्रायां ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्। केन्द्रेण मादक द्रव्याणां नियमेषु संशोधनं कृत्वा अधिक मद्ययुक्तानां औषध सूत्रीकरणानां विनियमनं विहितम्। उत्तराखण्ड राज्ये अत्यधिक वृष्ट्यै ऋतु विभागेन रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायाम् अद्य रात्रौ द्वितीयायां प्रागुपान्त्य क्रीडायां स्पेन देशः बेल्जियम देशेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य तिसृणां राष्ट्राणां यात्रायाः अन्तिमे चरणे अद्य ऑकलैंड नगरं सम्प्राप्तवान्, यत्र न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन तस्य भव्यं औपचारिकञ्च स्वागतं विहितम्। ऑकलैंड विमानस्थानके रेड कार्पेट इत्यत्र प्रधानमन्त्रिणा लक्सन वर्येण श्री मोदिनः व्यक्तिगत रूपेण स्वागतं विहितम्। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं टर्मेक इत्यत्र औपचारिकं स्वागतं च अददात्, यत्र भारतस्य न्यूजीलैंड देशस्य च सशस्त्रसेनायाः प्रतिनिधयः उपस्थिताः आसन्। श्रीमोदी न्यूजीलैंड देशस्य स्वकीयेन समकक्षीयेण क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ समग्रस्य द्वैपाक्षिक सम्बन्धस्य समीक्षां करिष्यतः, यस्मिन् विगतद्वयोः वर्षयोः विशेषतः व्यापार वाणिज्य रक्षादि क्षेत्रेषु महती प्रगतिः अभवत्। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः न्यूजीलैंड देशस्य यात्रा 40 वर्षेषु प्रथमा या

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: नाम चंपा दीदी।
2: हाँ नमस्कार निमिषा, कहूँ की हाल चाल है?
1: हाल चाल एकदम निम्न है दीदी। देखा हाल चाल निम्न की बात कर रहा था दीदी, जब आज के मौसम जो है हमने की बरसात के मौसम है, ये मौसम में हमने के हरियाली चार ओर छा जाए, ऐसे तो हमने के नगर में हमने के पटना में तो कम बारिश हो रही है, लेकिन चारों ओर देखा बारिश हो रही है और पेड़ पौधा के हरियाली दे रही है।
2: हाँ तो ये बारिश भर रहा है, बरखा के सदुपयोग से हो कल जाए। बरखा कह के अभिप्राय है कि बरखा

0: गंगा जल के संरक्षण करब जरूरी अछि। मानव आबादी के पैघ पैमाना पर पानिक कमी के सामना करय पड़ैत अछि। एक जानकारी के अनुसार 2050 धरि दुनिया के आधा से अधिक आबादी पानिक कमी वाला क्षेत्र में रह के पड़त। एहन क्षेत्रक प्रणाली के तत्काल आवश्यकता अछि जे मानव जाति के ताजा जल तक पहुंच प्राप्त करय में मदद कल जाय।
1: एकदम यदि देखा माना जाए कि हमने के जीवन ला जल बहुत जरूरी है, क्या कि जल है तो हम सब ही, क्या कि हमने के अस्तित्व ही जल से निर्भर है। हमने के संगे संगे पशु पक्षी पौधा सहित सभी के जीवित प्राणी ला पानी की जरूरत रहे है। आ देखा हमने के पृथ्वी पे उपलब्ध जितना पानी है ओकर 97% हिस्सा खारा जल है, मतलब कि वो पिए लायक ना है। अब बचल रहा मीठा पानी के बड़ हिस्सा ग्लेशियर में जमल है, मतलब बर्फ में जमल है, जेकरा से पिए के पानी हमने के रोज के काम ला बस कम से कम 1% से भी जल जो है आसानी से उपलब्ध हो गया।
0: हाँ देखियो निमिषा, यही समस्या के समाधान बरखा जल संचयन है।
1: एकदम
0: ताजा पानी तक पहुँच के सबसे टिकाऊ तरीका है। अकर संचालन के लेल कोनो ऊर्जा के आवश्यकता नहीं होइत अछि। ई कोनो प्राकृतिक संसाधन के खत्म नहीं करैत अछि, अकर विपरीत प्राकृतिक आवास के संरक्षण आ सुरक्षा में मदद सेहो करैत अछि। बरखा जल संचयन एक स्थायी अभ्यास अछि जाहिमे विभिन्न प्रयोजनक लेल बरखा जल के एकत्रित करब, भंडारण करब आ उपयोग करब शामिल अछि। बरखा जल संचयन सिंचाई धुलाई आ पीबो जेहन विभिन्न उपयोगक लेल बरखा के पानी के इकट्ठा करब आ संग्रहित करय के एक शानदार तरीका अछि। उचित योजना आ स्थापना के संग बरखा जल संचयन प्रणाली पानिक कमी आ सूखा के लेल प्रभावी आ मूल्यवान समाधान भ सकैत अछि।
1: एकदम दीदी, देखा दीदी हमने के जो वर्षा जल है, माना जा है कि बरसात के जल सबसे बड़ा मुख्य स्रोत होवे है पानी के।
0: हाँ
1: तो हमने के वन झील नदी ये सब प्राकृतिक तंत्र के संतुलित बना के रखेला और वन जीव के संरक्षण स्वच्छ जल के जरूरत है जे हमने ये बरसात के जल के संरक्षण से कर सके ही।
0: हाँ बहुत से काज कई पानी के खेती बाड़ी तो होबे करत, बाड़ी झाड़ी कपड़ा धोएब, माल जाल के गंदगी धोएब पिय के नहीं और ओकरा रिसाइकलिंग कक पिय जोग बनाओल जाते से हो
1: एक
0: पानी के।
1: हमने के जैसे ना कि छत पे गिर रहल जल जेकरा के हम जमा करके बागवानी कर सके ही, खेती बाड़ी में काम कर सके ही, साफ सफाई कर सके ही, भू जल स्तर के भी बढ़ा सके ही।
0: हाँ।
1: और छत पे पानी जमा करेला अपन छत पे अपने पाइप लगा रहती जे बारिश के पानी में एगो बड़ पानी रखे वाला टंकी लगा सकत थी ओकरा में जाके जमा हो सके है। पानी के साफ रखेला पाइप के आगे जाली या पानी के साफ करेला फिल्टर उपयोग करे के चाहिए। और देखा पानी अगर बरसात के जमा कर जाए एक कुछ बना के पनसोखा वगैरह बना के तो ये हमने के कहा कि भूमिगत जल जो है ओकरा फिर से वो रिचार्ज हो जाए, मतलब फिर से वो भर जाए। घर के बाहर एगो सोखता गड्ढा बना लेती ओकरा में छत के अतिरिक्त पानी ओकरा में डाल सका थी और एकरा से आसपास के कुआं बोरवेल और आसपास के जल स्तर ऊपर उठ जाए है। और ये बिना तो ये ड्रम ये मतलब ड्राम एकरा भी उपयोग करके हमने सब खुला जगह पे या बगीचा में रख के सीधा सीधा बारिश के पानी जमा कर सके है। और खेती बाड़ी में हमने सब बना सके तालाब बना सके है जेकरा में हमने सिंचाई ला पानी के उपयोग कर सके है।
0: देखियो नगर पालिका जल आपूर्ति पर अपन निर्भरता कम कैल जा सकैत अछि आ सबसे बढ़ कर ई भेल कि पानिक संरक्षण में मदद कैल जा सकैत अछि। एहि तरह पानिक बचत कैला सँ गर्मी के दिन में पानिक कमी के समस्या सँ निपटल जा सकैत अछि। भूजल स्तर में सुधार लगातार घटैत जल स्तर के रोकब आ हैंड पंप व ट्यूबवेल सब में पानि बनाकर राखे में मदद भेटैत अछि। पानिक तेज बहाव के नियंत्रित कर माटिक कटाव के कम कैल जा सकैत अछि। एहि तरह बरखा जल के संरक्षण कैल जा सकैत अछि।
1: तो पानी के बचाए थी वर्षा जल के इकट्ठा करथिन। तो इतना निमन का है ना बातचीत होल।

का संगीत अपनी शुरुआत करेगी ई लोक भजन से। आज के कलाकार हथिन शंभू राम और साथी।

0: कलाकार छे शंभुराम आहुंडक साथी हिनका सा आगू से हो गीत सुनल जाए अखन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी भेंट वार्ता सुनब जकर विषय अछि मधुमेह एवं इससे खान पान संबंधी सावधानी। भेंट वार्ताकार छथि डॉक्टर अंगद कुमार आ हुनका सँ भेंट कऽ रहल छथि दिव्या। तो सुनी भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, आज के समय में बीमारियां बहुत ही तेजी से फैल रही हैं और खासकर मधुमेह की बात करें तो बहुत ही तेजी से और कम उम्र के लोगों में भी फैल रहा है। तो आज इसी विषय पर बात करते हैं डॉक्टर अंगद कुमार से, जो कि पीएमसीएच के मधुमेह हार्मोन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो अंगद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद दिव्या जी।
1: जी सर, तो हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमेह क्या होता है और इसे कितने तरह का होता है।
2: मधुमेह, जिसे आम भाषा में हम लोग डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं, ये मेनली दो तरह का होता है,
1: जी,
2: टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज। अब मधुमेह होता क्यों है? मधुमेह में दो तरह की प्रॉब्लम होती है, या तो आपके शरीर में इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या आपके शरीर ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है।
1: जी।
2: यदि आपके शरीर इंसुलिन बना तो रहा है लेकिन इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उसे हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ये जनरली एडल्ट लोगों में पाई जाती है।
1: जी।
2: टाइप 1 डायबिटीज होती है, उसमें जन्म से ही इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और ऐसे लोगों में हमें इंसुलिन का लेना पड़ता है। इसके अलावा आजकल एक चीज देखा गया है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, ये भी काफी कॉमन होते जा रहा है।
1: जी सर, तो जैसे आपने जन्म से कहा, तो क्या छोटे, मतलब कि जो शुरुआती बच्चे हैं, नवजात हैं, उनको जो डायबिटीज होता है, क्या उसे ही सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं?
2: जी, टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में पाया जाता है 1-2 साल के बाद, चूंकि ये ऑटोइम्यून कंडीशन है तो जन्म के बाद ऑटोइम्यूनिटी डेवलप होने में 1-2 साल लगती है। तो जनरली जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जिसमें इंसुलिन नहीं होता या होता है डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो 1 साल के बाद से जनरली 1-15 साल के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज पाई जाती है।
1: जी अच्छा, तो उन्हें टाइप 1 डायबिटीज होता है। जी, और मैंने उसे टाइप 2 डायबिटीज कहा था। टाइप 2 डायबिटीज बड़े लोगों में होता है।
2: जी,
1: तो सर ये मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पता करें कि हमें मधुमेह हुआ है या हमें कुछ परेशानी हो रही है?
2: जी, मधुमेह के मरीजों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है, बार बार पेशाब लगना, बहुत जोर का भूख लगना, बहुत खाते हुए भी वजन का नहीं बढ़ना, बार बार घाव होना, उसके अलावा जनांगों पे घाव हो जाना, उसे धुंधला दिखना, झिंझनी होनी, नसों में तनाव होना, ये सब मधुमेह के लक्षण हो सकते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं, मैक्सिमम में मोर देन 50-75% लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज है। रूटीन चेकअप के लिए आते हैं और हम अक्सर देखते हैं कि मरीजों में 400-500 शुगर आ रही है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि इनमें डायबिटीज बहुत धीरे धीरे डेवलप करती है।
1: जी, मतलब शुरू में उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मुझे कोई परेशानी।
2: जी,
1: सर किन लोगों में मधुमेह का खतरा ज्यादा होता है?
2: जैसा कि हमने कहा कि डायबिटीज बहुत लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, तो कुछ ग्रुप है जिन्हें हमें टारगेट करना है कि इनमें डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा है, जैसे कि मोटे लोग, वैसे लोग जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, वैसे लोग जिनका ओबेसिटी की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री रही हो मोटापे की, डायबिटीज की, वैसी महिलाएं जिनको या तो प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज हो चुका है, पीसीओडी हो चुका है, इन लोगों में बहुत हाईली चांसेस है कि आगे चल के डायबिटीज होगी। इसके अलावा यदि आपके माता पिता को, आपके भाई को, आपके नाना नानी तरफ डायबिटीज है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको आगे चल के डायबिटीज हो। महिलाओं में, जिन महिलाओं को ओबेसिटी है, पीसीओडी की बीमारी है, बहुत हाई चांसेस है कि आगे चल के उनको डायबिटीज होगी।
1: जी सर, तो क्या मतलब मधुमेह के मरीजों को कितना और मतलब कैसे व्यायाम करना चाहिए, ये भी आप बताना चाहेंगे?
2: मधुमेह के मरीजों में व्यायाम एकदम करना है, डेली करना है। जो हमारी अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, उसने कहा है कि कम से कम डेली 30-45 मिनट व्यायाम कर लेनी चाहिए।
1: जी।
2: ये व्यायाम हम कभी भी कर सकते हैं, बेहतर होगा कि सुबह में व्यायाम करें, पर यदि आप अपने काम काज के वजह से सुबह में समय नहीं निकाल पाते हैं तो दोपहर में, शाम में कभी भी व्यायाम कर सकते हैं। इसके अलावा अपने ऑफिस ड्यूरेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखें कि आप लंबे समय तक नहीं बैठे, हर 30 मिनट के बाद कम से कम 5 मिनट का ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं।
1: जी।
2: कोशिश करें कि यदि आप अपने ऑफिस स्पेस में हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। अपने नित्य कार्य के लिए अगर आप जाते हैं, सब्जी बाजार लेने जाते हैं, तो कोशिश करें बाइक के बजाय पैदल चलने की कोशिश करें। इसमें भी दूसरी सबसे जरूरी बात है कि खाने के बाद

0: यदि आप डायबिटीज के मरीज हैं तो 5 से 10 मिनट का व्यायाम जरूर कर लें। ऐसा इसलिए, खाने के बाद हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्पाइक होता है और यदि आप खाने के बाद व्यायाम करते हैं तो जो स्पाइक होता है वो घट जाता है।
1: जी सर, मेन है कि खाने के बाद तो किसी का भी मन करता है थोड़ा आराम करने को,
0: जी,
1: दस
0: जी,
1: मिनट का, लेकिन जी लेकिन है कि अब टहलना है तो ये तो मुश्किल है। और सर, खान पान का कैसे सर ध्यान रखें?
0: डायबिटीज में सबसे जो भ्रांति फैली हुई है कि डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना है क्या नहीं
1: जी
0: खाना है, सारी कंसल्टेशन खत्म होने के बाद मरीज जाते जाते गेट पे पूछता है कि सर खाना क्या है।
1: जी सर,
0: तो एक मोटा मोटी बात है कि डायबिटीज के मरीजों में क्या क्या नहीं खानी है। जो मीठी चीजें हैं जैसे चीनी हो गया, गुड़ हो गया, शक्कर हो गया, आइसक्रीम हो गया, इन सारी चीजों से परहेज करनी है। ये मैदे की चीजें हम लोगों को अवॉइड करना है, व्हाइट राइस नहीं खानी है, व्हाइट ब्रेड नहीं खाना है, मैदा, पास्ता, मैगी नहीं खानी है, किसी भी तरह का एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, किसी भी तरह का फ्रूट जूस, ये सब को नहीं लेना है। वैसे फूड जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसी चीजों को समझ लिया जाए कि खाने के बाद शुगर कितनी तेजी से बढ़ता है, तो कुछ फ्रूट्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होते हैं जैसे आम हो गया, केला, लीची हो गया, तो ऐसे फलों से हमें परहेज करना चाहिए। फिर हम खा क्या सकते हैं?
1: जी सर,
0: हरी पत्तीदार सब्जियां खा सकते हैं, जितना मोटा अनाज खाएं उतना बढ़िया है। खाने में हम लोग कोशिश करें कि ऐसे फल जिनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, जैसे सेब, अमरूद, पपीता, नारंगी, नाशपाती, कीवी, जामुन, इसका सेवन कर सकते हैं।
1: जी
0: यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्शन कंट्रोल। अगर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट को भी अगर हम ज्यादा खा रहे हैं
1: जी,
0: या रोटी को ही हम ज्यादा खा रहे हैं, मोटे अनाज को भी ज्यादा खा रहे हैं, तो ये भी शुगर बढ़ाएगा। तो अमाउंट कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है।
1: जी सर, बहुत सारे मतलब आपने कहा कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है, तो बहुत सारा आता है कि शुगर फ्री है, मिठाई भी बहुत सारे शुगर फ्री रहते हैं, आइसक्रीम शुगर फ्री रहते हैं, तो क्या उनका सेवन किया जा सकता है?
0: जी, ये भी बहुत बड़ी भ्रांति। और अभी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं देख रहा था कि एक कंपनी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसकी आइसक्रीम है और उन्होंने शुगर फ्री लिखा है।
1: जी
0: जब आप जूम करेंगे तो देखेंगे कि शुगर फ्री टीएम ट्रेडमार्क, जिसका मतलब वो शुगर फ्री नहीं है, उनके कंपनी का नाम शुगर फ्री
1: है।
0: तो ये इस मार्केटिंग गिमिक में हम लोग को नहीं फंसना है। शुगर फ्री का यही मतलब है कि डायरेक्ट एडेड शुगर नहीं है।
1: जी,
0: इनमें इनडायरेक्ट शुगर बहुत ज्यादा होते हैं, तो कोशिश करना है कि ऐसी चीजों का परहेज हमें करना ही करना है। शुगर फ्री के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, आजकल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए हैं, स्टीविया का नाम हम लोग जानते हैं,
1: जी
0: ये लिया जा सकता है, इसको भी लेकिन नियमित नहीं लेना है और बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया जाए।
1: जी सर, बहुत सारे मतलब पेशेंट हैं तो वो चाहते हैं कि मेथी फूला के, मतलब तरह तरह की भ्रांति है कि मेथी फूला के पीजिए, कलौंजी लीजिए, भिंडी को फूला के लेना है, एलोवेरा लेना है, तो क्या इन सब से कुछ फायदा होता है?
0: हाँ, इसकी फायदा की जो बातें हैं, साइंटिफिक स्टडी बहुत स्ट्रांग नहीं है।
1: जी,
0: इनके जितने भी पेपर हैं लिमिटेड हैं, बहुत कम मरीजों में देखे गए हैं। नो डाउट इनमें कुछ एल्कोलाइड होते हैं जो ग्लूकोज को कम करते हैं।
1: जी,
0: जैसे हम बात करें शुगर की दवा मेटफॉर्मिन, तो इसका जो आइसोलेशन किया गया था एक प्लांट से किया गया था।
1: जी,
0: तो एक्टिव कंपाउंड हम लोग को पता है कि मेटफॉर्मिन है।
1: जी,
0: ऐसे हैं बहुत सारे एल्कोलाइड है जो थोड़े से शुगर कम करते हैं, लेकिन कहानी क्या है कि इसका कोई स्टडी है नहीं, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं लेनी है और केवल इस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। डॉक्टर के बताए अनुसार दवा खाएं, एक्सरसाइज करें और खान पान में परहेज रखें, इन तीनों का डेफिनेट रोल है। और इन तीनों से अगर आप परहेज करके केवल उस पे डिपेंडेंट हो रहे हैं तो आप अपने आप को खतरा में डाल रहे हैं।
1: सिर कई बार देखा जाता है कि मधुमेह के रोगी मानसिक रूप से भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सही खान पान और दवा के बावजूद कभी कभी शुगर बढ़ जाता है, तो क्या करें?
0: जी, ये बहुत ही बाई डायरेक्शन रिलेशनशिप है। मधुमेह के मरीजों में तनाव बहुत होता है और ऐसा देखा गया है कि ऐसे मरीज जिनको तनाव है उनको आगे चल के मधुमेह होने के खतरे बहुत ज्यादा है। इसके दो कारण है। यदि व्यक्ति जब भी तनाव में रहता है तो उसके बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है, ये हार्मोन शुगर के एंटी काम करता है। सिमिलरली तनाव वाले मरीजों में जो कुछ दवाएं चलती हैं एंटीसाइकोटिक्स, वो शुगर बढ़ाती हैं। तो वैसे लोगों में देखा गया है कि शुगर बढ़ने की संभावना काफ़ी रहती है। फिर क्या करें? आप कोशिश करें कि 8 घंटे की प्रॉपर नींद लें। अगर आप तनाव के मरीज हैं तो तनाव की दवाओं को नियमित रूप से खाएं। यदि अगर आप समय पे नहीं सोने जा रहे हैं या आपका स्लीप पैटर्न गड़बड़ है, जैसे कि आप रात को जग रहे हैं दिन को सो रहे हैं, उससे भी बॉडी में कोर्टिसोल बढ़ेगा और आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। ऐसे लोगों की हमारी सलाह है कि आप योगा करें, प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करें, जिससे आप तनाव अपने बॉडी में कम कर सकें।
1: सर, शुगर के मरीजों में देखा गया है कि कई बार दिन भर काम करने के बावजूद रात में ठीक से नींद नहीं आती है, तो दिन में समय मिलता है तो वो तो दिन में सो जाते हैं, तो क्या इससे उसका प्रभाव पड़ेगा?
0: कोशिश करनी चाहिए कि दिन को बहुत लंबा देर की नींद नहीं लेनी चाहिए। रीजन उसका दो है।

0: जी
1: कि एक अगर आप दिन को लंबे समय सो लेंगे तो रात को आप बहुत देर तक जगे रहेंगे।
0: जी
1: और जो हमारे नेचर की व्यवस्था ऐसी की गई थी कि रात सोने के लिए बना है,
0: जी
1: उस समय हमारे जितने फिजियोलॉजिकल इवेंट्स हैं वो सारे लो पे रहते हैं।
0: जी
1: कोर्टिसोल बॉडी में लो हो जाता है, आपके हार्ट रेट लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो रहती है। अब होती उल्टा, अगर आप रात को जगने लगे तो होगी क्या कि रात को आपका बीपी शूट करेगा, कोर्टिसोल भागेगा और ये लॉन्ग टर्म में आपको चल के डायबिटीज बनाएगा, आपको हार्ट अटैक की खतरा बढ़ जाएगी, आपको किडनी की समस्या होने की
0: जी
1: रिस्क बढ़ जाएगी।

0: पेट फूलना, कहीं मितली आना, सर में दर्द, तो इन सब में क्या कर सकते हैं? क्या बार बार डॉक्टर से मिलना ही?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पहले आप कोशिश करें कि जो घरेलू नुस्खा है, जैसे मेटफॉर्मिन नोटोरियस है गैस की शिकायत करने की, जो सॉल्ट होती है उससे बहुत लोग को गैस की प्रॉब्लम होती है, ऑलमोस्ट 20% लोगों में पाई गई है
0: जी।
1: अच्छी चीज क्या है कि मैक्सिमम लोग में समय के साथ ही साइड इफेक्ट अपने आप चला जाता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मेटफॉर्मिन आप ले रहे हैं तो कोशिश करें उसे खाने के बाद लें, खाने के बाद थोड़ा टहल लें, बहुत ज्यादा तेल मसाला खाने से परहेज करें, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो मेटफॉर्मिन की साइड इफेक्ट है, पेट वाली साइड इफेक्ट, वो जनरली ठीक हो जाती है। इसके अलावा एक जो भ्रांति है कि मेटफॉर्मिन किडनी खराब करती है और बाकी चीजें खराब करते हैं, तो उल्टा है। यदि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, लंबे समय तक अगर आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड रहती है, तो आपको किडनी की समस्या होगी, हार्ट अटैक की समस्या होगी। आपके इस माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में आज भी आँख खराब होने का, हार्ट अटैक आने का, किडनी खराब होने का, असमय पाँव काटे जाने का सबसे कॉमन कारण डायबिटीज है
0: जी।
1: तो इसे हल्के में न लिया जाए
0: जी। बिल्कुल, जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें और उसे भी अमल भी करें। ऐसा नहीं है कि भाई मिलना है और दवा लेना है, अपने भाई खान पान और सेहत का भी ध्यान रखना है।
1: जी बिल्कुल दीपा भाती जी।
0: तो अभी हमने जाना कि मधुमेह के रोगियों की क्या पहचान होती है, कैसे रहना चाहिए, खाने पीने में क्या परहेज होना चाहिए। तो सर, यहाँ आकर मधुमेह के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद दिव्या भारती जी, जो आपने मुझे आमंत्रित किया, धन्यवाद।
2: खान पान संबंधित जान सावधानी और भेंट वार्ता कर रही डॉक्टर अंगद कुमार, इनका से बातचीत कर रही थी मैं दिव्या भारती। तो दीदी दोनों जन के ये भेंट वार्ता ला बहुत बहुत
3: धन्यवाद। हाँ, अब जितना धो जाए।
2: हाँ जरूर दीदी, तो चलो सुनल जाए शंभू राम और उनका साथी से ये गीत।

0: som har blivit det här samburam av unga sati ke avas mein
1: ha hinka se kheti gasti mein suna ab chopalak samay sampan badhal ich kani kalak bal tum sab kheti ki baat karo
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: हमने के अभी तो बाजार में खूब आम मिल रहा है और आज के खाना अभी तो बिना आम बिना अधूरा रहा है
1: देखियो आम के सब फल के राजा कहल जाए छे लेकिन आम के विभिन्न प्रकार के जे किस्म खाएबे ओइसे पहिने आम के पेड़ लगावे के चाहिए
0: एकदम
1: और ताहू में उन्नत
0: एकदम
1: उन्नत किस्म के आम के खेती से अधिक कमाई करे के लिए उन्नत किस्म आ नव तकनीक के प्रयोग जरूरी है बिहार आ उत्तर प्रदेश जेहन क्षेत्र में दशहरी लंगड़ा आम्रपाली मल्लिका आ चौसा जेहन उन्नत किस्म सबसे बेसी लोकप्रिय है ना आम खरीदे छी तो आ अधिक मुनाफा सेहो दैत है आम के पौधा रोपे के तरीका एना है बरसात के मौसम आम लगावे के उपयुक्त समय है जेना अखन बरसात आबि गेल अछि आम के कलम लगावे से पहिने किछु बात के ध्यान राखब जरूरी अछि अप्रैल आ मई माह में 1 मीटर लंबा आ 1 मीटर चौड़ा एवं 1 मीटर गहीर गड्ढा खोज लेल जाइत अछि मई आ जून अप्रैल में गड्ढा से गड्ढा के दूरी 10 मीटर राखल जात प्रत्येक गड्ढा में गोबर के सरल खाद किलो के अंदाज से एक गड्ढा में 1 किलो करांज के खल्ली 2 किलो सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास 0.5 किलो लिंडेन धूल 100 ग्राम नीक जका मिला कर डाली दी सब दवाई के मिला के गाछ लगावे से पहले ओई गड्ढा में डाल दी अकर बाद आम के वृक्ष के रोपण बरसात में करी आरंभ में प्रतिदिन सिंचाई तब तक दी जावत धरि कलम के जड़ माटि में लाग नहीं जाए आम के कोनो प्रभेद होए मुदा बगीचा के स्वस्थ रखे के लिए खरपतवार के नियंत्रण जरूरी है मानसून के पहिने घास निकाल दी आ दोसर बेर अक्टूबर माह में उन्नत किस्म अपन क्षेत्रक अनुसार चयन करब जरूरी है

0: मध्यम समय में पाकव वाली दशहरी, लंगड़ा आ आम्रपाली। आम्रपाली प्रति एकड़ सबसँ बेसी उत्पादन दैत अछि। पेड़ के सही पोषण देवा के लेल समय पर खाद दैत रही। एहि तरह आमक उन्नत प्रभेद के खेती करसँ किसान भाई के अधिक लाभ हेतन।
1: वाह, बहुत बढ़िया बात बतानी दीदी कि कैसे खेती कयल जाए। हाँ। आम के बागवानी, और आम के बागवानी से लाखों लोगों के रोजगार मिल रही है दीदी, और ये देश के समृद्धि, प्रसुरता और मिठास के प्रतीक मानल जाए हैं आम के। और हमी के जैसे देश में कई तरह के हाइब्रिड किस्म और उन्नत किस्म है जो बेहतरीन स्वाद और रोगन से लड़े के क्षमता ला जानल जाए। और हमी के पारंपरिक व्यावसायिक रूप से उन्नत किस्म में जैसे कि अभी बिहार राज्य की बात करी तो दुधिया जो मालदा है ये सबसे नीमन किस्म मानल जाए है, जो कि पटना के दीघा क्षेत्र के अपन खास जगह पर होवे है, जो दीघा में दुधिया चमक, पतला गुठली और बेमिसाल मिठास ला जानल जाए है।
0: अच्छा।
1: जैसे कि जरदालू आम। हाँ। और लंगड़ा के नाम भी सुनी हो दीदी, जो बिहार के भागलपुर और उत्तर प्रदेश से मिले हैं। जरदालू आम के GL टैग भी प्राप्त है। ये अपन अनोखा और मनमोहक खुशबू और हल्का पीला रंग वाला होवे हैं, और बिना रेशा वाला रसीला और गुद्दा भर होवे हैं। चौसा जो बक्सर और ओकर आसपास क्षेत्र में पाल जाए है, चौसा आम जून जुलाई के महीना में पक जाए। ये बहुत ही ज़्यादा मीठा और गाढ़ा रस वाला ये किस्म होवे हैं। और गुलाब खस खास जो होवे हैं ये पूर्णिया और कटिहार में ज़्यादा उपलब्ध है। ये आम गुद्दा के रंग हल्का केसरिया होवे हैं, इनमें गुलाब के फूल जैसा भिन्नी भिन्नी खुशबू आवे हैं।
0: अच्छा।
1: एक रंग के देखे में भी बहुत ही आकर्षक लगे। ये किस्म भी बहुत खास होवे हैं। और बम्बैया और कलकतिया भी हम के
0: सब बिहार के नामी आम है।
1: बिहार के हैं ये पाँच गो भी बिहार की किस्म है दीदी, जो बम्बैया आम के जो सीजन के शुरुआत मई में ही हो गए हैं। जबकि कलकतिया आम के उपयोग खास करके एकरा के सेक और अचार बनावे ला बर्फ बना के करते हैं।
0: आम के प्रभेद बहुत है, चाहे के सुकुल ये सब बिहार के नामी आम बम्बई छी।
1: और देखा है दशहरी जो ये किस्म जो है भारत उत्तर भारत के में जाना जाए, ये बिना रेशा वाला और बहुत ही मीठा होवे हैं, जो बाजार में सबसे ज़्यादा बिके वाला किस्म हो गए हैं। और हम हाइब्रिड किस्म की बात करें दीदी तो आम्रपाली जो कि दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनावल जाए, ये सबसे बौनी किस्म मानल जाए। ये सघन बागवानी ला सबसे नीमन किस्म हो गए हैं। एक फल मीठा और गहरा नारंगी गुद्दा वाला होवे हैं। और मल्लिका ये भी किस्म नीलम और दशहरी के मेल से बनल है। हाइब्रिड ये किस्म होवे हैं जो नियमित रूप से फल दे रहे हैं। एक फल आकार में बड़ और कम रेशा और भरपूर मिठास देने वाला होवे हैं। अंबिका, अरुणिका, अरुणिमा ये सब किस्म भी हाइब्रिड किस्म है, जेकर मांगे बाजार में बहुत हैं। तो दीदी ये तो आम के किस्म होलो जो बहुत ही उन्नत और बढ़िया प्रभेद वाला है। तो जब हमने सब खेती बाड़ी करी तो देखा हमने के क्या मिले हैं, हमने के बहुत बहुत हर तरह का लाभ मिले हैं। और हम इस मन करें कि जैसा जब लाभ मिले तो बढ़िया से एगो लाभ भेटाए, लाभ में गीत ना न हो तो ये हो ना सके। सुना जाए ये गीत शंभुराम और उनका साथी के आवाज़ में।

0: ई रहल झूमर गीत शंभुराम ओमकर साथी के आवाज में। अरे दी जब जितना निमन गीत ते वो हमर किसान लोगन ला इठो वार्ता के भी बढ़िया होना चाहिए।
1: हाँ।
0: और खेती बाड़ी में अभी देखा जैसे आम अमरुद के अभी लगा सके ही, कहे कि बरसात के मौसम है, अरे आराम से ओकर खेती कर जा सके, बागवानी कर जा सके। ओकर बाद देखो देखभाल के भी जरूरत पड़े है, तो आम अमरुद के बाग के कैसे देखभाल कर जाए एक भी जानकारी हम सबके होबे के चाहिए। तो आज यही से संबंधित एगो वार्ता भी ली है, आम अमृत के बाग की देखभाल, और वार्ता करा थी डॉक्टर रंजू कुमारी।
1: तो सुन जाए ये वार्ता।
2: आम और अमरूद भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय फल है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। अमरूद को कई स्थानीय नामों जैसे रामफल, बीही, लताम, साफली इत्यादि से जाना जाता है। यह फल स्वादिष्ट होने के साथ ही कई पोषक तत्वों जैसे विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। व्यावसायिक तौर पर इसकी खेती बड़ी लाभकारी है। अधिक फलन और आय के लिए बागों की देखभाल एवं वैज्ञानिक प्रबंधन जरूरी है। बाग की देखरेख के लिए पेड़ की कटाई छटाई, उचित सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और खाद देना महत्वपूर्ण होता है। पौधा लगाने के बाद आम का ग्राफ्ट 4 से 5 वर्षों में फलना शुरू हो जाता है। आम में प्रायः साल में एक बार फल आता है। अमरूद में पौधा लगाने से 2

से 3 साल बाद ही फल आना शुरू हो जाता है और किस्म के अनुसार साल में 2 से 3 बार फल लगते हैं, जिसे अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार कहा जाता है। बेहतर पैदावार के लिए साल में केवल 1 या 2 बहार से फल लेना बेहतर होता है। फूल आने के लगभग 120 से 140 दिनों बाद फल पकना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, हम इन फल वृक्षों में पोषक तत्व का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कर अधिक उपज ले सकते हैं। आम के बाग लगाने के 1 साल बाद जुलाई अगस्त में पौधों में खाद एवं उर्वरक देना चाहिए। 1 वर्ष बाद 10 किलो कंपोस्ट, आधा किलो खल्ली, 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम SSP एवं 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का इस्तेमाल करें एवं उम्र के अनुसार प्रतिवर्ष खाद एवं उर्वरक की मात्रा प्रति पौध 6 किलो कंपोस्ट, 50 ग्राम 500 ग्राम कंडी की खल्ली, 200 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम SSP और 200 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास की दर से बढ़ानी चाहिए। 10 से 11 वर्षों के उपरांत जब वृक्ष पौध हो जाए तो प्रति वर्ष जून जुलाई में फल तोड़ने के उपरांत प्रति वृक्ष 50 से 60 किलो कंपोस्ट, 5 किलो खल्ली, 2 किलो यूरिया, 5 किलो SSP और 2 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास वृक्ष की परिधि के थोड़ा भीतर की ओर रिंग बनाकर व्यवहार करें। फलदार अमरूद में प्रति पेड़ हर साल 30 से 40 किलोग्राम गोबर की खाद, 300 से 400 ग्राम नाइट्रोजन, 250 से 350 ग्राम फास्फोरस और 250 से 350 ग्राम पोटास का प्रयोग करें। फलों के आकार एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फल आने पर पोटेशियम खाद की ज़्यादा मात्रा प्रयोग करना चाहिए। वृक्षों में गर्मी में सिंचाई देना आवश्यक होता है। नए स्थापित बाग के लिए हर 2-3 दिन में पानी दें। प्रारंभिक अवस्था में थाला वाला बनाकर सिंचाई करनी चाहिए। बड़े वृक्ष में पूरे बाग की सिंचाई करनी चाहिए। फूल आने के समय अत्यधिक सिंचाई से फूल झड़ने लगते हैं और फल कम लगते हैं। आम में फल जब मटर के दाना के आकार का हो जाए उस समय सिंचाई करने से फलों का गिरना कम हो जाता है। शुरुआती दौर में बाग की 3 जुताई करें, पहला वर्षा के समय, उसके बाद जून में, दूसरा वर्षा के ठीक बाद अक्टूबर में, तीसरा बसंत ऋतु में के आरंभ में यानी जनवरी में। इससे बहुत लाभ होता है। पेड़ के आसपास के क्षेत्र को हर समय खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। एक भारी मल्च के साथ खरपतवार नाशी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद के पेड़ ठंड के मौसम में पाले से के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं, खासकर जब वे छोटे होते हैं। कुछ सुझावों जैसे कि फ्रॉस्ट कवर का प्रयोग करके या पेड़ के आधार के चारों तरफ इंसुलेशन के लिए मल्च लगाकर छोटे पेड़ों के बाग को बचा सकते हैं। इससे मिट्टी की गर्माहट बरकरार रहती है। पेड़ की कटाई छटाई सर्दियों के अंत में या बसंत के शुरुआत में नई वृद्धि शुरू होने से पहले करनी चाहिए। छटाई के लिए पहले सूखी, क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त शाखाओं को काटना चाहिए। अमरूद में बेहतर हवा एवं धूप के संचार के लिए केंद्र की शाखा को काटने के साथ साथ अंदर की ओर बढ़ने वाली शाखाओं की छटाई करनी चाहिए। पुराने और कम उत्पादक पेड़ों की जमीन से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक काट देना चाहिए। आम के वृक्षों में मंजर लगते ही कीड़े मकोड़ों का प्रकोप बढ़ जाता है। कीड़ों में मधुआ, दहिया एवं फल मक्खी का प्रकोप आमतौर पर होता है। मधुआ के नियंत्रण के लिए मंजर निकलते समय दाय में थोएट 35 EC या थायोडोन दवा का 1 ml प्रति लीटर की दर से प्रति पेड़ 3 बार छिड़काव करें। पहला छिड़काव फूल निकलने से पूर्व, दूसरा फूल खिलने से पहले एवं तीसरा छिड़काव 1 महीने के बाद करें। दहिया के कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पाराथियन 2%, धूल का 5 किलो प्रति पेड़ की दर से पेड़ के चारों तरफ मिट्टी में दिसंबर के प्रारंभ में मिलाएं। जमीन की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई तक पेड़ की धर पर ऑस्टिको का 10 सेंटीमीटर चौड़ी लेप लगा देने से पेड़ पर चढ़ने वाले शिशु कीट सटकर मर जाते हैं। अल्काथीन की 20 से 25 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी भी लगा सकते हैं एवं उसे गीली मिट्टी से चारों तरफ दवा देनी चाहिए, जिससे शिशु कीट ऊपर ना चढ़ पाए। फर्म मक्खी के नियंत्रण हेतु मालाथियन दवा को 1 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर अप्रैल से मई के बीच 15 से 20 दिनों के अंतर पर
तीन से चार बार छिड़काव करें। आम में लगने वाले कजरी फफूंदी से बचाव के लिए घुलनशील गंधक के 2% घोल का छिड़काव करें। उकठा रोग के नियंत्रण हेतु जिनेब 0.2% या बोर्डो मिक्सर का प्रयोग करना चाहिए। एंथ्रेक्नोज से बचाव के लिए साफ या कंपेनियन नामक दवा का 0.2% घोल बनाकर इस्तेमाल करना चाहिए। अमरूद में लगने वाले कीटों में फल मक्खी, एफिड्स और

0: स्केल कीट है। अक्सर देखा जाता है कि 10 से 15 साल होते होते अमरूद का बाग सूखा रोग जिसे विल्ट कहते हैं की वजह से उजड़ जाता है। अमरूद के पेड़ की जड़ जब चोटग्रस्त होता है तो विल्ट रोग की संभावना अधिक हो जाती है। बरसात के मौसम में अगस्त सितंबर के दौरान अधिक वर्षा इस रोग को फैलने में सहायक होती है। जल जमाव की स्थिति में इसे और भयावह बना देती है। तियों का मुरझाना, पीला पड़ना, विकास का रुकना, संवही ऊतकों का भूरा होना, शीर्ष मरण जिसे डायबैक इत्यादि इस रोग के लक्षण होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मानसून से पहले कार्बेंडाजिन नामक कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए। रोग लगा हो इस परिस्थिति में रोको एम फफूंदी नाशक 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बनाकर सभी पेड़ की 4 जड़ों की मिट्टी को भिगा देना चाहिए। एक पेड़ को भिगाने के लिए कम से कम 20 लीटर घोल की आवश्यकता होती है और 20 दिन के बाद इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएं। संक्रमित शाखाओं की छटाई करनी चाहिए। ट्राइकोडर्मा का प्रयोग जैव नियंत्रण के रूप में किया जा सकता है। अमरूद के फल यदि अधिक लग रहे हों तो उसका विरलीकरण यानी संख्या कम करना आवश्यक होता है, जिससे फल बड़े आकार के और गुणवत्तापूर्ण होते हैं। जब अमरूद के फल कंचे के आकार के हो जाते हैं तो छोटे एवं अविकसित फलों को धीरे से हटा देना चाहिए और शेष फल के बीच लगभग 4 से 5 इंच की दूरी रखनी चाहिए। आम में जिस वर्ष फूल ना आए या फल कम लगे उस वर्ष GA जिसे जिब्रेलिक एसिड 300 ppm का छिड़काव अक्टूबर के महीने में करना चाहिए। यह उपचार नियमित फलन में सहायक होता है। पैक्लोबुट्राजोल नामक दवा जो बाजार में कल्टार नाम से मिलता है का प्रयोग आम के फल को नियमित करने में लाभकारी होता है। इसका उपयोग सितंबर के अंत में या अक्टूबर महीने में करनी चाहिए। इसकी मात्रा वृक्ष की आयु एवं उसके डालियों के फैलाव के अनुसार तय की जाती है। वृक्ष फल फैलाव यदि 3 मीटर हो तो 15 ml दवा की आवश्यकता पड़ती है। इसका उपयोग वृक्ष के चारों ओर 8 से 10 इंच गहरा छेद बनाकर वांछित मात्रा में डालना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों बाग का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन एवं देखभाल करके अधिक उपज ले सकते हैं एवं आमदनी बढ़ा सकते हैं।
1: अभी हमने सब सुन रहे हैं वार्ता। वार्ता के विषय है आम अमरूद के बाग की देखभाल और वार्ताकार हैं डॉक्टर रंजू कुमार।
2: इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के अंत में एक और गीत भजन है।
1: हाँ हाँ जरूर।
2: तो सुनी बरसाती गीत
1: सुना जाए शंभू राम और उनका साथी।

0: आटा भी हमने सबसे मिल ली थी, सब राम उनका शादी से इन लोग की बरसात गीत रहा तब इनका के धन्यवाद और हम सबके चले के समय हो गए। तो प्रणाम चंपा दीदी।
1: हाँ प्रणाम निमिषा।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: पशुपालक भाई बहन, अत्यधिक गर्मी में पशुओं के रख रखाव का कृपया ध्यान रखें।
2: पशुओं को लू से बचाने के लिए छायादार जगह पर रखें। पशु घर को ठंडा रखने के लिए जूट की टाट लटकाकर उसे गीला रखें। उन्हें दिन में 2 से 3 बार नहलाएं, 3 से 4 बार ठंडा और साफ पानी पीने को दें। खाने में अजोला घास, चोकर और जौ की मात्रा बढ़ा दें। चराने के लिए सुबह जल्दी और शाम को देर से भेजे। लू लगने पर नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें।
1: डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
4: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
3: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। अब समाचार विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। पटना में पार्टी प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पारिवारिक कारणों से उन्होंने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है।
1: मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में NDA के प्रत्याशी बनाया था, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा।
0: इस बीच भाजपा ने उपचुनाव में नीरज कुमार सिन्हा को नया उम्मीदवार बनाया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया।
2: मैं शुरू से मैं बूथ मंत्री बना, बूथ अध्यक्ष बना, महामंत्री बना और मैं 2 बार से मंडल अध्यक्ष रहा और जिला उपाध्यक्ष का भी कार्य मैं युवा मोर्चा में किया हूँ। जीत तो बहुत जबरदस्त होने जा रही है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर और हमारे आम जनता हम लोग बांकीपुर नमन को बहुत बहुत आशीर्वाद देने जा रही है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो उनके कार्य को देख करते हुए आज लोग यहाँ पे देंगे।
0: गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 13 जुलाई तक निर्धारित है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना में NDA के घटक दलों की बैठक हुई। बैठक में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, विधान पार्षद और जिला अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। बैठक में

0: सरकार के कार्यों की समीक्षा, घटक दलों के बीच बेहतर समन्वय और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। भाजपा के श्रेयसी सिंह ने बताया कि बैठक में राज्य के विकास पर भी चर्चा हुई।
1: और निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बैठक थी। किस तरह से बिहार के विकास को सरकार और संगठन के समन्वय को बनाया जाए।
0: लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और मंत्री संजय सिंह ने बताया कि बैठक में जिले के प्रभारी मंत्रियों को एनडीए के घटक दलों के जिलाध्यक्षों के साथ महीने में एक बार बैठक करने को कहा गया।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप लोग जितने भी सहयोग शिविर सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को कहा है कि आप लोग अपने तरफ से सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का काम हो। वहीं उन्होंने माननीय मंत्री को कहा है कि जब आप जितने प्रभारी मंत्री हैं आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आप लोग भी अपने जो जिलाध्यक्ष जी हैं एनडीए के जिलाध्यक्ष जी उनके साथ बैठे और वहां की उनकी जो समस्याएं हैं जो सहयोग शिविर में नहीं हो पाती है उसके ऊपर की जो समस्या है उसको आप लोग समाधान करने का काम करें। उसके बावजूद अगर नहीं होता है तो जो संबंधित पदाधिकारी हो उनको बुलाकर आप लोग निर्देश दें।
0: बैठक में आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उपराष्ट्रपति कयाची में विधायकों के लिए आयोजित हो रहे 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर कुमार ने बताया कि विधानसभा सचिवालय लोकसभा के प्रबोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा बिपार्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3: माननीय सदस्यों को संसदीय कार्य प्रणाली विभिन्न पहलुओं विषय पर विशेषज्ञों द्वारा एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। इससे संसदीय प्रक्रिया एवं नियम, सदस्यों का अधिकार एवं कर्तव्य, आचार संहिता, प्रश्नकाल एवं कार्यपालिका की जवाबदेही, आधुनिक तकनीक एवं ई लेभा का उपयोग, विधायी तथा बजटीय प्रक्रिया, विशेषाधिकार का प्रोटोकॉल तथा संसदीय समितियों की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल।
0: उद्घाटन के मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97,84,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि अंतरित की। श्री चौधरी ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम से 1,423 करोड़ रुपए की राशि जारी की। योजना की 6 श्रेणियों के प्रत्येक लाभुकों को 1,100 रुपए का भुगतान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की है ताकि उनके जीवन यापन में सहायता मिल सके।
4: महीने में 2 सहयोग कार्यक्रम आपके हो रहे हैं, साथ ही साथ पंचायत विकास शिविर भी होते हैं। इन तीनों कार्यक्रम में एकदम हर हालत में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करें, सैनिटाइज करें, पंचायत में जो बैठक हो उसमें भी लोगों से पूछे कि कौन लोग छूट गए हैं जिनको पेंशन देने की जरूरत है। सबके बैंक अकाउंट को जोड़कर सभी दिव्यांगजन, विधवा बने और हमारे जो वृद्धजन है, 10 तारीख के आपके अकाउंट में राशि जानी है, ये सरकार के तरफ से तय है।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि इस बार के पंचायत चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर लागू होगा। नालंदा में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि 10 साल पूरे होने के कारण चुनाव में आरक्षण का नया रोस्टर प्रभावी होगा। श्री प्रकाश ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्पन्न होगा।
5: सभी 6 पदों के लिए चुनाव होना है, मैं सभी पदों के लिए 24 ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, 6 अलग अलग बैलेट यूनिट रहेंगे, तो चुनाव की प्रक्रिया भी सरल होगी, लोगों को सहूलियत भी होगा, वोट देंगे ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी सिस्टम बनेगा, पारदर्शी बनेगा और किसी गलती के लिए उसमें गुंजाइश नहीं रहेगी। और ये नया देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आरक्षण के रोस्टर लागू हुए और आरक्षण का रोस्टर भी इस बार होगा। इस तरीके से होता है, अभी वही वैसे ही होगा। इसके लिए अगर

0: विशेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में 3035 ऐसे नियोजित शिक्षक चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने फर्जी शैक्षणिक और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की थी। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर निगरानी जांच ब्यूरो ने शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। इन सभी शिक्षकों का नियोजन वर्ष 2006 से लेकर 2015 के बीच हुआ था। इस मामले में अब तक 1830 प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। इस बीच शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि दोषी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
1: निगरानी विभाग ने इस जांच को कंक्लूड किया है और ये पाया है कि 3000 से अधिक शिक्षक इसमें दोषी पाए गए हैं जिनकी फर्जी डिग्रियां थी। हमने अपने विभागीय अधिकारियों को ये कहा है कि पूरी तरह से और कड़ा एक्शन के साथ इसका प्रस्ताव बनाया जाए और शिक्षा विभाग ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई इस प्रकार का हिम्मत नहीं जुटाए। और दूसरी बात कि आगे से जितनी भी बहालियां होंगी उन सभी लोगों के प्रमाण पत्रों की जाँच पहले हो, ऐसी व्यवस्था करें। और अभी भी उस जांच पेंडिंग है, सारे विषयों की जांच होगी और सब पे कार्रवाई होगी। कोई भी फर्जीवाड़ा को बर्दाश्त शिक्षा विभाग नहीं करेगा।
0: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि शिक्षकों के स्थानांतरण की विभागीय प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों के लिए कल प्रशिक्षण होगा और उसके बाद शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन की तिथि जारी की जाएगी।
1: विभागीय प्रक्रिया ऐसे शुरू हो रही है डिजिटल, पूरी तरह से ऑनलाइन। वो हमारा ई शिक्षा कोर्स का कल ट्रेनिंग होगा, बिहार के सभी अधिकारी उससे जुड़ेंगे। उनको यहाँ से जो एक्सपर्ट हैं हमारे विभाग के, वो पूरा तरह से उनको ट्रेनिंग देंगे कि इस प्रकार से आपको इसका ऑपरेशन करना है, क्योंकि पारदर्शिता के साथ शिक्षकों के ट्रांसफर एक मापदंड के आधार पे करना। और इसके लिए आपको डेट आएगा, उस डेट में सभी शिक्षक आवेदन देंगे और उसके बाद प्रक्रिया के अधीन उनका ट्रांसफर।
0: प्रदेश में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सभी प्रारंभिक स्वीकृतियों को अगले एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में बांका के भेतिया और शंभूगंज तथा सिवान का तरोली शामिल है। तकनीकी कारणों से फिलहाल नवादा के रजौली को निर्धारित लक्ष्य से बाहर रखा गया है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजना स्थलों की तकनीकी स्थिति, भूमि और जल उपलब्धता की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया कि अगले 12 महीनों के भीतर भूमि, जल आवंटन, बोरहोल ड्रिलिंग की अनुमति और अन्य आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाए ताकि परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति ली जा सके। समीक्षा के दौरान ये बताया गया कि नवादा के रजौली के निकट चिन्हित स्थल परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है, इसी वजह से इस स्थल को परियोजना से बाहर कर दिया गया है। बैठक में ये जानकारी दी गई कि दो दो 700 मेगावाट क्षमता वाले प्रत्येक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि और प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता होगी। उपयोग के बाद रिसाइकिल्ड और रेडिएशन फ्री जल का उपयोग सिंचाई सहित अन्य कार्यों में किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से निदिश्री।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि बेगूसराय के सिमरिया सिक्स लेन पुल पर एक्सपेंशन ज्वाइंट के तकनीकी अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है। मंत्रालय के अनुसार अनुरक्षण कार्य के दौरान पुल पर यातायात सामान्य रूप से जारी है और यात्रियों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक राज्य में बारिश की

0: स्थितियां बनी रहेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड में रिकॉर्ड 195.6 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग ने कल पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश, जबकि अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सिवान जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के अधिकांश स्थानों पर, उत्तर मध्य एवं दक्षिण मध्य भाग के अनेक स्थानों पर और उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिलों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अररिया, दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा 26 जुलाई को राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक एक ही पाली में होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार ने नामांकन वापस लिया। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को बनाया नया उम्मीदवार। उपराष्ट्रपति डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन कल 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। गया जी में विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में DBT के माध्यम से राशि अंतरित की। और राज्य में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले 3035 शिक्षक चिन्हित। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, ऐसे शिक्षकों की सेवा होगी समाप्त। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोहतास जिले की हलचल। रोहतास जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
1: रोहतास जिले में मानसून सक्रिय है, जिससे जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य के झरनों और पहाड़ी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए वन विभाग ने पर्यटकों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों से जोखिम वाले स्थानों पर न जाने तथा रील और सेल्फी बनाने से बचने की अपील की गई है। इधर जिले में खरीफ मौसम के तहत धान की रोपनी ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला कृषि पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि इस वर्ष करीब 2,07,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती का

0: लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग 10% रोपनी पूरी हो चुकी है। श्रावण मास में जिले के प्रसिद्ध गुप्ता धाम में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। धाम परिसर और गुफा क्षेत्र में बैरिकेडिंग, मेडिकल कैंप, एम्बुलेंस, हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम, पर्याप्त ऑक्सीजन, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इधर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बीते दिनों मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत शेरशाह सूरी मकबरा, माझर कुंड और धुआं कुंड क्षेत्र के लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर सकेंगे। वहीं ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए शेरशाह सूरी मकबरे के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिले में आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुँचाने के लिए सहयोग सह जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस माह आयोजित पहले चरण के शिविर में जिले के सभी प्रखंडों, 65 पंचायतों और 32 शहरी वार्डों में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े सैकड़ों आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। साथ ही पात्र लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया गया ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। इधर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत रोहतास जिले में 1,06,000 से अधिक संदिग्ध और प्रभावित लोगों का निश्चय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। समय पर जाँच, निःशुल्क दवा और निश्चय पोषण योजना का लाभ दिया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन ने 2 सप्ताह से अधिक खांसी, बुखार या वजन कम होने पर तुरंत सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने की अपील की है। बीते दिनों जिले के जमुहरा स्थित गोबर आधारित प्राकृतिक पेंट निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने जिले में चल रही रोजगार सृजन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोहतास जिले की राज्य में बेहतर रैंकिंग की सराहना की। जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र परिवारों के घरों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। योजना के माध्यम से अधिक लोगों को स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने से परिवार अपनी जरूरतों के अनुसार बिजली का उत्पादन कर सकेंगे, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। बीते दिनों जिले के सभी 229 ग्राम पंचायतों में पहली बार पंचायत विकास दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित ग्राम सभाओं में पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायतों को विकास की सबसे मजबूत इकाई बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के सशक्त होने से ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से पहुँच सकेगा। सासाराम स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में लगभग 100 बच्चे शास्त्रीय गायन, कथक, भरतनाट्यम, हारमोनियम और तबला का निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जिला कला संस्कृति पदाधिकारी पंकज कुमार ने कहा कि यह केंद्र स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का माध्यम बन रहा है। रोहतास जिले में महिला सशक्तिकरण और बाल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सखी वार्ता और दीदी अधिकार केंद्र के माध्यम से महिलाओं और छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा, घरेलू हिंसा से संरक्षण, बाल विवाह निषेध तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
1: रोहतास जिले की हलचल को पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता चंदन कुमार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गीत। कलाकार हैं तान्या सौम्यदेव चक्रवर्ती।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीत तान्या सौम्य देव चक्रवर्ती के स्वर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं सिम्बा फिल्म का ये गीत, राहत फतेह अली खान, असीस कौर और तनिष बाक्षी की आवाज़ में। रश्मि विराग के लिखे इस रचना को दर्ज दिया है तनिष्क बाक्षी ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं सूरमा फिल्म का ये गीत दिलजीत दोसांझ के आवाज में। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीत दिया है दिलजीत दोसांझ और तापसी पन्नू ने।

श्रोताओं आइए सुनते हैं अर्को प्रभु मुखर्जी और तुलसी कुमार की आवाज में सत्यमेव जयते फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है अर्को प्रभु मुखर्जी ने और इसे संगीतबद्ध किया है।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं पटाखा फिल्म का ये गीत रेखा भारद्वाज और सुनिधि चौहान की आवाज़ में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत दिया है विशाल भारद्वाज ने।

फेमस फिल्म का ये गीत सुनिए जुबिन नौटियाल और जोनिता गांधी की आवाज में। गीत लिखा है नवीन त्यागी ने और इसे संगीत दिया है संदीप गोस्वामी और सूर्य विश्वकर्मा ने।

श्रोताओं, पटाखा फिल्म का ये गीत सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गुलजार की लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है विशाल भारद्वाज ने।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में गायस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए पेश है गज़ल, कलाकार हैं मोहम्मद असलम और साथी।

मोहम्मद असलम और साथी की आवाज़ में ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, थोड़ी देर में हम सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उत्तरी रेलवे के 680 किलोमीटर मार्ग पर सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए कवच के कार्यान्वयन को स्वीकृति दी गई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्ष में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर मिला है।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए।
3: यात्रा की शुरुआत भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच से हुई, जहां कारोबार जगत के प्रमुखों ने वर्ष 2022 के आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार में 55% की वृद्धि का स्वागत किया। इस गति को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते पर वार्ता में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारतीय समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये बहुसांस्कृतिक

0: शक्ति ऑस्ट्रेलिया की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता एंगस टेलर से भी मुलाकात की। श्री टेलर ने प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा मित्र बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम निर्यात जैसी पहलों का समर्थन किया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भव्य स्वागत और आतिथ्य के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार और वहां की जनता के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑस्ट्रेलिया से तमिलनाडु की अमूल्य धरोहरों की वापसी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्री राधाकृष्णन ने सांस्कृतिक धरोहरों को देश में वापस लाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। वर्ष 2014 से अब तक 600 से अधिक कलाकृतियां स्वदेश आ चुकी हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस परियोजना का लक्ष्य घनी आबादी और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का विस्तार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि 2026-27 के अंतर्गत 611 करोड़ रुपए से अधिक की 17 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने निरंतर समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। कौशल विकास, उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने पीएम सेतु पहल के अंतर्गत सूरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई समूह के लिए 240 करोड़ रुपए की निवेश योजना का अनावरण किया है। इस पहल में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया को समूह का प्रमुख उद्योग भागीदार नामित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य 25,000 से अधिक युवाओं को आधुनिक उद्योग प्रशिक्षण, शिक्षुता और नए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आज मिशन संचालन समूह की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में बताया गया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में लगभग 94 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता बनाए गए हैं और 105 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड जोड़े गए हैं। श्री नड्डा ने कहा कि मिशन के अंतर्गत एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में अंतर विभागीय सहयोग बेहतर बनाने, संस्थागत क्षमता मजबूत करने तथा उत्पादकता और सेवा वितरण को विकसित करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने प्रशासनिक ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से एकीकृत, कुशल और भविष्य के लिए तैयार की गई पहलों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय अयोध्या राम मंदिर में कथित दान चोरी की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इससे पहले अयोध्या की एक अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों में से 3 को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले महीने इस मामले में

0: विशेष जांच समिति का गठन किया था। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश,

0: पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई तक भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और उमस भरा मौसम बना रहा। ईशानी यादव के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में मेघालय अनानास महोत्सव का उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के विजन पर आधारित है।
2: Fourth edition of the Pineapple Festival has been remarkable.
3: पाइनएप्पल फेस्टिवल का चौथा संस्करण बेहद सफल और ऐतिहासिक रहा है। आज यहाँ का अनानास दुनिया के कई देशों तक पहुँच चुका है। अब हमारा लक्ष्य प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करना है ताकि अनानास से जुड़े उत्पादों में वैल्यू एडिशन बढ़ाया जा सके। इस मेले में भी ऐसे कई उत्पाद देखने को मिले हैं। इससे हमारे जैविक किसानों को अधिक लाभ मिलेगा और उनके उत्पाद भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक और बेहतर तरीके से पहुँच सकेंगे।
2: Beyond the shores of India to far-reaching international.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 828 अंक चढ़कर 77,559 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 244 अंक की बढ़त के साथ 24,207 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे मजबूत होकर 95.32 रुपए पर बंद हुआ।
0: नीति आयोग ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य आकांक्षी प्रखंडों में एकीकृत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। ये सहयोग ग्राम संस्थाओं को मजबूत करने, सरकारी योजनाओं तक पहुंच में सुधार करने, शिक्षा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने पर केंद्रित है। इसमें कृषि आजीविका, स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना भी शामिल है। वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद सफलतापूर्वक संपन्न कर भारतीय दल आज नई दिल्ली वापस आ गया। वेनेजुएला में हाल में आए भूकंपों में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया गया था। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की सहायता, समर्थन और एकजुटता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। आकाशवाणी समाचार के पूर्व निदेशक और भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी सेबेस्टियन रॉबर्ट का आज नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे। उन्होंने देश विदेश में आकाशवाणी समाचार के लिए महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर किया। उन्होंने रक्षा और विदेश मामलों के क्षेत्र में एक कुशल संवाददाता के रूप में अपनी पहचान बनाई। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत के साथ लंदन के लॉर्ड्स मैदान में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 6 विकेट पर 232 रन बना लिए थे। ये पहला मौका है जब लॉर्ड्स मैदान पर महिला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने सेमीफाइनल में ब्रिटेन के आर्थर फेरी को 7-6, 6-2, 6-4 से हराया। एक अन्य सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर का मुकाबला सर्बिया की नोवाक जोकोविच से हो रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के लिपुलेख दर्रे से चीन में पहुंच गया। इस जत्थे में 52 सदस्य हैं। चीन में प्रवेश करने के बाद समूह आगामी दिनों में पवित्र कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा से पहले निर्धारित शिविरों में विश्राम करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और भारतीय समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुर्गन ने संसद के

आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फुरकान खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने तीन मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हममनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उमानी हममनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़राए ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे ने सेफ्टी और ऑपरेशनल कारकर्दगी में इजाफा करने की गरज से शिमाली रेलवे के 680 रूट किलोमीटर्स पर कवच डिप्लॉयमेंट की मंजूरी दी है। फुटबॉल में आज रात फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड पहुंचने पर पुरजोश और शानदार इस्तकबाल किया गया, जो न्यूजीलैंड के उनके दो रोज़ा तारीखी दौरे का आगाज है। उनका यह दौरा तकरीबन चार दहाइयों में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा है। यह उनके तीन मुल्कों के दौरे का आखिरी मरहला है। आज ऑकलैंड पहुंचने के बाद न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लेक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। उनका इस्तकबाल करने के लिए वहां बड़ी तादाद में भारतीय कम्युनिटी के अफराद मौजूद थे। माहौल जोश व खरोश से भरा हुआ था, क्योंकि लोग उनका खैर मकदम करने के लिए भारतीय तिरंगा लहरा रहे थे और किया ओरा मोदी के नारे लगा रहे थे। जनाब मोदी ने आज शाम ऑकलैंड में कम्युनिटी के खैर मकदम के दौरान भारत की मालामाल सकाफती विरसे की शानदार तकरीब देखी। सोशल मीडिया पोस्ट की एक सीरीज में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पंजाब और तमिलनाडु की सकाफत, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिक की मौसीकी और वंदे मातरम की मशहूर कुन पेशकश की परफॉर्मेंस काबिले दीद थी। जनाब मोदी ने नस्लों और बर्रयाज़मों में भारत की सकाफती विरासत को जिंदा रखने और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आवाम से आवाम के राब्तों को मुस्तहकम करने के लिए भारत निजात कम्युनिटी की सताइश की। अपने दौरे के दौरान तवक्को है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के उनके हममनसब तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, टेक्नोलॉजी और आवाम से आवाम के राब्तों में तआवुन को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल कर सकते हैं, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी की अक्कासी करता है। न्यूजीलैंड में भारत की हाई कमिश्नर मोआन पुई साईवी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये दौरा बाहमी ताल्लुकात में नई रफ्तार फराहम करेगा। उन्होंने ये कहते हुए इस साल अप्रैल में दस्तखत किए गए भारत न्यूजीलैंड आज़ाद तिजारती माहदे को भी उजागर किया कि ये तिजारत और कॉमर्स, समंदरी सिक्योरिटी, आवाम से आवाम के दरमियान ताल्लुकात, सकाफती, सियाहती और इंसदादी दहशतगर्दी के मामलों में तआवुन में मजीद तौसी फराहम करेगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया का एक तारीखी और इंतहाई अहम दौरा मुकम्मल किया, जो भारत ऑस्ट्रेलिया जामे और मुकम्मल शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल महफूज ब्लूप्रिंट फराहम करता है। आला इख्तियारी मीटिंगों से लेकर नुमाया संग मील तक इस दौरे ने दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान सिफारती, इक्तिसादी और तहफ़ुज़ाती ताल्लुकात में इजाफा किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और आवाम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीस का अपने दौरे के दौरान पुरजोश मेज़बानी के लिए शुक्रिया अदा किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में हुकूमत मुल्क की साहिली सिक्योरिटी को मजबूत और नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पुरअज़्म है। जनाब शाह ने आज बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल के हमराह ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी के क़याम में हुई पेशरफ्त का जायजा लिया। जनाब शाह ने कहा कि बंदरगाहों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ लाइसेंस याफ्ता प्राइवेट सिक्योरिटी

सिक्योरिटी एजेंसियों को दी जानी चाहिए और उन प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाना चाहिए जिन्होंने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से ट्रेनिंग हासिल की हो। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज मस्कत में उम्मान के अपने हमनसब बद्र बिन हम्माद अल बुसैदी से मुलाकात की और दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब जयशंकर ने कहा कि बातचीत तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी, दिफा और साइबर नीज मस्नूई जहानत के शोबों पर मरकूज रही। दोनों लीडरों ने खलीज में जारी हालात और खित्ते में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की काविशों पर जामे तबादला ख्याल किया। उम्मान के वजीर खारजा ने कहा कि भारत और उम्मान के दरमियान तवील मुद्दती समंदरी ताल्लुकात ने सदियों से उनके आवाम को एक दूसरे से जोड़कर रखा है और ये दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी के लिए एक मुस्तहकम बुनियाद फराहम करने के लिए जारी है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब बद्र अल बुसैदी ने कहा कि दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुस में आजादी के साथ आमदोरफ्त को बरकरार रखने की गरज से बड़े पैमाने पर सिफारतकारी पर भी तबादला ख्याल किया। इससे कबल वजीर खारजा ने उम्मान में भारतीय निषाद कम्युनिटी के अराकीन के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उम्मान ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में उनका जोश खरोश काबिल तारीफ है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन कल बिहार के शहर गया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान नायब सदर वहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और देही तरक्की के बिहार इंस्टीट्यूट में कानून साज असेंबली के अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करेंगे। पार्लियामानी उमूर के वज़राए मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ने आज पार्लियामेंट हाउस के कॉम्प्लेक्स में आइंदा मानसून इजलास के लिए तैयारियों का जायजा लिया। पार्लियामेंट का यह इजलास इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और अगस्त की 13 तारीख तक जारी रहेगा। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मेघवाल ने कहा कि आने वाले इजलास के लिए कानून साजी के उमूर के प्रोग्राम का जामे जायजा लिया गया और जरूरी रहनुमा खतूत जारी किए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेल ने 680 किलोमीटर तवील शिमाली रेलवे के रास्ते पर हिफाजत और कामकाज में बेहतरी लाने की गरज से 206 करोड़ रुपए लागत के कवच निजाम को तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस मंसूबे का मकसद मकामी हिफाजती निजाम को मसरूफ तरीन और कलीदी तौर पर अहम रास्तों पर फैलाना है। रेल की वजारत ने कहा कि कवच विजन 4.0 को दिल्ली डिवीजन के रेवाड़ी दिल्ली और शकूरबस्ती भटिंडा सेक्शन पर लागू किया जाएगा। इस निजाम को खतरनाक वाकयात और ट्रेनों के तसादुम के वक्त सिग्नल को रोककर रेलवे की हिफाजत को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। वजारत ने कहा कि यह निजाम ट्रेनों की नकलो हरकत पर मुसलसल नजर रखता है, जरूरत पड़ने पर खुद ब खुद ब्रेक लगाता है और ट्रेनों को हिफाजत के साथ ज्यादा से ज्यादा रफ्तार तक चलने की इजाजत देता है। ये मनफी मौसमी हालात जैसे घने धुंध के दौरान काबिल एतमाद ट्रेन ऑपरेशन को भी तकवीत देता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए आज मिशन स्ट्रिंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान ये बात उभर कर सामने आई कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सेहत इको निजाम में से एक बनकर उभरा है, जिसमें तकरीबन 94 करोड़ की तादाद में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट वजह किए गए और 105 करोड़ हेल्थ रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए गए हैं। मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि ABDM के तहत एक शानदार डिजिटल सेहत देखभाल का बुनियादी ढांचा वजह किया गया है और अगले मरहले में मुल्क भर में इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने और इस्तेफादा करने पर तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। तिजारत और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कौमी पैदावारियत काउंसिल NPC सनअत और अंदरूनी तिजारत के फरोग का महकमा और कॉमर्स के महकमे के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में जनाब गोयल ने कहा कि जायजा मीटिंग के दौरान बैन इदारा जाती तआवुन को बेहतर बनाने, इदारा जाती सलाहियतों को फरोग देने और पैदावारियत और खिदमात की फराहमी के लिए बेहतरीन तरीक़ेकार अपनाने पर तवज्जो दी गई। वजीर मौसूफ ने उन इकदामात का भी जायजा लिया जिनका मकसद ज्यादा मरबूत, मौसर और मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग इंतजामी निजाम कायम करना है।

0: भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जिली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाद मकामात पर मूसलाधार बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। मजीद तफसीलात हमारे नामा निगार से।
1: आईएमडी के मुताबिक 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गंगा के मैदानी मगरबी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने आइंदा 3 से 4 दिनों के दौरान अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, मगरबी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और शुमाल मशरकी भारत के बाद इलाकों में गरज चमक, आसमानी बिजली और तेज झक्कड़ों के साथ बारिश की भी पेशगोई की है। इधर दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज दिन भर अब्र आलूद मौसम के साथ ज्यादा नमी का एहसास बरकरार रहा। नई दिल्ली से सोमिया शरण और ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद हबीब।
0: कैलाश मानसरोवर यात्रा के तहत आज यात्रियों का पहला जत्था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख दर्रे के जरिए चीन में दाखिल हो गया। तमाम जरूरी इमिग्रेशन और सरहदी दस्तावेजी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद भारत तिब्बत सरहदी पुलिस आईटीबीपी ने यात्रियों के जत्थे को सरहद पर तैनात चीनी इंतजामिया की सरपरस्ती में दे दिया। इस जत्थे में कुल 52 मेंबरान हैं, जिनमें एक तिब्बी कारकुन और 3 खाना पकाने से मुंसलिक मेंबरान समेत 48 यात्री शामिल हैं। भारत के जर मुबादला के जखायर में 30 जुलाई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 7.2 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 674 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए। भारत के रिजर्व बैंक के आदादोशुमार के मुताबिक इन जखायर के सबसे बड़े उनसुर गैर मुल्की करेंसी के असासों में हफ्ते के दौरान 4.5 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा होकर ये 545 अरब अमरीकी डॉलर से ज्यादा मालियत के हो गए हैं। सोने के जखायर में तकरीबन 2.7 अरब अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ, जो 105 अरब अमरीकी डॉलर मालियत के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज बहुत सी उज्रदारियों की समाअत करेगी, जिनमें अयोध्या के राम मंदिर में अतियात की मुबैना हेराफेरी के मामले में एक शफाफ और मुकर्रा वक्ती तहकीकात कराने की दरख्वास्त की गई है। 7 जुलाई को अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर में अतियात की मुबैना चोरी से मुतालिक गिरफ्तार शुदा 8 मुलजमान में से 3 को 1 रोजा पुलिस रिमांड में दे दिया था। एक मकामी अदालत ने पिछले महीने की 29 तारीख को तमाम 8 मुलजमान को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया था। पिछले महीने की 13 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर में मौसूल होने वाले अतियात में हेराफेरी के इल्जाम के बाद मंदिर के ट्रस्ट की जानिब से एक दरख्वास्त पर एक SIT की तश्कील की थी। आज बीजेपी ने बिहार में बांकीपुर असेंबली हलके के जिम्नी इंतखाब के लिए नीरज कुमार सिन्हा का नाम का अपने उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया। पार्टी ने मध्य प्रदेश में दातिया असेंबली हलके के जिम्नी इंतखाबात के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर असेंबली सीट के लिए इस महीने की 30 तारीख को पोलिंग होगी। भारतीय सहेली गार्ड ने आज नई दिल्ली में वाके कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर में एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें भारत के मुमताज शिपयार्ड्स और डिजाइन हाउसेज ने शिरकत की, ताकि मुस्तकबिल के सहेली गार्ड प्लेटफॉर्म्स पर गौर खौस किया जा सके। फुटबॉल में आज रात इंग्लवुड के लॉस एंजलिस स्टेडियम में फीफा आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। फ्रांस बोस्टन में पहले क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। विंबलडन में मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बर्तानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में जबरदस्त शिकस्त दी है। दूसरे सीट के ज्वेरेव ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए फेरी को 7-6, 6-2 और 6-4 से हराया। इस कामयाबी के साथ ज्वेरेव विंबलडन के फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि आर्थर फेरी की शानदार मुहिम खत्म हो गई, जो बरतानवी खिलाड़ी की यादगार तरीन कारकर्दगियों में से एक है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने 3 मुल्कों के दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड पहुंच गए हैं। न्यूजीलैंड के उनके हम मनसब और भारतीय कम्युनिटी ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-खारजा एस जयशंकर ने मस्कत में अपने उम्मानी हम मनसब बद्र बिन हम्माद अल

शहरी से मुलाकात की। उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, समंदरी उमूर, टेक्नोलॉजी और दिफा के शोबों में तआवुन के मामलात पर तबादला ख्याल किया। पार्लियामानी उमूर के वज़ीरे मुमलिकत अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आने वाले पार्लियामेंट के मानसून इजलास की तैयारियों का जायजा लिया। और विंबलडन टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव बरतानिया के खिलाड़ी आर्थर फेरी को शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प। स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार।
1: हिंदी रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शब्द शिल्प सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को साहित्यिक साथी सुरभि का नमस्कार। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज का दर्पण और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। कविता और कहानी साहित्य की ऐसी दो सशक्त विधाएं हैं जो हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। कविता भावनाओं को शब्दों का संगीत देती है तो कहानी जीवन के विविध रंगों और अनुभवों को हमारे सामने जीवंत कर देती है। आज के शब्द शिल्प के इस अंक में प्रस्तुत होने वाली कविताएं और कहानी न केवल हमारा मनोरंजन करेगी बल्कि हमें सोचने, समझने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने की प्रेरणा भी देंगी। तो आइए साहित्य की इस सुंदर यात्रा का आनंद लें और शब्दों की इस दुनिया में कुछ नए विचार, नई संवेदनाएं और नई प्रेरणाएं खोजें। साहित्य वो दीप है जो केवल रास्ता ही नहीं दिखाता बल्कि मनुष्य के भीतर मानवता का प्रकाश भी जगाता है। तो श्रोताओं, इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे अगले खंड जरा सोचिए की ओर। जब जब मन ने प्रकृति को देखा तब तब शब्दों ने कविता का रूप लिया। पर्वतों की दृढ़ता, नदियों की कलकल, फूलों की मुस्कान और पंछियों का संगीत, इन्हीं से साहित्य ने अपनी सबसे सुंदर प्रेरणा पाई। प्रकृति और साहित्य का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना मनुष्य और उसकी संवेदनाओं का। प्रकृति साहित्य की शाश्वत प्रेरणा है। प्रकृति केवल हमारे जीवन का आधार नहीं बल्कि हमारी भावनाओं की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति भी है। यही कारण है कि साहित्य में प्रकृति का विशेष स्थान रहा है। भारतीय साहित्य में कालिदास जी ने ऋतुओं, पर्वतों, बादलों और वन उपवनों का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि पाठक स्वयं उस दृश्य का हिस्सा बन जाता है। हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी कविताओं में हिमालय, फूल, पत्तियां और झरने मानो जीवंत होकर बोलने लगते हैं। वहीं महादेवी वर्मा जी ने प्रकृति को अपनी आत्मा की संवेदनाओं से जोड़ा, जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति में संघर्ष, शक्ति और परिवर्तन का संदेश देखा। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचनाओं में भी प्रकृति मनुष्य के अंतर्मन की सच्ची साथी बनकर उभरती है। श्रोताओं, प्रकृति हमें धैर्य, संतुलन और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। एक वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के छाया देता है, एक नदी बिना रुके बहती रहती है और हर ऋतु हमें परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना सिखाती है। साहित्यकार इन्हीं संदेशों को शब्दों में ढालकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। प्रकृति केवल आंखों को सुंदर नहीं लगती बल्कि वो आत्मा को भी समृद्ध करती है और जब प्रकृति शब्दों से मिलती है तब जन्म लेता है साहित्य। जी हाँ, जो हमें संवेदनशील बनाता है, जीवन को नए अर्थ देता है और इस सुंदर सृष्टि से प्रेम करना सिखाता है। हर पुष्प में कविता बसती है, हर मौसम में एक गीत। प्रकृति से जो प्रेम करे उसका जीवन

0: पंजाई संगीत। तो चलिए इन्हीं विचारों के साथ इस साहित्यिक यात्रा में बढ़ते हैं आगे और आनंद लेते हैं अश्विनी कुमार आलोक जी के नवगीतों का।
1: दो छंद सुनिए। सृष्टि के मूल में है कविता, कविता के मूल में प्रेम बसा है। सृष्टि के मूल में है कविता, कविता के मूल में प्रेम बसा है।

कसा है। दूसरा छंद, भांति लोहार की चाक कुम्हार का, कविता हलवा हे का हल है। भांति लोहार की चाक कुम्हार का, कविता हलवा हे का हल है। श्रम के सीकर पर कविता का, सदियों से विश्वास अटल है। दुख में साहस धैर्य यही है, दुख में साहस धैर्य यही है, सुख में संयमशील प्रबल है। दुख में साहस धैर्य यही है, सुख में संयमशील प्रबल है। सौम्य सुशोभन सत्य सनातन, भाव प्रभाव लगाव सकल है। सौम्य सुशोभन सत्य सनातन, भाव प्रभाव लगाव सकल है। और ये गीत है, जरा नजरें बचा कर लिखना,

वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया, जरा नजरें बचा कर लिखना प्यार वाली चिट्ठिया, इकरार वाली चिट्ठिया, यार वाली चिट्ठिया।

0: श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे अश्विनी कुमार आलोक जी द्वारा रचित नवगीतों का, और अब आइए सुनते हैं रूबी भूषण जी से उनकी ये प्रेरणादायक कहानी गिल्लू इज बैक।
1: आप सबको रूबी भूषण का नमस्कार।

जहां एक ओर अपने घर पे रहने की आपाधापी, ढेर सारे काम और रोज कुछ न कुछ जद्दोजहद, साल के 2 महीने घर से दूर बच्चों के प्यार के तले बिना किसी जिम्मेदारी के रहना जिंदगी में एक नई स्फूर्ति भर देता था। प्रत्येक वर्ष की भांति मैं भी इस वर्ष अगस्त में अपने बेटे के पास सिएटल वॉशिंगटन चली गई थी। दिन बीतता गया, देखते देखते सितंबर आ गया। सितंबर में वहां पतझड़ का मौसम आ जाता है, कई पेड़ अपने रंग बदलने लगते हैं, पत्ते किसी के चमकीले नारंगी तो फिर कभी लाल दिखाई देते हैं, कई पत्तों का रंग तो बैंगनी रंग का भी हो जाता है। नीला आकाश, उसके नीचे पहाड़ और हरियाली के लिए प्रसिद्ध सियाटेल। घर के दरवाजे सारे शीशे के बने होते हैं। मैं पीछे की तरफ, जिसे सब कोई कोर्टयार्ड कहता है, वहीं बैठकर चाय पीती थी। एक गोल सी टेबल पड़ी थी, सुबह नियमित 5 बजे उठकर योगा करती और उस टेबल पर गर्मा गर्म चाय का बड़ा सा कप लेकर बैठ जाती। बाहर देखती रहती, हाथ में कोई कहानी की किताब होती और बीच बीच में बदलते पत्तों का रंग देखती। बाउंड्री के बाहर लगी ऊंचे ऊंचे पेड़ और उसके झुरमुट से निकलता नारंगी और लाल रंग का छोटा सा नटखट सूरज, जो चंद मिनटों में बादलों की सीढ़ी से चढ़कर ऊंचे आकाश में पहुंच जाता। शांत वातावरण, चिड़ियों की चहचहट और पास में ही तो था शेल्टन व्यू फॉरेस्ट। एक दिन की बात है, मैं कहानी में डूबी थी, तभी शीशे की दूसरी ओर मेरी नजर गई। देखा, एक नन्ही सी गिलहरी मेरी ओर टकटकी लगाकर देख रही है। काली काली चमकदार आंखें, ऐसा लगा उसमें ढेर सारी जिज्ञासाएं भरी है। सिर को कभी दाएं हिलाती तो कभी बाएं, जैसे मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रही है। निथी वो घास पर दौड़ लगाती, पर कभी मैंने उस पर गौर नहीं किया था। पर आज इतने नजदीक, मैंने घर के डिब्बे से कुछ मूंगफली के दाने निकाले और उसके आगे बिखेर दिए। जैसे ही दरवाजा खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका शरीर को भेद गया। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद किया और भीतर से उस नन्ही जीव को ध्यान से देखने लगी। उसकी पीठ पर राम जी के उंगलियों के तो निशान नहीं थे। रामायण में एक प्रसंग है, जब राम जी लंका पर आक्रमण करने के लिए रामेश्वरम में पुल बना रहे थे, तब वहां बानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे। उसी बीच एक गिलहरी आती और बालू में लिपट जाती, फिर समुद्र में जाके उस बालुओं को धोती, फिर वापस आती। बड़े बांदरों ने उसे डांटा और बीच से कहा, चल हट, दब जाएगी। उसने कहा, मैं समुद्र को सुखा रही हूं, इसमें बालू भर रही हूं। प्रभु श्री राम मुस्कुराए। उन्होंने उसे अपनी गोदी में लेकर उसके पीठ पर प्यार से 3 उंगलियों को फेरा। कहते हैं ये वही राम जी की उंगलियों के निशान है, जो भारत में मिलने वाली इंडियन पाम स्क्वायरल के पीठ पर पाई जाती हैं। पर ये ठहरी अमेरिकन गिलहरी, इसके पीठ पर कोई निशान न थे। इससे पहले मैं कुछ सोचती कि देखा कि वो गोल गोल शंका भरी दृष्टि से मुझे देख रही है और छोटे छोटे कदम रखते हुए दानों तक पहुंची। एक दाना उठाया, 2 बार सूंघा, फिर दुम दबाकर चौकन्नी मुद्रा में दुम उठाकर पीछे हट गई। अगले दिन वो फिर आई, फिर उसके अगले दिन आई। अब इसमें तनिक भी संदेह ना था कि हमारे और उसके बीच परिचय की डोर मजबूत होती जा रही थी। वो आती तो मुझे महादेवी वर्मा द्वारा रचित कहानी गिल्लू याद आ जाती। शायद ऐसे ही दोनों में मित्रता हुई होगी। गिल्लू मैंने कब पढ़ी थी, पर पहली बार समझ आ रहा था, कहानियां जन्मती नहीं, लिखी नहीं जाती, जीवन जीते हुए अपने आप लिख जाती हैं। बार बार महादेवी वर्मा याद आती और मेरा मन कुलबुलाने लगता, क्यों ना अपनी नन्ही दोस्त की इस दोस्ती की कहानी लिखूं और समर्पित करूं महादेवी वर्मा के गिल्लू को। एक दिन मैं देर से उठी, तभी देखा कि दरवाजे पे एक आवाज आ रही है, ठप ठप टप टप। मैंने हंसते हुए देखा, देखा सामने खड़ी हुई और दोनों पंजों से रगड़ रही है शीशे के दरवाजे को। मैंने कहा, क्या हुआ, इंतजार कर रही थी? उसने मुझे इस तरह से देखा और गर्दन हिलाई, जैसे मुझसे कह रही हो कि आज बड़ी देर कर दी।

तुमने आने में। खैर, मैंने मुट्ठी भर मूंगफली के दाने फिर डाल दिए और दरवाजा लगा दिया। एक-एक करके दाने उठाती, सूंघती और न जाने कहाँ रखाती। मैंने धीरे से उससे पूछा, कहाँ ले जा रही हो सखी, जमा कर रही हो मूंगफली? उसने रुककर मुझे घूर कर देखा, जैसे वो मेरी बातें सुन रही हो, दरवाजे के पीछे से और गोल गोल घूमने लगी और कहा, अरे ठंड आ रही है ना, काम आएंगे, घर में बच्चे भी हैं। मैं चौंक गई, पहली बार उसकी अस्पष्ट हल्की सी आवाज सुनाई दी। शायद यही प्रेम की भाषा है, जिसमें कोई संवाद नहीं होता, पर उसका मन बोल रहा था और मेरा मन सुन रहा था। कुछ दिनों बाद मैंने देखा, चार गिलहरियां और आ गईं, सबसे छोटी खूब फुर्तीली और शरारती। मैंने हंसकर कहा, किस किस को ले आई? उसकी सबसे छोटी गिलहरी की आंखें चमक रही थी। तभी मेरी गिलहरी ने उसे जोर से धक्का दिया, जैसे कहा हो, जाओ जाओ, देखो मेरी दोस्त है। आज मैंने ढेर सारी मूंगफली निकाली और बिखेर दी। वे सब मेरे कोर्ट यार्ड के टाइल्स पे दौड़ लगाती, कभी एक दूसरे की दुम पकड़ती, कभी फूलों की क्यारियों के बीच दौड़ती, मानो मेरे घर का पिछला हिस्सा उनके लिए एक छोटा सा शेल्टन व्यू जंगल बन गया था। मेरे घर में जैसे ही कोई अन्य सदस्य आता, सब भाग जाती। अब उनकी दोस्ती मेरे दोनों पोतों से, शुभ और रिद्धित से भी हो गई थी। दोनों शैतान एक दूसरे को मूंगफली खिलाने में लगे रहते। उसे डर था, अचानक एक दिन शुभ के हाथों से डब्बा गिर गया और वो डर गया। उसे लगा मम्मा की डांट पड़ेगी। उसने जल्दी जल्दी मूंगफली उठाने की कोशिश की। अब छुटकू रिद्धित भी 2 साल का कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने सोचा, भैया जल्दी जल्दी मूंगफली समेट रहा है, तो उसने और बिखेरनी शुरू कर दी। तभी मैंने देखा, पूरा का पूरा गिलहरियों का दल वहां आ गया और दोनों के बीच से मूंगफली उठा उठा कर लेकर भागने लगा। मुझे बहुत हंसी आई, लगा सारे नटखट बच्चे एक से होते हैं, क्या जानवर और क्या आदमी। ठंड बढ़ती जा रही थी, सुबह की चाय का समय बिल्कुल अंधेरा ही रहता। वो नन्ही जीप भी अब देर से आने लगी थी, 10 बजे के बाद ही। शुभ की छुट्टी थी, वो मेरे पास आकर बोला, दद्दा आज फ्रेंड नहीं आई जिसे तुम गेली कहती हो? मैंने कहा, हाँ ठंड में बाहर नहीं निकलती, गेली को ठंड नहीं लग सकती, उसके तो रोए होते हैं ना। माई टीचर टोल्ड मी कि जिसके रोए होते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती। दादा डू यू नो, गेली मत्ते करके खाती है। मैं हंस पड़ी, मत्ते? तब मुझे समझ में आया, वो कह रहा है गिलहरी नमस्ते करके खाती है, क्योंकि वो अपने दोनों हाथ को जोड़ लेती है। तभी शीशे पर फिर हौली से दस्तक हुई, ठक ठक टक टक ठक ठक। शुभ दौड़ कर गया। शुभ और वो नन्ना जीव अब एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और वो लोग भी आपस में मित्र बन गए थे। 3 दिनों तक सूरज ने फिर दर्शन नहीं दिए। चौथे दिन बादलों को हटाकर सूरज ने पीछे से हल्का सा झांका। इतने में उनकी पूरी फौज आ गई। फिर शुभ और रिद्धित उन लोगों के साथ धमा चौकड़ी आरंभ हो गई। फिर शुरू हुई बर्फीली हवा। दर्शना ने दोनों को कस के डांट लगाई, अंदर चलो, इस बर्फीली हवा में बाहर खड़े होगे तो ठंड लग जाएगी। मैंने देखा, दूर चार दीवारी पर बैठी गिलहरियों की पूरी फौज दर्शना को ऐसे घूर रही हैं जैसे वो अपनी नाराजगी दर्शा रही हों। उसके पश्चात वे चले गए। ठंड बढ़ती जा रही थी, उनका आना कम हो गया था। दिन में 1 बजे के करीब मैं कॉफी पी रही थी, तभी मैंने देखा गोल गोल आंखें किए हुए खड़ी है। मैंने मन ही मन उसे डांटा, आज इतनी ठंड में तुम क्यों आ गई? उसने अपनी गर्दन फिर जोर जोर से हिलाई, दोस्ती में मौसम का क्या काम, तुम आती क्या अगर मैं बुलाती? मेरे आंखों में आंसुओं की बूंद आ गई थी। मैंने उसे मूंगफली थपवाई, फिर उसने दाना सूंघा और भाग गई। और दूर जाकर उसने घूम कर देखा, लगा कह रही है बच्चे ठंड में बाहर निकल जाएंगे फिर कांपने लगेंगे। कुछ देर बाद बर्फीली हवा चलने लगी और आंधी पानी अंधड़ आ गया। सोमवार को मैं घर के बाहर निकली, देखा कूड़ा दान सड़क पर किनारे

रखने के लिए सब निकलते हैं। मैंने देखा कि पड़ोस के पीटर खड़े हैं, मुस्कुरा के बोले, हाय गुड मॉर्निंग रूबी, हाउ आर यू? मैंने कहा गुड मॉर्निंग। बोले डू यू नो टुडे इज वेरी कोल्ड मॉर्निंग, व्हेन यू आर गोइंग बैक? तुम कब वापस जा रही हो? मैं 3 दिन बाद चली जाऊंगी। मेरी बात करने में तनिक मन ना हो रहा था, तभी उन्होंने कहा, जानती हो अभी इतनी तेज हवा चली कि मेरे पीछे के कोर्ट यार्ड का दो बड़ा

0: थी, हम मनुष्य के पास बंद दरवाजे होते हैं, घर भी बंद और दिल भी। शायद इसमें किसी का रहना मुश्किल था। वो जानवर थी, इंसानों की तरह भावनाएं तो व्यक्त करती थी पर शब्द नहीं थे, दिलों के बीच दीवार नहीं थी। रिश्ता बड़ा हो न हो, रिश्ता गहरा होना चाहिए। मैं वापस आ गई, गिल्लू की तरह महादेवी वर्मा के जीवन में जैसे वो आया था वैसे ही मेरे जीवन में। ये कहाँ से आ गई थी गिल्लू, वही चंचल, वही नन्ही सी संवेदनाओं से भरा दिल। दोस्ती कभी आकार शरीर नहीं देखता, ये दिल देखता है। एक सप्ताह बाद मैं चली आई, लेकिन वो नहीं आई। एक सप्ताह बाद जब दर्शना का फोन आया, उसने कहा, माँ आप मुझे क्या दीजिएगा अगर मैं आपको एक खुशखबरी दूं? बोलना बेटा, तू जो मांग पहले ही बता, तुम ही दोनों तो मेरी जान हो, जो चाहो मांग लो। माँ आपकी सखी लौट आई है, गिल्लू इज बैक योर फ्रेंड, आज सुबह दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। नहीं नहीं तुम झूठ बोल रही हो, जब इतने दिन नहीं आई। अरे नहीं माँ, मैंने उसकी फोटो खींची है, मैं आपको भेज रही हूँ। शुभ और रिद्धित आपकी तरह सुबह सुबह उसके सामने मूंगफली के दाने डाल देते हैं। माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? मेरा गला रुंधाया था। वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ, आप खुद देख लीजिए। दर्शना ने वीडियो कॉल किया। शीशे के दरवाजे के उस पार गोल गोल चमकीली आंखें मटकाती खड़ी थी मेरी गिल्लू, और लग रहा था कि वो पूछ रही हो, अब कब आओगी, कब आओगी तुम।
1: श्रोताओं, अभी आप रूबी भूषण जी से सुन रहे थे उनकी स्वरचित कहानी गिल्लू इज बैक। और इसी के साथ आज की ये साहित्यिक यात्रा अब यहीं संपन्न होती है। आपको आज के शब्द शिल्प का अंक कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ अवश्य साझा करें इस ईमेल आईडी पर feedback@aarpatna.gmail.com। और अब प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार के साथ साहित्यिक साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साहित्यिक पत्रिका पर आधारित कार्यक्रम शब्द शिल्प, स्वर सहयोग सुरभि और प्रस्तुति रजत कुमार की। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। कल की बातें क्यों करें अगर हमारा आज सुहाना है। हंसना और हंसाना है जिंदगी का, यही तो फसाना है। जी हाँ श्रोताओं, आज का थीम हमने लिया है जिंदगी। जिंदगी खुशियों गमों सीखों का खूबसूरत सफ़र है। कभी मुस्कान देती है तो कभी आंसू, लेकिन हर मोड़ पर कुछ नया सिखा जाती है। कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंस कर बिता ले, जाने जिंदगी का कल क्या फैसला होगा।

बड़े ही अजीब हैं ये जिंदगी के रास्ते। अनजाने मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं, मिलने की खुशी देते हैं फिर बिछड़ने का गम दे जाते हैं।

छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वो अनजान बहुत है।

हम तो रोज खुद को पढ़ते हैं और रोज छोड़ देते हैं। हम तो रोज जिंदगी का एक पन्ना मोड़ देते हैं, मगर ख्वाहिश जिंदगी से बस इतनी सी है, साथ उनका हो और जिंदगी कभी खत्म ना हो।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत थीम पर आधारित कार्यक्रम आज की रात। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अगला कार्यक्रम में सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द हैं गुलजार के और संगीत सलील चौधरी का।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है अभिमान फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। मजनू सुल्तानपुरी की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है एस डी वर्मन ने।

श्रोताओं, आशा भोसले की आवाज़ में आइए सुनते हैं मेरी सनम फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इसे संगीतबद्ध किया है वो पी नैयर ने।

श्रोताओं, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ में आइए सुनते हैं वक्त फिल्म का ये गीत। शब्द हैं सही लुधियानवी के और संगीत रवि का।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है नीला आकाश फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। राजा मेहदी अली खान की इस रचना को तर्ज दिया है मदन मोहन ने।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे हम दीवाने फिल्म का ये गीत आशा भोसले, महेंद्र कपूर और अन्ना साहिब की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इसे संगीतबद्ध किया था चितलकर रामचंद्र ने।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनते हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुरी की आवाज में भीगी रात फिल्म का ये गीत। मर्जू सुल्तानपुरी के लिए इस गीत को संगीत दिया है राजेश रोशन।

0: हम।
1: श्रोताओं, वक्त की कमी के कारण ये गीत हम पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। तो अभी आप सुन रहे थे भीगी रात, फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुरी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखने

0: और भारत तथा न्यूजीलैंड के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि संगीत में लोगों को एकजुट करने की अनूठी क्षमता होती है और आज की प्रस्तुति ने भारत न्यूजीलैंड की मित्रता की गर्मजोशी और गहराई को खूबसूरती से प्रतिबिंबित किया है। यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में ये पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआन पुई साइवेई ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने का बड़ा अवसर है।
1: Free trade agreement is a great opportunity.
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं, तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों पर कई समझौते हुए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के विश्वास और मजबूती का पता चलता है। ओमान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने समुद्री संबंध दोनों देशों के लोगों को सदियों से जोड़ते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का सबसे बड़ा संरक्षक बना रहेगा। उन्होंने आज विशाखापत्तनम में नौ सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल में भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत के 90% से अधिक व्यापार का परिवहन समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा देश की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री ने कहा कि स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी का नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने आज संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। कोयला मंत्रालय ने आज वाणिज्य कोयला ब्लॉकों की नीलामी के 15वें चरण और 13वें और 14वें चरण के दूसरे प्रयास की बोलियां बोली। मंत्रालय के अनुसार नीलामी के लिए पेश किए गए 23 कोयला ब्लॉकों में से 8 के लिए कुल 21 बोलियां प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस नीलामी में 16 कंपनियों ने भाग लिया, जो देश के वाणिज्य कोयला खनन में उद्योग जगत की मजबूती भागीदारी को दर्शाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में आज रात 12:30 बजे स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। इससे पहले आज फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi received a warm and enthusiastic welcome upon his arrival in Auckland, marking the start of his historic two-day visit to New Zealand. This is the first by an Indian Prime Minister in nearly 4 decades. After arriving in Auckland today, Prime Minister Modi was received at the airport by New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. The Indian community gathered in large numbers to greet him. The atmosphere